अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीजा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है। वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में झगड़े करते हैं, कहां से वो फिराए जा रहे हैं? ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुठलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना मुताहक देगा। उनसे कहा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए है कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे और फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है। बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन।

0: तवक्कुल से। जो रिस्क, दौलत, घर बार, गरज कोई भी माल अगर हमारे नसीब का है तो वो अल्लाह ताला हमें अता करेगा, और जो हमें नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं, वो किसी और की तकदीर में लिखा था। चुनाचे यही सोच इंसान को अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी बरा रखती। हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम लोग और जिन्नात सब मिलकर फायदा पहुंचना चाहें और अल्लाह ताला ने तो वाकिफ नहीं करते। आपको अगर नुकसान पहुंचे और अल्लाह ताला ना चाहे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचते। यह एक तबीर वो जबरदस्त कुवत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बनाती, लेकिन दुआ वो शानदार फरमान है जो इस कुवत पर गालिब आ जाती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपने मुकद्दर और नसीब पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107
2: FM 107 पर मतर की दो सर्फ आपसे मुखातिब है। समिन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए ये कि मेरी दावत पर लब कहें और मुझ मान लाएं। ये बात तुमन शायद कि वो राह पाए। सामीन, मौलाना इदरीस बकर साहब दुआगो है आला के हुजूर। आइए हम इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नासिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड आर्ट कॉर्नर। इस शो में हम आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जो आसमानों की बुलंदियों और सखाफत के सफर को रंगों, ज्योमेट्रिक डिजाइंस और एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर के जरिए बयां करते हैं। उनका तसव्वुर उनकी पेंटिंग्स में नजर आता है जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इनमें गहरे पैगाम भी छुपे होते हैं। ये आर्टिस्ट है शेख मुबारक नासिर अल थानी। दोस्तों, शेख मुबारक ने 2010 में जॉर्ज टाउन स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज कतर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। फिर आपने 2017 में NYU वैगनर से अर्बन प्लानिंग्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पर देखा जाए तो मुबारक ने दोहा फायर स्टेशन में एक आर्टिस्ट इन रेजिडेंस के तौर पर भी काम किया है। दोस्तों, मुबारक एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी भी फॉर्मली आर्ट की तालीम हासिल नहीं की। आपने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि मैंने आर्टिस्ट बनने का ना कभी सोचा था और ना मैं ऐसा सोच सकता था। बस शौक था बचपन में स्केच बनाने का, देन लेटर ऑन पेंटिंग्स का, और फिर कलर्स मेरी जिंदगी में इस तरह से एम्बेड हुए कि मेरी जिंदगी कब रंगीन हो गई मुझे पता भी नहीं चला। वेल, मुबारक एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वर्सेटिलिटी को जीते हैं। आप एक्रेलिक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ऑडियोज और फोटोग्राफी का भी हुनर रखते हैं। आपका मानना है कि ये पैशंस भले से डाइवर्स हो लेकिन फोकस हमेशा मेरा पेंटिंग पर ही रहता है। जी हां, मुबारक, जब एक इंटरव्यू दे रहे थे तो कहीं इस आर्टिस्ट ने आपसे ये पूछ लिया कि जी बताइए आपको इंस्पिरेशन कहां से मिलती है, तो पता है मुबारक ने क्या किया? He all of sudden started looking here and there. He opened his bag और फिर कुछ सामने निकाल के होस्ट के टेबल पर रख दिया। अब ये होस्ट जो थी वो बड़े ध्यान से, बड़े चाम से इसे देखने और एडमायर करने लग गई। फिर उन्होंने मुबारक से पूछा कि ये फोटोग्राफ्स इनका क्या मतलब है, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? वेल, मुबारक का जवाब था, इट्स माय इंस्पिरेशन। उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि मैं जहां भी जाता हूँ मैं सफर करना पसंद करता हूँ और ये सफर, ये ट्रैवल करना और इस शौक ने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। वेल, मुबारक का ये भी मानना है कि वो बहुत सारी चीजों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑब्जर्वेशन उन्हें इंस्पायर करती है। वेल, मुबारक ने अपने आर्ट को ना सिर्फ कतर में ही एक्सप्लोर और शोकेस किया बल्कि मैं कह सकती हूँ इन्होंने बाहर अब्रॉड में भी खूब वाहवाही लूटी। इनकी सबसे नुमाया एग्जीबिशन थी UN हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में जुलाई 2019 में। कल इसी साल इन्होंने UN जनेवा में अक्टूबर में दूसरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जहां इनकी बेहद तारीफ हुई। इतना ही नहीं, कतर में एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, फायर स्टेशन, अलमरखिया गैलरी और कटारा गैलरीज में भी इन्होंने कई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जिनसे इन्हें बेहद मकबूलियत हासिल हुई। वेल, मुबारक का मानना है कि आर्ट किसी भी कहानी को बयां कर सकती है। एक आर्टिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है अपने थॉट प्रोसेशंस के मामले में कि वो मुश्किल से मुश्किल पैगाम को भी आसानी से कन्वे कर सकता है। दोस्तों, मुबारक का मानना है कि जब लोग उनके आर्ट को देखते हैं तो वो सिर्फ उस आर्ट पीस को देखते नहीं हैं, बल्कि उस आर्ट फॉर्म के पीछे छुपे पैगाम की अहमियत को भी समझते हैं। जिया मुबारक का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि सब मेरे आर्ट की कदर करें और मैं चाहता हूँ कि वो सोच पॉलिटिक्स के हवाले से, सोशल जस्टिस के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से ऐसी मालूमात मैं अपने ऑडियंस तक पहुँचाऊँ जिनका समझना उनके लिए आज के दौर में बेहद जरूरी है। और मैं कह सकती हूँ कि मुबारक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी सोच में काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। पहले उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन अपने एक इंटरव्यू में कही कि दोस्तों, मैं अपने आर्ट के जरिए लोगों को सुकून पहुंचाता हूं और ये काम मुझे खुद को सुकून देता है। वेल ये मेरा काम मेरे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट भी करता है। जी हाँ, मुबारक का काम जो है वो कतर के एनवायरमेंट से भी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। मुबारक के आर्ट पीसेस में कतरी कल्चर की झलक साफ नुमाया होती है। आपने अपने बैकग्राउंड्स में पाम ट्रीज, कैक्टस और डेजर्ट से जुड़े तमाम आइडियाज को बखूबी डिपिक्ट किया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की लाइफ कलरफुल दिखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, जो कलर आपको नजर आते हैं शायद वो धुंधले भी हो सकते हैं। मुबारक की लाइफ में भी कई चैलेंजेस आए, लेकिन खुद मुबारक का मानना है कि मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि आर्ट क्रिएट करने के अमल को जारी रखना। वेल डिस्पाइट ऑफ हिज हैक्टिक ऑक्यूपेंसीज, चाहे उनका पैशन हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे फिर फैमिली लाइफ हो, वो गुड बैलेंस बनाने में हमेशा स्ट्रगल करते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैशन को कभी भी रुकने या स्टॉप होने नहीं दिया। वेल, मुबारक का मानना है कि कभी कभी आर्ट बनाना ठीक होता है, लेकिन अगर लगातार आप इस प्रोसेस से जुड़े होते हैं तो आपको अलग से वक्त निकालना पड़ता है, आपको डेडिकेशन चाहिए और फिर इंस्पिरेशन भी मैंडेटरी होती है। वेल, मैं कह सकती हूँ मुबारक इन सारी चीजों को कर पाने में कामयाब होते हैं। मुबारक इस तरह के आर्टिस्ट हैं, ऐसी तस्वीर को माशरे के सामने रखते हैं जो न सिर्फ अपनी खुद की कहानी सुनाती है बल्कि अपने आर्ट के जरिए दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करती है। वेल, मैं कह सकती हूँ कि मुबारक का सफर और उनके आर्ट पीस हमें ये समझाते हैं कि दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जला कर दूसरों की जिंदगी में उजाला लेकर आते हैं। मुबारक एक इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि चाहे जो काम भी आप करें, जिस प्रोफेशन का भी आप हिस्सा बने, लेकिन काम ऐसा करो जो तुम्हारी लाइफ और सोसाइटी पर एक पॉजिटिव असर डाले। वेल, इसी खूबसूरत सोच के साथ इस आर्टिस्ट की जर्नी को पॉज देने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ दोस्तों, मैंने कहा है कि कॉमा लगाने का वक्त आ गया है, फुल स्टॉप नहीं। अगले एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट की इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी नाजिया अहमद, शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: wake up. हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 दिल से देसी
2: समझ के हम एक दिलचस्प और तंजिया कहावत है الجنازه عوده والميت قطو इसका मतलब यह है कि जनाजा देखो तो बड़ा सा है मगर मैयत जो है ना सिर्फ एक बिल्ली है ये कहावत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी मामूली और बेवकत चीज के गिर्द लोग बड़े हुजूम की तरह जमा हो जाए जैसे कोई बहुत बड़ा वाकया या राज हो लेकिन हकीकत में वो बात निहायत छोटी और बेमाना निकले वो या जाहिरी धूमधाम हो मगर हकीकत खोखली हमारे यहाँ कहते ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे कहाँ उसका नाम मैं सुनकर आया था कि ऐसा ऐसा है अब सामने आकर देखता हूँ कि भाई ये तो छोटा सा बंदा है यानी नाम या शोहरत बड़ी मगर हकीकत में कुछ भी नहीं दोस्तों ये कहावत हमें ये सिखाती है कि हमेशा हकीकत को देखना चाहिए जाहिरी हुजूम शोर शराबे को न देखें क्योंकि अक्सर औकात अलजनाजा उदा वलमैत गतो यानी दिखावा बड़ा मगर हकीकत में कुछ भी नहीं
1: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। आज हम सुनेंगे कि हिकमत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई थी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, रश्क सिर्फ दो चीजों पर ही हो सकता है, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसे अल्लाह की राह में खर्च करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की वो उसके जरिए फैसला करता है और दूसरों को सिखाता है। हिकमत की दुआ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दी थी। कहा था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमा। मुहद्दिसीन कहते हैं, इस हिकमत से मुराद कुरान का फहम, सुन्नत की बसीरत, सही फहम, और वो नूर है जो इंसान को खैर और शर में फर्क करने की कुव्वत अता करता है। तो दोस्तों, माल खैर के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब अल्लाह की राह में खर्च हो। इसी तरह हिकमत दिलों को नूर देती है, फैसलों को दुरुस्त करती है और इल्म को आम करने का जरिया बनती है। तो ये थी हिकमत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई। आइए हम भी अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत के फहम को हासिल करें, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्वीट्स की जरूरत और नुकसान के बारे में। चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो कि खाते हुए में बहुत खुशी महसूस होती है या खुशी देती हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट्स डायबिटीज़, मोटापे और दांतों के मसाइल पैदा कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं कि एक जो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक्स भी, उसमें 8 से 10 चम्मच चीनी होती है और एक दिन की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। शुगर सिर्फ तवानाई देती है मगर वाइटामिन्स और मादनियात फ्राहम नहीं करती। ज्यादा चीनी खाने से यानी या ज्यादा स्वीट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज होने का यानी टाइप 2 होने का खतरा ज्यादा है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं, जिल्द के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बच्चे और नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्वीट पसंद करते हैं और ज्यादा वक्त मोबाइल और टीवी के साथ या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ गुजारते हैं। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ उन्हें पसंद है यानी स्वीट पसंद है तो उसे लेते रहते हैं। और अगर कोई बच्चा रोजाना 2 से 3 चम्मच इजाफी चीनी खाता है तो साल के आखिर तक वो तकरीबन 7 से 8 किलो इजाफी चीनी इस्तेमाल कर चुका होता है, जो कि फिर सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो एडल्ट्स हैं वो रोज़ाना 6 चम्मच से ज़्यादा चीनी ना खाएं। शक्कर की जगह शहद, गुड़ या खजूर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। मीठा खाने के बाद पानी ज़रूर पी लीजिए और दांत साफ रखिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर आप ताज़ा जूस या फिर लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा सेहतमंद है। बच्चों को फल और खुश्क मेवेजात की आदत डाल दीजिए। अगर मीठा खाने की आदत कम करना चाहते हैं तो रोज़ाना थोड़ी मिकदार में खा लीजिए और ज़्यादा ना खाइए। याद रखिए, मीठा ज़िंदगी में खुशी लाता है मगर एतदाल के साथ। कम शुगर, ज़्यादा सेहत। हेल्थ फॉर ऑल।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107, दिल से देसी।
3: प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
4: चले तो कट ही जाएगा सफर।
3: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।

वेलकम एक सामने एक मरतबे आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में मैं हूँ आपके साथ प्रोग्राम पुलिस और आवाम है आपका मेज़बान तलहा शफ़ा ज़मान और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर खमीस सुल्तान अल-मरीखी जिनका ताल्लुक इदारे हुकूक़ इंसान से हैं वो उस इदारे के कस्म शिकावी या अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं कस्म शिकावी व तहक़ीक़ात ये है पूरे डिपार्टमेंट का नाम तो ओवरऑल बहुत ही काफ़ी सारे अहम मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू हो रही है चूँकि इंसानी हकूक़ के हवाले से आजकल तो बड़ी बातें होती हैं और इसका ख़ास रियायत की ख़ास रियायत भी होती है तो इस सिलसिले में वो काफ़ी काम कर रहे होते हैं ख्याल रखते हैं निगरानी करते हैं काफ़ी सारी बातें आ गई इसमें चूँकि कतर में वज़ारत दाखिला के जहाँ एक कई अहम तरीन शोबे हैं सर्विसेज हैं तो सर्विसेज को उनकी शफाफियत और सही तौर पर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है और लायबिलिटी है इन तमाम चीज़ों की रियायत के लिए भी एक ख़ास शोबा कायम किया गया इदारा हुकूक़ुल इंसान जो इस बात का ख्याल रखता है कि भाई लोगों के पास जो सर्विसेज जो पहुँच रही हैं उनके मेयारात कैसे होने चाहिए वो मेयारात सही तौर पर नाफिज़ हो रहे हैं या नहीं तो इदारा हुकूक़ुल इंसान के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारे हमें बात कही मज़ीद उन्होंने कहा कि देखें शिकायत वगैरह के हवाले से भी यानी हमारे हुकूक़ुल इंसान में कहीं कोई ज़्यादती है कहीं कोई मसला है तो फिर आप यानी उनसे आप यानी रबता कर सकते हैं और रबते का जो तरीका है वो हमें बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो शिकायत उन तक पहुँचाना वो शिकायत रिसीव करते हैं शिकायत वसूल करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से जो भी मसला हो यहाँ तक कि जब अगर आपका कोई आपके यानी हक में कोई

0: और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे।
1: सामिने किराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज की दुआ, जिसमें हम आपको कुरान करीम की दुआएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर छुपे असबाब को भी अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। आज की दुआ है अस्हाबे कहफ की। वो नेक जवान जो अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहने के लिए अपनी कौम के जुल्म शिर्क से बचकर गार में पनाह गुजीन हुए। इरशाद खुदावंदी है,
2: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا।
1: ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। इस दुआ को एक मरतबा फिर सामीन के लिए पढ़ के सुनाता हूँ।
2: रब्बना आतिना मिन लदुंका रहमा वहैय्यि लना मिन अम्रिना रशदा।
1: ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। सामिने के नाम, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रहमत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। मुश्किल वक्त में दुआ सबसे बड़ा सहारा है। सामिन, हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए दुआ करते रहें और उसी पर भरोसा करें, क्योंकि हमारे लिए कौन सा भलाई का रास्ता है ये वही जानता है। आइए एक मरतबा फिर ये दुआ पढ़ें।
2: रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहैय्यि लना मिन अम्रिना रशदा।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
4: क्रिकेट हो
5: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
4: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
7: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई असहाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
8: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
9: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। FM 107 दिल से देसी।
0: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। उक्बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, नजात का रास्ता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो और अपनी खताओं पर रो। अब सवाल तो बहुत बड़ा था कि नजात कैसे मिले। जवाब में सबसे पहले क्या आया, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को काबू में रखो। गोया नजात के सफ़र में इंसान

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। Your health matters.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज बात एक ऐसी जरूरत की है जिसके बगैर हमारा जिस्म और दिमाग सही तरह से काम नहीं कर सकते और वो है नींद। हम खाना ना मिलने पर परेशान होते हैं, पानी ना हो तो फिक्रमंद होते हैं, लेकिन अगर नींद कम हो तो अक्सर कहते हैं चलो आज जरा कम सो लेते हैं, कल अपनी नींद पूरी कर लेंगे। कभी काम की वजह से, कभी मोबाइल की वजह से, कभी सोशल मीडिया, कभी टेलीविजन, और कभी सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि सोने के बजाय कुछ और काम कर लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अच्छी नींद लग्जरी नहीं है, सेहत की बुनियादी ज़रूरत है। जब हम सोते हैं तो जिस्म को आराम और रिकवरी का मौका मिलता है और दिमाग भी दिन भर की सरगर्मियों के बाद आराम करना चाहता है। अगर नींद पूरी ना हो तो अगले दिन हमें थकन, चिड़चिड़ाहट, तवज्जो में कमी और काम करने में मुश्किल महसूस हो सकती है। हर उम्र में नींद की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चों की अमूमन बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा नींद होती है और उन्हें लेनी भी चाहिए। नौजवानों और एडल्ट्स की ज़रूरियात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। असल मकसद ये है कि आप अपनी बाकायदा नींद लीजिए, जिसके बाद आप खुद को निस्बतन फ्रेश और फंक्शनल महसूस करें। रात की जो रूटीन है वो बहुत अहम है। हमारा जिस्म रूटीन को पसंद करता है। अगर एक दिन रात 10 बजे सोएंगे, दूसरे दिन 2 बजे और तीसरे दिन 12 बजे, तो जो स्लीप पैटर्न है वो मुतासिर हो जाता है। कोशिश कीजिए कि सोने और जागने का वक्त ज़्यादातर दिनों में तकरीबन एक जैसा हो। अब नींद और मोबाइल का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब जरा अपने बेडरूम को देखिए, बिस्तर पर जाने

0: के बाद मोबाइल हाथ में आ जाता है, एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर मैसेजेस, फिर सोशल मीडिया, और फिर अचानक पता चलता है कि आधा घंटा या एक घंटा गुजर चुका है। इसलिए सोने से पहले कुछ वक्त स्क्रीन फ्री रखने की कोशिश कीजिए। मोबाइल को अपने बेड से दूर रखना भी मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह कुछ अफराद में कॉफ़ी नींद को मुतासर जो है वो कर सकती है, और अगर आप महसूस करें कि शाम की चाय या कॉफ़ी के बाद रात को देर से नींद आती है, तो कैफीन के जो टाइमिंग्स हैं उन पर आप ज़रूर गौर कीजिए। हर शख्स का रिस्पॉन्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। अब ये एक और सवाल ये है कि दिन के वक्त क्या करें, यानी किस तरह अगर नींद आ रही है तो क्या किया जाए। अच्छी नींद लेने के लिए जो है रात की नींद जो है वो ही शुरू नहीं होती, दिन के दौरान भी जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वॉक है या मुनासिब डे लाइट है, बैलेंस डाइट है, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्लीप रूटीन में मददगार साबित होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने जिस्म के मुताबिक वक्त जो है वो मुंतखब कीजिए। अगर रात को नींद नहीं आती तो दिन में लंबी नींद लेने से बाज़ अफराद का स्लीप साइकिल मज़ीद ख़राब हो सकता है। अगर नैप लेनी हो तो अपनी रूटीन और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक आप नींद जो है वो लीजिए। कुछ अफराद बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं और फिर जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं कि आप पूरी रात खराटे लेते हैं। हर जो खराटा है बीमारी नहीं होता, लेकिन अगर खराटों के साथ नींद में सांस रुकने और इसी तरह से जो सुबह जब आप उठते हैं तो शदीद थकन महसूस हो या दिन में बहुत ज़्यादा नींद आए, इस तरह की जो अलामत हों तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कीजिए। इस तरह हो सकता है कि स्लीप रिलेटेड जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं या उनकी कोई अलामत हो सकती है। अच्छी नींद लेने के लिए आज ही सिर्फ 5 काम कर लीजिए। अपने सोने का जो टाइम है वो आप मुकर्रर कर लीजिए। सोने से पहले मोबाइल कम कीजिए। रात को कैफीन के इस्तेमाल पर गौर कीजिए, यानी चाय या जो कॉफ़ी है उसका जो इस्तेमाल है कम कर दीजिए, और इसी तरह अपना जो बेडरूम है पुरसकून और आरामदेह रखिए। अगर मुसलसल नींद प्रॉब्लम है तो इसे इग्नोर ना कीजिए। लिसनर्स, एक बात याद रखने की है कि नींद का वक्त कम करके हम शायद कुछ घंटे काम कर लें, लेकिन अगर जिस्म और दिमाग थका हुआ हो तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए आज रात अपने आप से कहिए कि मेरी नींद भी मेरी सेहत का हिस्सा है। तो शब बख़ैर, सेहतमंद रहिए और अपनी नींद का ख्याल रखिए। योर हेल्थ मैटर्स।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: मैं

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। भाई आज जो है अपडेट में लगातार भर भर के आपको वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है, छोटे से छोटी वेबसाइट और मेजर से मेजर वेबसाइट। तो आई होप आप तैयार हैं, और तैयारी के साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आप कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। प्लीज बता दीजिएगा आर्टिस्ट को क्या चाहिए मालिक। सोशल मीडिया हैंडल्स पाइएगा जरूर FM 107 Qatar FM 107 Qatar। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं। आज की पहली वेबसाइट का नाम है change-bg.org। चेंज यानी बदलाव वाला चेंज, और फिर जिसको डैश हाइफन जो भी कहना चाहे, फिर बी जी, बी लाइक इन बॉल, जी लाइक इन गेम, जी लाइक ए गेम। सो change-bg.org, इस पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। आपको किसी बाहर वाली टूल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल इस पे अपलोड कीजिए और बैकग्राउंड पूरा का पूरा हटा देंगे आप सेकंड्स में। उसके बाद आप HD फॉर्मेट में पूरी की पूरी पूरा जो फोटो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आप AI का यूज भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लीन और ज्यादा नहीं चाहिए कि AI हिंडर करे आपके फोटो को इधर उधर कर दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट। एंड उसके साथ साथ आप उसे स्टिकर भी बना सकते हैं अपने फोटो को। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर मेजर वेबसाइट। इस वेबसाइट का खेल है आवाज से जुड़ा हुआ। इसका नाम है anyvoicelab.com। anyvoicelab.com anyvoicelab। इसमें आप अपने शब्दों को, लफ्जों को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल AI वॉइस के को यूज करके। बहुत सारे चॉइसेस हैं, अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। हालांकि अभी देसी भाषा की तरफ मूव नहीं कर पाए, लेकिन इफ यू वांट टू मेक सम कंटेंट जिसमें आपको एक नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाली है। सो anyvoicelab.com ये है दूसरी मेजर वेबसाइट। बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। तीसरी का भी लेना देना भाई आवाज से ही है। इसका नाम है vocalremover.org। वोकल VOCAL रिमूवर REMOVER vocalremover.org। इस पे जाके आप गाने के वोकल्स और म्यूजिक को अलग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस सिमिलर, मैंने आपको बताई।

0: भी हैं, मगर ये भी उन्हीं में से एक है। तो इनफैक्ट आपको ये याद रह जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ अपना ऑडियो अपलोड करना है, हो सकता है उसमें गाना हो, तो आप गाने के पूरे म्यूजिक पीस को अलग कर सकते हैं और आवाज को एकदम अलग कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद द होल म्यूजिक। तो ये आपकी काम आ सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट, ये भी बड़ी कमाल की वेबसाइट है। इसका नाम है freeforstudents.org। free मुफ्त वाला, for for फिर students students .org freeforstudents.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई सारे ऑफर्स आपके सामने आएंगे। ये बोलेगा कि आपको भाई कुछ दिनों के लिए आपको जेमिनी फ्री चाहिए, जेमिनी AI असिस्टेंट ले लो जी। उसके बाद आएगा कि आपको 70% ऑफ चाहिए कुछ एप्स पे जो पेड हैं, ले लो जी। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपके ये बहुत बहुत काम आ सकती है। ये मेजर वेबसाइट है जिसपे कई सारे AI टूल्स जो यूजुअली पेड ही होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफर के साथ ये कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिल सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो फैला दो स्टूडेंट्स पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट और आज की आखिरी। इस वेबसाइट का नाम है आई हैव नो टीवी, मेरे को टीवी नहीं हैगा, तो आई हैव नो TV.com, TV.com। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको भाई साहब कैटेगरी वाइज सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने होंगी। आप कैटेगरी चूज करें और अपने मन पसंद डॉक्यूमेंट्री को बिना किसी एड के देखें, बिना किसी एड के अपने पसंद की डॉक्यूमेंट्री आप स्ट्रीम कर सकते हैं। मेरी फेवरेट में से एक वेबसाइट है भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। आप किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा जो लोग दुनिया से नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बोर भी नहीं होना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, एंड काफी इंटरेक्टिव और एडवर्ड भी चलते काम हो जाता है। तो ट्राई दिस वन आउट, ये खजाना है भाई, नॉलेज का खजाना है। ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली टेक अपडेट में, स्टे ट्यून्ड।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, FM 107, दिल से देसी।

0: फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन ये फ्रॉड आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, क्योंकि हम सब जब खास तौर पे कमाने लग जाते हैं या खास तौर पे इतने खूबसूरत कंट्री में रहते हैं जहां पर कार को अफोर्ड करना आसान होता है, आप अपनी दो चार महीने की सैलरी से भी कार ले सकते हैं, सस्ती कार भी है, महंगी कार भी है, लेकिन इन सब के बीच सेकेंड हैंड मार्केट यानी कि सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको स्कैम किया जा सके, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी सस्ती कारें दिखाई जाती हैं आपको, क्योंकि आपको जरूरत है कार की, इसलिए आप उस कार के लिए बिड करते हैं। और होता ऐसा है कि ऐसे बिडिंग में या जल्दबाजी में आपके साथ स्कैम हो जाता है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं चीप व्हीकल स्क्रो स्कैम। ये स्कैम कैसे काम करता है, कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस पर नजर डालेंगे। दोस्तों, स्कैमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पर यूज्ड कार्स, ट्रक्स या ट्रेलर्स की फोटोज लगाते हैं और उनकी प्राइसेस को बेहद कम करके रखते हैं और सोशल मीडिया पे खास तौर पे पैसे लगा के एड्स भी चलाते हैं ताकि बायर का ट्रस्ट जीता जा सके। बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो झूठी कहानियां भी बनाते हैं, जैसे उनका डाइवोर्स हो रहा है, वो शहर छोड़ रहे हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनकी जो जॉब है अब वो दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ना आपको बताते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से गाड़ी बेचनी है। ये सारी डिटेल्स बताकर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से नए लोगों को, जिनको कार चाहिए, जिनको कार की जरूरत है, उनको स्कैम किया जा सके, या जिनको ट्रक की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके। जब आप उनसे गाड़ी देखने की जिद करते हैं तो वो इन पर्सन मिलने से साफ मना कर देते हैं। इसके बजाय वो आपसे कहते हैं कि पैसा एक थर्ड पार्टी स्क्रो वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दें जो गाड़ी डिलीवर होने तक आपके फंड्स को सेव रखेगी, है ना। तो मिसाल के तौर पे ABC कोई एप्लीकेशन है, उस पे आप फंड जो है वो ट्रांसफर कर दें, आप कार देखें, कार देखने के बाद आपके पास कार आएगी, आप कार देखिए आराम से। अगर आपको कार नहीं समझ में आई तो वो जो आपने ABC ऐप पर फंड ट्रांसफर किया वो आपको वापस मिल जाएगा अगर कार पसंद नहीं आई। लेकिन मैं ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑफिस है, दुनिया की कहानी वो बनाते हैं। लेकिन हकीकत में वो पूरी वेबसाइट फेक होती है जहां पर, यानी कि वो ABC एप्लीकेशन जहां पर आपने फंड ट्रांसफर किया है वो फेक होता है और स्कैमर्स खुद उसे चला रहे होते हैं। और जैसे ही आप पैसा भेजते हैं कोई व्हीकल डिलीवर नहीं होती और सेलर गायब हो जाता है। वो लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं आप ब्लॉक्ड हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे उस लिंक को ट्रैक करें, कैसे उस शख्स को ट्रैक करें जिससे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, या फिर आप उन एप्लीकेशन के थ्रू जिससे आप उनसे कनेक्ट हुए थे उनसे कैसे बात करें, कैसे ट्रैक करें, आप नहीं पकड़ सकते और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का तरीका है, सॉल्यूशन है। हमेशा किसी भी तरह के कार को, सेकेंड हैंड ट्रक को, किसी भी टू व्हीलर को अगर आपको खरीदना है तो हमेशा इन पर्सन इंस्पेक्शन के बगैर पेमेंट ना करें, चाहे वो छोटा ही पेमेंट क्या ना हो। हो सकता है कि वो 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 30,000 रियाल की गाड़ी हो और आपसे 500 या 200 या 100 रियाल फंड ट्रांसफर करने को कह रहा हो और फिर बाद में वापस भी हो जाएगा, है ना। या आपने कार खरीद ली तो वो फंड जो है, जो आपने दिया है या ट्रांसफर किया, वो कट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने 300 भी जमा किए, 100 भी जमा किए और वो गायब हो गया लेके, तो ये आपके साथ बेईमानी ही तो है, स्कैम ही तो है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और टेस्ट ड्राइव जरूर लें जब भी आपके सामने कार हो, आप उसे पहचाने, समझें और फिर डिटेल्स के साथ ही पैसा ट्रांसफर करें, सारे कागज वगैरह चेक करने के बाद। उसके अलावा उस वेबसाइट से बचें जिस पर आपको कहा गया है कि फंड ट्रांसफर करना है। अगर कोई सेलर आपसे किसी अननोन या उनके बताए हुए स्पेसिफिक लिंक पर पैसा डालने को कहता है तो हमेशा अलर्ट हो जाएं। सिर्फ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और वेरीफाइड फाइनेंशियल पेमेंट मेथड्स का ही यूज करें। मार्केट वैल्यू चेक करें। अगर कोई अच्छी कार मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर मिल रही है तो उसके 100% चांस है कि वो एक ट्रैप है, चांस है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमेशा एहतियात बरते हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सुनते रहें FM 107। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

इनका कद 6 फुट 8 इंच था और बोलिंग इतनी खौफनाक कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से पहले ही प्रेशर में आ जाता था और इन्हें दुनिया ने एक खास नाम दिया था द बिग बर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम इस बोलर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम जोएल गार्नर है और वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। उस जमाने की बात है 1970s और 1980s जहां पर वेस्ट इंडीज वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। जैसे कि मैंने बताया कि उनका कद ही 6 फुट 8 इंच था। सोचिए जरा, जोएल गार्नर बार्बाडोस का वो टावरिंग फास्ट बॉलर था जो 1970s और 1980s में वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी पेस अटैक का अहम

हिस्सा रहा उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स थे गार्नर का कद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जरूर था लेकिन असल खौफ उनकी पेस बाउंस और यॉर्कर से था उनका बाउंसर इतनी ऊंचाई से आता था कि बल्लेबाज को गेंद पिक करना मुश्किल होता जबकि उनकी यॉर्कर अक्सर सीधा स्टंप्स के नीचे जाकर लगती और इसी वजह से उनका निकनेम पड़ा द बिग बर्ड क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हुआ बिग बर्ड यानी जोएल गार्नर आईसीसी के मुताबिक गार्नर अपनी इंटिमिडेटिंग हाइट फियरी पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर थे अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में जोएल गार्नर ने वेस्टइंडीज के लिए 58 मैचेस खेले और 259 विकेट्स हासिल किए उनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20.97 था यानी हर विकेट के लिए वो औसतन सिर्फ 21 रन से भी कम देते थे उनके टेस्ट करियर में 7-5 विकेट्स हॉल हैं और एक 10 विकेट मैच हॉल भी शामिल था उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 6 विकेट्स फॉर 56 रन इज द बेस्ट रिकॉर्ड दैट ही लॉज्ड इन टेस्ट क्रिकेट लेकिन अगर गार्नर की असल ग्रेटनेस देखनी हो तो ओडीआई क्रिकेट उनका सबसे जबरदस्त चैप्टर था गार्नर ने 98 ओडीआईज में 146 विकेट्स लिए और उनका एवरेज सिर्फ 18.84 था सोचिए जरा उनका इकोनॉमी रेट भी हैरान कुन 3.09 यानी 3.09 रन्स पर ओवर था एक ऐसा रिकॉर्ड जो मॉडर्न हाई स्कोरिंग ओडीआई क्रिकेट में और भी इंप्रेसिव नजर आता है वर्ल्ड कप में भी गार्नर का रिकॉर्ड शानदार रहा 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गार्नर ने सिर्फ 38 रन देकर 5 विकेट हासिल किए ये आज भी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसी बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और उस परफॉर्मेंस ने वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतने और अपना दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल हासिल करने में मदद दी गार्नर ने वर्ल्ड कप में कुल 8 मैचेस खेले और 13 विकेट्स लिए एक और खास रिकॉर्ड भी गार्नर के नाम है अपने पीक के दौरान वो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में 940 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे और आईसीसी के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में उनका पीक रेटिंग 940 रहा दोस्तों जोएल गार्नर सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे वो वेस्ट इंडीज के गोल्डन एरा की एक पहचान थे उनकी हाइट उनकी बाउंस उनकी यॉर्कर्स और उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शामिल कर दिया सन 2010 में जोएल गार्नर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया उनके लेजेंडरी करियर को एक और बड़ा ऑनर मिला तो दोस्तों यह थी कहानी द बिग बर्ड जोएल गार्नर की एक ऐसे बॉलिंग जायंट की जिन्होंने बैट्समैन को अपनी हाइट से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी और डेडली पेस से डराया उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा अगली बार एक नए स्पोर्ट्स लेजेंड और उभरते हुए खिलाड़ी की कहानी के साथ वापस आएंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें पिया मनिल्ला

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि खुशी, खूबसूरती और खानदानी मुलाकात का एक यादगार मौका होती है। इस खास दिन लिबास और जीनत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। दुल्हा और दुल्हन के साथ मेहमान भी अपने कपड़ों और तैयारी के जरिए इस खुशी में शिरकत का इजहार करते हैं। कतरी खवातीन शादी के मौके पर अक्सर खूबसूरत, नफीस और पुरवकार लिबास का इंतखाब करती हैं। कपड़ों का रंग, कढ़ाई, सिलाई और जेवर सब मिलकर एक दिलकश अंदाज पैदा करते हैं। बहुत से लिबास रिवायती अंदाज को जदीद डिजाइन के साथ पेश करते हैं। रिवायती लिबास में अबाया और शेला अपनी खास जगह रखते हैं। खास महफिलों के लिए बाहर से सादा मगर अंदर से खूबसूरत लिबास पहना जा सकता है। रंगों, कढ़ाई और कपड़े का इंतखाब हर शख्स की पसंद और मौके के मुताबिक होता है। कढ़ाई का काम कतरी जीनत का एक खूबसूरत पहलू है। बारीक धागों, नक्शों और खूबसूरत तरतीब से कपड़ों को दिलकश बनाया जाता है। फूलों, पत्तियों या दूसरे सजावटी नक्शों से लिबास में नफासत पैदा होती है। ऐसे काम के लिए हुनरमंदी, सब्र और तवज्जो दरकार होती है। शादी के लिबास में सेवर भी अहम किरदार अदा करते हैं। खास मौके पर खवातीन सोने के जेवरात, हार, कंगन, अंगूठियां या झुमके पहन सकती हैं। जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि किसी खास मौके की याद और खानदानी रिवायत का हिस्सा भी हो सकते हैं। पुराने वक्त में जेवरात खानदानी अमानत की तरह संभाल कर रखे जाते थे। कुछ जेवरात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते थे। उनके साथ खानदानी यादें और खुशी के लम्हात जुड़े होते हैं। महफिल के लिए तैयारी सिर्फ लिबास और जेवर तक महदूद नहीं होती। खुशबू, बालों की तरतीब, घर की सजावट, मेहमानों के इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाता है। हर चीज में सलीका और मौके की मुनासबत का ख्याल रखा जाता है। खवातीन अक्सर मेहंदी और जेवर के साथ अपने लिबास को मुकम्मल करती हैं। मेहंदी की रात और शादी के दिन की तैयारी में फर्क हो सकता है। हर मौके का अपना रंग और अपनी खूबसूरती होती है। कतरी मर्दों के लिए भी शादी का लिबास बहुत अहम होता है। सफेद थोप, मुनज्जम कतरा और अकाल आमतौर पर पुरवकार अंदाज पेश करते हैं। खास मौकों पर बिश्त इस लिबास को मजीद खास बना सकते हैं। बारीक किनारे, बेहतरीन सिलाई बिश्त की खूबसूरती को नुमाया करते हैं। दुल्हा के लिबास में सात

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है एक जज्बा है एक ख्वाब है जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं एक नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी

नजरों से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है स्किल्स दैट मैटर मोर देन टाइटल्स, कम्युनिकेशन, अडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो स्किल्स हैं जो आपको सिर्फ एक डेजिग्नेशन से ऊपर ले जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ अपने जॉब टाइटल पे ही डिपेंड करते हैं या हमारी असली पहचान कुछ और है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को एक कुर्सी, एक कंपनी के नाम से या एक डेजिग्नेशन से डिफाइन करते हैं, लेकिन असल सवाल ये है हम कौन हैं बियॉन्ड वर्क। जॉब टाइटल एक लेबल है, लेकिन आपकी असली वैल्यू आपकी स्किल्स, आपके एटीट्यूड और आपके कैरेक्टर से बनती है। कम्युनिकेशन आपको लोगों से जोड़ता है, अडॉप्टेबिलिटी आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रखती है और वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इंसानी जज्बात समझने का हुनर देता है और क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर मुश्किल का हल ढूंढने की ताकत देती है। आज हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये सिर्फ करियर का टॉपिक नहीं, ये जिंदगी का टॉपिक है। अगर आप अपने टाइटल से ज्यादा अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी। तो दोस्तों, अपने दिल से जवाब दीजिए, आप अपने टाइटल से ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं? और अगर हाँ, तो कौन सी स्किल्स ने आपकी जिंदगी बदली है? दोस्तों, अक्सर सोसाइटी हमारी वैल्यू को हमारी जॉब टाइटल से जोड़ देती है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको इज्जत मिलती है, लेकिन अगर आप होम मेकर हैं, फ्रीलांसर हैं या अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये मिसकंसेप्शन सिर्फ एक सोच नहीं, ये हमारी जिंदगी के डिसीजंस को भी इफेक्ट करता है। हम करियर चूज करते वक्त अक्सर ये सोचते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, क्या ये टाइटल मुझे रिस्पेक्ट दिलवाएगा? लेकिन असल सवाल ये है, क्या एक टाइटल आपकी असली पहचान है? आप सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चों की तरबियत करती है, क्या वो काम वैल्यूएबल है? बिल्कुल नहीं, वो सोसाइटी का फाउंडेशन है। एक वॉलंटियर जो कम्युनिटी सर्विस करता है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर, एक दोस्त जो अपने नेबरहुड में बच्चों को फ्री ट्यूशन देता है, उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं। एक इंसान जो एल्डरली पेरेंट्स का ख्याल रखता है, वो सोसाइटी के लिए एक साइलेंट हीरो है। एक आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट से लोगों के दिल को छू लेता है, वो भी तो सोसाइटी को ब्यूटी और होप देता है। भाई, सोचने वाली बात ये है, टाइटल्स टेम्पररी होते हैं। आज आप मैनेजर हैं, कल आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किल्स, आपका कैरेक्टर और आपके एक्शंस, ये आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन, अडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो स्किल्स हैं जो आपको हर जगह सक्सेसफुल बना देते हैं। दोस्तों, अपनी पहचान को सिर्फ एक टाइटल तक लिमिटेड मत कीजिए, ये सारी बात करने का लुब्बे लुबाब ये है। आपकी असली वैल्यू आपके एक्शंस, आपकी कैरेक्टर और आपकी कंट्रीब्यूशन से होते हैं। जब आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर रोल में शाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी हो। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? आप अपने आप से सवाल कीजिए, सोच के देखिए। और क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है कि जब आपका टाइटल मैटर नहीं था? बिल्कुल, ये वाकयात हमारी जिंदगी में डेली बेसिस पे होते हैं। क्या वो छोटा भाई, छोटी बहन, बच्चा जो जानते नहीं कि अब्बा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, क्या वो आपके काम से आपसे मोहब्बत करते हैं? नहीं। देखिए, कितना सिंपल एंड सोबर एग्जाम्पल है, लेकिन आपके एक्शंस ने सब कुछ दिया। तो दोस्तों, याद रखिए, टाइटल्स आपको एक कुर्सी देते हैं, लेकिन स्किल्स आपको एक लेगेसी देती है। अपनी जिंदगी को एक डेजिग्नेशन तक लिमिटेड मत रखिए, आपकी असली पहचान वो है जो आप दुनिया को देते हैं, और वो क्या है? रेस्पेक्ट, काइंडनेस और इम्पैक्ट। दोस्तों, लेते ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: दोस्तों, पर्पस और ग्रोथ के हवाले से बात करें तो जब हम अपने टाइटल से बाहर निकलते हैं तब हम अपनी असली स्किल्स डिस्कवर करते हैं, वो स्किल्स जो हर फील्ड में काम आती हैं। भाई, कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस।

इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग ये सिर्फ करियर के लिए नहीं जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपने टाइटल को लूज कर दें तो आपके पास क्या बचेगा। जवाब है आपकी स्किल्स, और ये स्किल्स ही आपको हर चैलेंज से निकलने की ताकत देती हैं। दोस्तों, डिस्कशन के इस पॉइंट पे कुछ स्किल्स हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं, तो उसके हवाले से जो मैं बार बार मैंने रिपीट किया है उसके हवाले से थोड़ी सी ज्यादा बात करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। हर रिलेशन और करियर का फाउंडेशन कम्युनिकेशन है। अगर आप इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये सुनने का हुनर भी है। वहीं अडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अडॉप्टेबिलिटी सर्वाइवल का की है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं और दुनिया हर दिन नए चैलेंजेस ला रही है, तो जो इंसान अडॉप्ट कर सकता है वो कभी फेल नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें तो लोगों को समझना, एम्पैथी रखना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये लीडरशिप का असली टेस्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर टीमवर्क और बेटर डिसीजन मेकिंग देता है। वहीं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात करें तो हर डिसीजन को वाइसली लीजिए, ये सक्सेस की गारंटी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत देती है। मिसाल के तौर पे अगर रियल लाइफ सिनेरियोज में देखें, एक एंटरप्रेन्योर जो फेलियर के बाद अडैप्ट करता है और नई स्ट्रेटेजी बनाता है, वो अडैप्टेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं एक स्टूडेंट जो अपने इमोशंस को मैनेज करके स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स देता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पावर है। एक लीडर जो हर डिसीजन से पहले फैक्ट्स एनालाइज करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का रोल है। भाई आप सोच रहे होंगे तो चलिए स्किल्स तो हैं, मगर इसको मजीद पॉलिश कैसे कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन में रोजाना एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब कोई बात करे इंटरप्ट ना करें और उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की नहीं। अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से हर नए चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। चेंज से डरने के बजाय उसे कबूल कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो डेली जर्नलिंग कीजिए। अपने इमोशंस को लिखना आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस कीजिए। हर डिसीजन से पहले व्हाई और हाउ का जवाब ढूंढिए। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं? और क्या आपने कभी ऐसे मोमेंट फील किए हैं जब आपकी स्किल्स ने आपको टाइटल से ज्यादा पावरफुल बनाया है? सोच के देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। याद रखिए, टाइटल्स टेम्पररी होते हैं, स्किल्स परमानेंट। जब आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर रोल में शाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी। अपनी पहचान को एक डेजिग्नेशन तक लिमिटेड मत रखिए। आपकी असली वैल्यू आपके एक्शंस हैं, आपका कैरेक्टर है और आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: तो दोस्तों, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट बात समझी। हमारी वैल्यू सिर्फ एक जॉब टाइटल ही नहीं होती, हमारी असली पहचान हमारी स्किल्स, हमारा हुनर, हमारे एक्शंस और हमारी रिलेशनशिप से आती है। अगर आप प्रेशर फील करते हैं या कंपैरिजन से परेशान हैं, तो याद रखिए, आपकी वर्थ आपकी डेजिग्नेशन से नहीं, आपकी इंसानियत से होती है। अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाइए, अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए और याद रखिए, टाइटल्स टेम्पररी हैं लेकिन स्किल्स और कैरेक्टर परमानेंट हैं। तो दोस्तों, एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी वर्थ हमारे जज्बात एक्शंस रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यूज को समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं आपकी इंसानियत से है, इस बात को जरूर याद रखिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
3: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सुनना है शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब, उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी इंडोनेशिया के सदर के नाम अलग अलग ताज़ियत के बरक़ी पैगाम इरसाल किए हैं। इन पैगामात में हादसे के मुतासरीन के लिए हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के नाम बैत की सालगिरह की मुनासबत से मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के नाम मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया है। जबकि वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी इसी मुनासबत से सऊदी फरमारवा के नाम मुबारकबाद का पैगाम रवाना किया है। इन पैगामात में सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात और बाहमी तआवुन की अहमियत को भी उजागर किया गया। रियासत कतर ने न्यूयॉर्क में अक्वामी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास नंबर 81 के मौके पर मुख्तलिफ आला सतही मुलाकातों और इजलासों में शिरकत की है, जिनमें कतर की नुमाइंदगी वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफी ने की। इन मुख्तलिफ इजलासों में वज़ीर ममलकत से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा और अक्वामे मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों ने अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें बाहमी तआवुन और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इन मुलाकातों में मुश्तरका तआवुन के ताल्लुकात, इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने और तरक्की देने के वसाइल, खित्ते के ताज़ा तरीन हालात वाक़ियात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दद उमूर का जायज़ा लिया गया। रियासत कतर ने न्यूयॉर्क में दो रियासती हल के निफाज के लिए आलमी इत्तेहाद के आला सतही वजारती इजलास में शिरकत की है। इस इजलास में कतर की नुमाइंदगी वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफी ने की। इजलास से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मसाले के जामिअ मुनसिफाना और पायदार हल के लिए दो रियासती हल के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। उन्होंने बैन अल-अक़वामी क़ानून, अक़वामी मुत्तहिदा की क़रारदादों और बैन अल-अक़वामी क़ानूनी उसूलों की पाबंदी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 4 जून 1967 की सरहदों के मुताबिक होना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी अल-क़ुद्स हो। उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तारीफ की और तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया। वज़ीर ममलकत ने कहा कि कतर फ़लस्तीनी मसले के पुरअमन हल और मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने गज़ा की जंग, मगरबी किनारे में बस्तियों की तौसीह, फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े और आबादकारों के तशद्दुद से मुतालिक भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा फ़लस्तीनी सरजमीन का लाजमी हिस्सा है और वहाँ की जंग ने दो रियासती हल के इम्कानात और इलाकाई अमन सलामती को शदीद ख़तरा से दोचार किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने मिस्र, अमेरिका और तुर्किया के साथ मिलकर गज़ा में जंगबंदी के लिए मुसलसल सफारती कोशिशें की हैं और इंसानी बहरान कम करने के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी रखी हैं। रियासत कतर ने उर्दून और बरतानिया के साथ उनकी शराकत दारी में न्यूयॉर्क में गज़ा की इंसानी सूरत हाल से मुतालिक कॉल टू एक्शन इजलास की मेज़बानी की है, जिसमें कतर की नुमाइंदगी वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफी ने की। उन्होंने फ़लस्तीनी आवाम की मुश्किलात कम करने, इंसानी इमदाद की तेज़ और बिला रुकावट फराहमी, तिब्बी मराकज़ और इंसानी कारकुनों के तहफ़ पर ज़ोर दिया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: Ae Bani Adam, kya tum dua ka mazaak udate ho? Dua ko haqeer samajhte ho? Halanki tumhe khabar hi nahi ke dua kya kuch karti hai. ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, जिन्होंने काफिरों के जुल्म सितम के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी और अपने ईमान पर इस्तकामत की दुआ की। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने उस वक्त की थी जब वो ईमान की राह में जालिमों के जुल्म और फितनों से दो चार थे। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट। आज के लेसन में हम बात करेंगे फॉर्मूला 1 जवान सितारे की, उन्होंने सिर्फ चंद दिनों में मोटर स्पोर्ट दुनिया को हैरान कर दिया है, आंद्रिया किमी। ये आज के जमाने के कोई प्रॉब्लम है। इटली के बोलोगना शहर में 25 अगस्त 2006 को पैदा होने वाला किमी आज की तारीख उनके सबसे एक्सट्रीम ड्राइवर्स में से एक है। मर्सिडीज के इस यंग स्टार ने 2006 में F1 डेब्यू किया, लुई हैम के जॉर्ज रसल का टीम का हिस्सा। लेकिन किमी की कहानी फॉर्मूला 1 से काफी पहले शुरू हो गई थी। 2014 में आंतोनेली ने कार्टिंग से अपना सफर शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने यूरोप के जूनियर कॉम में अपनी स्पीड और रेस क्राफ्ट का सबूत दिया। मर्सिडीज ने भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को जल्द ही पहचान लिया और 2018 में उन्हें अपने जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा लिया। 2022 में किमी आंतोनेली ने इटालियन F4 और ADF4 जीती। FIA मोटर स्पोर्ट गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद फॉर्मूला रीजनल यूरोप चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस ने मोटर स्पोर्ट के सबसे प्रॉमिसिंग ड्राइवर्स में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि गाड़ी चलाना वेरी इजी जॉब, आप से कॉर्निश तक गाड़ी ड्राइव करके चलेंगे, कमाल रोड गाड़ी दौड़ा दी। लोग समझते हैं कि हर ड्राइवर जो है वो फॉर्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला 1 रेस जो है इज डिफिकल्ट, वो पिनाकल ऑफ ड्राइविंग है और उसमें मैकेनिक का फॉल्ट है। और फॉर्मूला 1 की क्वालिफिकेशन स्टेज मैंने बताया आंतोनेली के बारे में, F4 यानी फॉर्मूला 4 लेवल पर है, उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। सो इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस। और आंतोनेली भी था अपने बचपन से ही कि ही हैज सम ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड ड्राइवर। 2023 में उन्होंने फॉर्मूला रीजनल मेटल चैंपियनशिप में फैन साथ हिस्सा लिया और फिर ब्लर पहुंच गए। 2025 फॉर्मूला 1 का बड़ा स्टेज, किमी ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी से मर्सिडीज के लिए अपना F1 डेब्यू किया। उनकी एंट्री के साथ वो 18 की ओपोमन ग्रिड पर आए और इटालियन मोटर स्पोर्ट के नए चैप्टर की शुरुआत। लेकिन सन 2026 में आंतोनेली को प्रॉमिसिंग यंग चैंपियनशिप कंटेंडर में किमी स्वयं में सेकंड प्लेस के बाद चीन पहली के बाद जापान।

Sammy Caramora P. Chirchki. But who read I Monza? Italian Grand Prix Antonelli को engine related penalty की वजह से 19 position से race start again home crowd के साथ उन्होंने जबरदस्त comeback वे race जीत ली और इस फतेह के साथ वो 7 साल बाद Italian Grand Prix जीतने वाले पहले Italian driver बन गए what an achievement सिर्फ एक हफ्ते बाद मद्रिद में inaugural Spanish Grand Prix में भी Antonelli ने victory हासिल की ये 2026 सीजन की उनकी 8वीं ग्रैंड प्री विन थी उसके बाद वो चैंपियनशिप में जॉर्ज रसेल से पॉइंट्स आए हैं लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 14 ग्रैंड प्री 292 पॉइंट चैंपियनशिप लीडर हैं उनकी 8 जीत और 12 पोडियम किमी को अक्सर फ्यूचर चैंपियन बता रहा है लेकिन वो खुद कंपैरिजन से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर यकीन रखते हैं और शायद इसी वजह से उनकी कहानी इतनी खास 18 साल की उम्र में फॉर्मूला 1 का प्रेशर मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस किमी अंतोनेली ने सबको स्पीड मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया है दोस्तों किमी अंतोनेली का सफर अभी शुरू हुआ है लेकिन 2026 में जिस तरह वो फॉर्मूला 1 पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं ना उससे बात बिल्कुल वजह है कि मोटरस्पोर्ट की दुनिया को शायद अपना अगला बड़ा चैंपियन मिल चुका है तो दोस्तों ये था आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये स्पेशल सेगमेंट ऑन किमी अंतोनेली उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ अब तक के लिए मुझे निमोइन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें फी अमानिल्लाह

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 presents Tech Update.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आपको मैं लगातार रिव्यूज और वेबसाइट्स और कुछ ना कुछ देते रहता हूं। देखिए, मैं भूल जाता हूं कौन से एपिसोड में मैंने क्या बोला है, क्योंकि बहुत कुछ बोल चुका होता हूं। तो इन केस आपको कोई चीज ऐसी लगती है सुनने के बाद कि कबीर से पूछ लेनी चाहिए कि यार कबीर वो वाले एपिसोड में तुमने क्या कहा था, तो एक बार पूछ लिया करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है FM 107 कतर, और दूसरा ऑप्शन है आप सुबह वाले शो में आ जाया करें, है ना। तो आप एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, कबीर वो सर ये एपिसोड था या मैंने कल परसों सुना था, ये था। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो ढूंढ के आपको बता दूं, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू। बहुत प्यार करूंगा मैं आपसे। चलो शुरू करते हैं आज की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट आज है, पहली वेबसाइट का नाम jitter.video, jitter.video, jitter.video। अब वेबसाइट करती क्या है, अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे तौर तरीके आ जाएंगे, जिससे आप अपने पेज को या यू कहूं के किसी वेबसाइट को या किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी चीज को एक डिफाइंड एनिमेशन दे सकते हैं, और बहुत खूबसूरती के साथ। और ये एनिमेशन ऐसे सस्ते वाले नहीं है, ये लगे यार ये तो बहुत ही सस्ता वाला लग रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रीमियम एनिमेशन आप दे सकते हैं। ऑफ कोर्स फीचर्स हैं थोड़े से पेड होंगे, बट ये बहुत प्रोफेशनल टूल है, तो आई थिंक जो भी इसे यूज करेगा उसे जरूरत होगी तभी यूज करेगा, वरना कोई सेंस नहीं बनता। ये ऐसी वेबसाइट नहीं कि मैं गया जी मजे लेने के लिए गया था, मैं देख रहा था मेरा नाम कैसे आएगा, वैसे वाला नहीं है। आई जेन्युइनली मीन इट, इफ यू आर इनटू सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन, यूज इट, बहुत काम आने वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट जो है ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने रिसेंटली इसे डिस्कवर किया एंड आई लव इट। इसका नाम है desktophut.com, वो वाला हैट, वो

0: वाला नहीं, ये झोपड़ी वाला हट है। तो desktophut.com इस पे आप जाइए, आपके लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको भर के लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। मैं इतना खुश हुआ मंगा, फाइनली ये अपडेटेड वेबसाइट है। अपडेटेड का मतलब ये है कि जो करंटली चीजें चल रही हैं, कुछ भी नई चीज आ रही है तो उस पर भी वॉलपेपर्स हैं, एंड अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लाइव वॉलपेपर्स काफी फंक्शनल है, इन अ वे कि वो ग्लिच नहीं मारते, वो अटकते नहीं है, बहुत बढ़िया लगते हैं, एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट। और अब बढ़ते हैं जरा तीसरी वेबसाइट की तरफ। तीसरी वेबसाइट का नाम है animos.app, animos, animos.app, app। तो जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, ये सबसे पहले वाली वेबसाइट की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मोशन देता है किसी भी चीज को। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं कि चलो मैंने टेम्पलेट तो बना दिया, सब कुछ ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट भी कर लिया, बट आई वॉन्ट द थिंग टू रोटेट इन अ सर्टन वे या मूव इन अ सर्टन वे, तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे यूज करेंगे। इसका मोस्टली फ्री है मामला, कुछ चीजें पेड हो सकती हैं बट बाकी चीजें फ्री हैं, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। देखिए क्या है, आजकल कॉन्टेंट जब तक आपका फैंसी नहीं लगेगा ना, काम नहीं चलेगा। आप अगर जहन में सोच रहे हो ना कि मैं तो ओल्ड स्कूल तरीके से काम करता हूँ, इट विल नॉट वर्क। सीरियसली इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहना आज की मजबूरी नहीं कहूंगा, जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो यही तरीका जी, मैं तो चेंज नहीं करूंगा। यू हैव टू चेंज। ओके, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो वह देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सबॉक्स सोनी से मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। इस बीच गूगल भी रोल आउट कर रहा है अपना एक बहुत ही खास प्रोडक्ट, जिसका नाम उसने रखा है गूगल बुक। ये AI लैपटॉप होगा और इसके बहुत सारे हार्डवेयर पार्टनर्स है। जब आएगा तब मैं इसका खुल के रिव्यू करूंगा, मगर अभी तक कतर में नहीं दिखाया मुझे, हालांकि रोल आउट हो चुका है। $899, अच्छा प्राइस, ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, इट्स अ गुड प्राइस। पर इसका पूरा जो रिव्यू है, जब मैं इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लूंगा तो आई विल लेट यू नो। ये एंड्रॉयड फोन की जो जरूरत है उसे पूरा करता है, मतलब एंड्रॉयड फोन जो चाहिए था ना AI इंटीग्रेशन, वो लैपटॉप से पूरा हो रहा है। मैं समझाऊंगा जब मैं इसके हत्ते चढ़ूंगा, ये मेरे हत्ते चढ़ेगा। तो ये थी अपडेट्स, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। बेहद बेहद जरूरी है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Scam alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए फ्रॉड के बारे में मैं इत्तला करता रहता हूं। और कुछ दिनों हमने काफी बात करी, चाहे वो एड्रेस को अपडेट करने वाले स्कैम के बारे में बात किया हो, या फिर बात किया हो हमने किसी कार सस्ते दाम में खरीदने वाले स्कैम के बारे में, या फिर हमने बात करी हो सबसे ज्यादा चलन वाले फेक ग्रॉसरी कूपन के बारे में। लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये इसलिए ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि हम हर रोज इस तरह के काम करते हैं। जैसे घर के कुछ नियम है, कुछ काम है जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ग्रॉसरी जाना, घर पे आना, या फिर रेस्टोरेंट में जाना, कार चला के घर आना, या फिर कार चला के ऑफिस जाना। ये कुछ बेसिक्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक काम है जिसमें हो सकता है कि आप घर बैठे काम करें, विच इज ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी में भी आजकल बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गए हैं क्योंकि आप घर बैठे बैठे ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रॉसरी स्कैम। इससे होशियार रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिक तरीका है, स्कैमर्स आपको बहुत आसानी से स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों ये काम कैसे करता है, इस पर नजर अगर डालें तो स्कैमर्स आम तौर पर आपके मोहल्ले में एक पिकअप ट्रक या वैन लेकर आते हैं, या सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके पास हाई क्वालिटी मीट जैसे कि स्टीक, बीफ या चिकन और प्रीमियम ग्रोसरीज का बचा हुआ स्टॉक है जो बहुत ही सस्ते कीमत पर आपको मिल जाएगा। बायर को जल्दी फंसाने के लिए ये कहते हैं कि ये डील सिर्फ आज के लिए है, या ये किसी बड़े रेस्टोरेंट का बचा हुआ ऑर्डर है। जब आप उनसे बल्क पैकिंग में माल खरीदते हैं तो ऊपर की लेयर तो अच्छी लगती है, लेकिन घर आकर खोलने पर पता चलता है कि मीट फ्रीजर बर्न्ड है, उसकी क्वालिटी बेकार है वो एक्सपायर्ड है या खराब हो चुका है। कई बार ऑनलाइन डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के बहाने ये एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे तरीकों से या इस तरीके के स्कैम से बचने की बेहद बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी स्टोर में यू नो गोश्त खरीदने जाते हैं, मीट खरीदने जाते हैं, आपने मीट खरीदा, फिर जब वो आप घर आए तो वो एक दो दिन में खराब हो गया, बजाय इसके कि आपने तो फ्रीजर में रखा था। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, आप वापस जाएं उस स्टोर में और कि मैंने फ्रिज में रखा, मैंने कल खरीदा था या परसों खरीदा था और इतनी जल्दी ये खराब हो गया। तो अगर उनको जेन्युइन लगेगा ये मैटर तो वो रिलीज करते हैं, वो आपको वापस करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपके घर के कोई आया हो या फिर मार्केट प्लेस पे या सोशल मीडिया पे कोई एड चला हो और फिर आपने वहां पेमेंट कर दिया हो या वो सामान इवन आपके घर आ गया हो, तो अब वापस पकड़ेंगे कैसे? आपने पेमेंट किया, आपको पता थोड़ी है कि वो ग्रोसरी उसकी असल में कहां है। तो ऐसे में होशियार होने की जरूरत आपको है, क्योंकि कई बार खाना खराब होता है, ऊपर की लेयर अच्छी बना दी जाती है, साफ सुथरी धुल कर दे दी जाती है, लेकिन अंदर का माल या फिर अंदर का जो मीट है वो खराब होता है, नीचे से वो खराब होता है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से स्कैम के बचने के जो तरीके हैं वो बड़े सिंपल से, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आप बच सकते हैं। वेल, सबसे पहला तरीका है अननोन वेंडर से बल्क खरीदारी बिल्कुल ना करें। किसी भी ऐसे रास्ते चलते वेंडर से या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पेज से बल्क में मीट या ग्रोसरी ना खरीदें जिनका कोई फिजिकल स्टोर ही नहीं है या परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। क्योंकि कल को अगर आप खरीद भी लेते हैं ऑनलाइन वाला, अगर उसके पास स्टोर है तो आप स्टोर जा तो सकते हैं, क्योंकि बल्क में खरीदने का मतलब है आप कम से कम 500 रियाल तो दे ही रहे होते हैं पेमेंट के लिए। उसके अलावा फूड स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन हमेशा चेक करें। असली ग्रोसरी सप्लायर्स हमेशा प्रॉपरली लेबल्ड पैकिंग यूज करते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट, वेट और गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल स्टैंप होता है। अगर पैकिंग पर ऐसी डिटेल्स मिसिंग है तो फिर हो सकता है कि वो मीट या वो माल खराब है, उसे हरगिज ना लें। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक से भी अलग रहना है। अगर कोई सेलर आप पर दबाव डाल रहा है, अभी डील क्लोज करो वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में हैं, ये स्कैमर्स की आम निशानी है जो आपको सोचने समझने को टाइम ही नहीं देती है। उसके अलावा ट्रस्टेड लोकल आउटलेट्स का ही यूज करें। हमेशा बल्क मीट और ग्रोसरीज रजिस्टर्ड होलसेल मार्केट, सुपर स्टोर्स या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें जहां रिटर्न और रिफंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, ये था बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रोसरी स्कैम। उम्मीद है कि आपको ये स्कैम समझ जरूर आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से दैसी स्कैम अलर्ट।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की. क्या है ये और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? क्या आज का दौर सही दौर है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आजकल बहुत से लोग अपने सेविंग्स को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं. चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहें, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल शॉप हो या फिर रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है. लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्लॉट या घर खरीद लेने का नाम नहीं है. अगर प्लानिंग और रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है. इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है. पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी रियल एस्टेट एसेट को इस नियत से खरीदना कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े या उससे इनकम जनरेट हो. ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां लोग रहते हैं, यानी आपका घर हो सकता है, विला है, अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं. इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर फ्यूचर में महंगी कीमत पर सेल कर सकते हैं. वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी. ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वेयरहाउस.

ऑफिसेज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से कई गुना ज्यादा होता है। एक और इन्वेस्टमेंट है लैंड इन्वेस्टमेंट। कई इन्वेस्टर्स खाली लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी लोकेशन मिल गई, सही वक्त से लैंड सही कीमत में मिल गई, तो आगे चल के उसे बेच कर ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं।

प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन पर है तो कुछ सालों में उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो जॉब के अलावा जनरेट होती है। वहीं प्रॉपर्टी एक टैंजिबल एसेट है। स्टॉक्स या फिर डिजिटल एसेट्स के बरक्स आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और ओन करते हैं। कई लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कंफर्टेबली समझ भी पाते हैं। वहीं वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है। कई केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंट्स भी इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है। अब समझना ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले क्या देखना चाहिए। अगर मुमकिन है तो तमाम सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझें। मार्केट स्लो डाउन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, रिसर्च नहीं करते, चीप प्राइस देखी ले लिया, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमीन, दीवार और कॉन्क्रीट खरीदने का नाम नहीं है, ये अपने फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करने का नाम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, सब्र करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जो लोग आज अकलमंदी से इन्वेस्ट करते हैं वो कल ज्यादा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस पर मैं डिटेल में भी फ्यूचर में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते हो FM 106.6।

0: उधर आप 3 दिन रुकना नहीं है तो आप बुरा नमाज पढ़ो।
1: नहीं इंशाल्लाह, इस पर हम शेख साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, वो सही जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बारकअल्लाहु फ़िक।
0: बारकअल्लाहु फ़िक।
1: सामीन, सवालात का सिलसिला शुरू है और आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। बारकअल्लाहु फ़िकुम। हम गुफ्तगू कर रहे थे कारोबार में सिदक व अमानत के बारे में। आज का ज़माना कारोबार का ज़माना है और यहाँ पर सच्चाई और अमानत का ताल्लुक कारोबार से भी है और बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। कारोबारी यानी एक एतमाद का नाम होता है, इसलिए कि कारोबार में दो अफराद एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो उसी वक्त कनेक्ट रहेंगे, यानी उसी वक्त तक कनेक्ट रहते हैं जब तक एक दूसरे में एतमाद बाकी रहता है। अगर कोई शख्स दुकान चलाता है मिसाल के तौर पर, और दुकानदार ये कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है उसमें आयब छुपा दे या कोई जाली चीज़ को बेच दे असली बताकर, या चावल वगैरह है, इसी तरह दीगर जो चीज़ें मौजूनी चीज़ें हैं जो वज़न करके बेची जाती हैं, उसको फ़रोख्त करते वक्त वज़न कम कर दे या गलत मालूमात दे, या जो कस्टमर हैं हमारे उनको हम धोखा दें, तो ये बज़ाहिर से कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, यानी दुनियावी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो शख्स अपने रिज़्क़ और आखिरत को नुकसान पहुँचा रहा है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले के ढेर में हाथ डाला उन्होंने, और तो अंदर से गीला गल्ला निकला है। एक कॉल आ रही है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है भाई। आपका नाम?
2: मोहम्मद सलीम।
1: जी सलीम भाई,
2: जी सर, मैंने एक जगह पे सुना था कि अगर किसी शख्स का मिसाल के तौर पर अपनी शर्मगाह के साथ हाथ लग जाता है और इसके दरमियान में कोई दूसरा चीज ना हो, मिसाल कपड़ा मपड़ा वगैरह, तो उस पे वजू फर्ज है कि वो दोबारा वजू कर ले, तो क्या यह बात सही?
1: जी आपने कहाँ सुना है भाई ये बात?
2: मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने फेसबुक पे सुना था या किसी मौलवी से सुना था, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना था, देखा था कि इस तरह का हो, तो मैंने बोला चलो पूछ लेते हैं।
1: जी जी भाई, जैसे हमारे यहाँ चार फिक्र राइज है यानी इस्लाम में, एक तो हनाफ की है, एक हनाबिला, एक शवाफे की, और एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। तो अगर आप अहनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके यहाँ इस तरह यानी शर्मगाह से अगर हाथ लग जाए तो वज़ू नहीं टूटता है।
2: जी सर,
1: आप उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो कहते हैं कि अगर इस तरह आपकी शर्मगाह से आपका हाथ लग जाए तो वज़ू टूट जाता है, और दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। और ये अगर आप अहनाफ को फॉलो करते हैं यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटता है।
2: जी सर, हम इमाम अबू हनीफा आपको फॉलो करते हैं।
1: जी जी, तो आपके लिए अगर इस तरह हाथ लग जाए तो फिर कोई मसला नहीं है।
2: जी सर,
1: जी जज़ाकअल्लाह। कोई दूसरा सवाल है भाई आपका?
2: हाँ, दूसरा सवाल है कि हम ये डिलीवरी का काम करते हैं, कभी कभी हमारे को लेट ऑर्डर आता है, मिसाल के तौर पर छुट्टी के टाइम पे होता है या ब्रेक के टाइम पे होता है, और हम कंपनी को कॉल करते हैं, उसको मिसाल के तौर पर ऐसा बोलो कि झूठ बोल देते हैं कि हमारा गाड़ी का ये चीज खराब हो गए या वो चीज खराब हो गए, हम ऑफलाइन हो रहे हैं, हाँ ये ऑर्डर आप रिमूव कर दो
1: जी।
2: तो क्या ये इसका गुनाह होगा या नहीं?
1: इसका गुनाह ये इस ताल्लुक़ से शेख साहब से हम ज़रूर बात करेंगे कि इसका गुनाह होता है, यानी अगर आप यानी कोई ऐसी सिचुएशन में हैं कि वहाँ आप उनसे इस तरह अगर नहीं कहेंगे तो फिर आपको कुछ वक्त भी नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें क्या गुंजाइश हो सकती है नहीं हो सकती, इस ताल्लुक़ से हम उनसे मालूम करेंगे। लेकिन बज़ाहिर इस तरह कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि एक झूठ की किस्म आती है।
2: सर, इस तरह के कोई हमारे मजबूरी होता है ना, मिसाल तौर पर हम बहुत दूर जाते हैं तो फिर रूम पे लेट पहुंच जाते हैं, फिर हमें दोबारा ड्यूटी के लिए तैयार होने में नहीं हो सकते है ना, جی اس طرح کے کوئی مسئلے کے بارے، ویسے نارمل حال

0: उनके भाई का गुज़श्ता महीने गालिबन इंतकाल हो गया है। उन्होंने जो बद्दुआ दी थी कि भाई तुम बीमार हो गए, दवा भी तुम्हारी हो गई लेकिन तुम मर जाओगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी और वो इसी तरह गए हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो सवालात उनके थे। एक तो ये है कि ये बद्दुआ देना कैसा है उनका
1: जी,
0: वारिद अगर बद्दुआ दे, और दूसरा कि बद्दुआ लगती है या नहीं लगती, और अगर लगती है तो फिर इससे हम बचने के लिए क्या करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये नसीम भाई के सवाल तो वाकई ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि वालदैन तो एक हमारे माशरे के लिए सबसे अहम, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का हक इंसानों पर बताया गया है तो वालदैन के हुकूक़ हैं, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसकी शुरू ही से इसका ध्यान देना है कि हमें ऐसे कोई हालात पैदा ना हो कि एक तरफ़ा आपस की दुश्मनी, एक आम लोगों से भी दुश्मनी और इनकी नाकदरी जायज़ नहीं है, चीज़ है कि वालदैन के ताल्लुक से। तो वालदैन चूँकि क़ुरान करीम में सराहत के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इनके बारे में, यहाँ तक कि आखिर दर्जे की जो चीज़ है वो ये है कि उफ़ कर दे इंसान, यानी वालदैन कोई बात कहें और इंसान जो है उसको आँख चढ़ा के कोई बात करे, या कोई उफ़ यानी हल्की सी चीज़ भी, ये भी शरीयत में वालदैन के साथ बर्दाश्त नहीं की गई है। अब चूँकि शरीयत ने भी एक गुंजाइश दी, वो ये है कि ला ताअत लिमखलूक फ़ी मासियत अलखालिक, अगर वालदैन जो हैं वो भी अगर अल्लाह तबारक व ताला की मासियत के बारे में अगर कोई बात दे तो सिर्फ ये बात उनकी ना मानी जाएगी, बाकी दूसरी बातों में उनके हुक्म को माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है चूँकि दोनों भाई और वालदा सब अलग अलग हो गए हैं, और ऐसा महसूस होता है कि एक ग्रुप बन गया है, एक तरफ ये लोग हैं दूसरी तरफ, तो ये सही नहीं है। ऐसा माहौल हुआ क्यों, ऐसा माहौल होने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूँकि हो गया तो अब उसको जो है उसको कोशिश करना है कि सद्दद वक़ारिब, किस तरीके से वालदैन को जो है वो करीब लाया जाए और किस तरीके से उनका दिल जो है वो जुड़े। अगर 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है, इस तरीके से जो है तनाव नहीं होना चाहिए, चूँकि हमारे वालदैन हैं और उनकी बद्दुआ तो लगती है चूँकि, लेकिन इसमें भी देखा जाएगा कि हक़ पर, अब हक़ पर हैं हम, अगर आखिर हम हक़ पर हैं और कोई मास, जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह तबारक ताला की कोई नाफरमानी ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर बचना है। अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी हो रही है तो फिर इंसान जो है वालदैन की बात ना मानने की गुंजाइश है। तो इस सूरत में जो है हम नसीम भाई से कहेंगे कि ऐसी क्या सूरत होगी कि अब इसको माहौल को जो है तनाव वाले माहौल को ख़त्म किया जाए और वालदैन को, वालिद को करीब किया जाए, और अगर नहीं वो मानते हैं तो उनको भी जवाब देना है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, लेकिन हमारी तरफ से कोई इस तरीके की बात ना हो जिससे जो है उनका दिल और भी मज़ीद वो हो जाए और फिर वो ऐसे कोई हालात ना जाए, बद्दुआ देने की नौबत आ जाए। तो उनकी बद्दुआ से तो बचना बचना ही है, लेकिन ये फौरी तौर पर हम कोई कदम उठाएँ उनके दोस्त के ज़रिए, किसी भी तरीके से आपसी इस्लाह के ज़रिए से, कि ऐसे माहौल जो है ये एक दूसरे से वो करीब हो और इससे बचने की कोशिश बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है।
0: जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। यकीनन नसीम भाई, आपको अब तक बात वाज़े हो गई होगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप उनसे अगर इस तरह का कुछ मामला है कि उनकी तरफ से ज़्यादती है तो उसको बर्दाश्त करें, इस पर आपको सवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल।
0: सामीन, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सिद्क और अमानत, ये इंसान के ईमान और उसके किरदार और उसकी शख्सियत की बुनियाद होती हैं, जबकि इसके बरक्स जो सिफात है किज़्ब की, झूठ है यानी ख़यानत है, इंसान के दीन और दुनिया दोनों को नुकसान पहुँचाने वाले औसाफ़ हैं। सच्चाई ये सिर्फ ज़ुबान से सच्ची बात कहने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान की नीयत है, इंसान का कौल है और उसका अमल है। इस इन तमाम चीज़ों में सच्चाई इख्तियार करना चाहिए। कारोबार है, कारोबार में सच्चाई इख्तियार करें, बच्चों के सामने सच बोलें, बच्चों को सच बोलने की तरगीब दें, और इसी तरह अमानत है, ये अमानत का ताल्लुक सिर्फ़ माल और असबाब की हिफाजत से नहीं होता, बल्कि अमानत हर ज़िम्मेदारी आपकी और हर ओहदा, हर मनसब और हर ताल्लुक में दयानतदारी का तकाजा करती है अमानत। तो सामीन, हमें चाहिए कि हम अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हमारी गुफ्तगू में सच्चाई है, کیا

के तौर पे वो 40 साल का प्रोफेशनल है, उसके दो बच्चे हैं, घर का रेंट है, स्कूल फीस है, और इसी दौरान उसके पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। अब हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। वीकेंड्स पर उन्हें हॉस्पिटल्स ले जाना कुछ लोगों के लिए अगेन इरिटेटिंग हो जाता है, उनके बिल्स पे करना। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ, अपने मैरिज, अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू करके ये सब कर रहे हैं तो शायद यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो हैं वो कई दफ़ा गिल्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो नो कहेंगे तो बुरी बात है या बुरा बेटा कहलाऊंगा या बुरी बेटी कहलाऊंगी। लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केयर गिवर बर्न आउट एक रियल प्रॉब्लम है। केयर गिवर बर्न आउट तब होता है जब एक इंसान दूसरे की देखभाल में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपना इमोशनल और फिजिकल वेलबींग भूल जाता है। अक्सर हमने सुना होगा कि मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। ये लाइंस बड़ी कॉमन है और मुझे लगता है कि मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुश नहीं हूँ। दोस्तों, ये साइन है केयर गिवर प्रेशर ज्यादा होना। इसका सल्यूशन क्या है? कई बार हमें और आपको सल्यूशन समझ में नहीं आता। सबसे पहली बात, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाए। सारे सिबलिंग्स मिलकर पेरेंट्स की केयर प्लान करें। अगर तीन बहन भाई हैं तो सिर्फ एक पर सारा बर्डन ना डाला जाए। फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी शेयर होनी चाहिए, विजिट्स भी शेयर होनी चाहिए, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी शेयर होनी चाहिए। पर हाँ, दूसरी बात, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझें, अपनी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, हेल्प लेने में शर्म महसूस ना करें। प्रोफेशनल केयरगिवर्स, नर्सिंग सपोर्ट, कम्युनिटी सर्विसेज भी फैमिली सपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि अगर उन्हें एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं या लेनी पड़ती है तो वो शायद अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल में इंटेलिजेंट केयर गिविंग वो है जो सस्टेनेबल हो। एक और अहम पॉइंट है इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी कभी पेरेंट्स अपने अडल्ट चाइल्ड पर इमोशनली इतना डिपेंड कर लेते हैं कि चाइल्ड की पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगती है। इस सूरत में हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी है। बाउंड्रीज बदतमीजी नहीं है, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह निभाया जाए कि ना पेरेंट्स नेग्लेक्ट हो और ना चिल्ड्रन इमोशनली और फाइनेंशियली कोलैप्स करें। फैमिली केयर मोहब्बत से होनी चाहिए, गिल्ट से नहीं, रिस्पेक्ट से होनी चाहिए, प्रेशर से नहीं। और जब फैमिली के तमाम मेंबर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो केयर गिविंग बर्डन नहीं रहती, बल्कि एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ लव बन जाती है। दोस्तों, जब बच्चे पेरेंट्स का सहारा बनते हैं तो फैमिली का एक नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी बैलेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे फैमिली मैटर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव टॉपिक पर, और ये है फैमिली सीक्रेट्स। कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट उनके सामने आ जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से इनकार कर देते हैं। मैं अब एक छोटी सी मिसाल दूंगी सेकेंड मैरिज की। ये छोटा सा किस्सा है, मेरे नेबर हुआ करते थे। उनकी बहुत सालों तक हमें भी नहीं पता था कि ये जो वाइफ, जो आंटी उनके साथ रहती हैं, वो उनकी सेकंड वाइफ है, और शायद उनके बच्चों को भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सीक्रेट जो था वो उनके बच्चों पर और हम सब पर भी लेटर ऑन रिवील हुआ। बच्चे भी बड़े हो गए थे और शायद अंकल आंटी भी एज कर रहे थे। अब ऐसे में हुआ ये कि जिस तरह से ये सीक्रेट उनके सामने आया, बच्चों ने अपने फादर की और मदर की तो शायद बिल्कुल भी नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार।

टू वे प्रोसेस बनाइए। हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी छुपाते हैं और उनकी बेहतरी के लिए छुपाते हैं। कभी फैमिली किसी रिलेटिव की इलनेस या पुराने वाकयात जो है उन्हें डिस्कस नहीं करते, और कभी कुछ सीक्रेट्स इतने गहरे होते हैं कि पूरी जिंदगी उनका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये है कि क्या फैमिली पीस के लिए कुछ सच छुपा लेना ठीक है, या हर फैमिली मेंबर को सच बता देना उसका हक बनता है, जरूरी है? देखिए, कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ सच सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बच्चे हर चीज जान जाएंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक फादर अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फैमिली से छुपाता रहता है। उनकी नीयत नहीं बुरी होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को परेशानी से बचाना चाहते हैं। लेकिन जब अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आते हैं तो फैमिली शॉक में रह जाती है। इसी तरह कई बार एडॉप्शन, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर सेकेंड मैरिज, जिसका मैंने जिक्र किया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं फैमिलीज में जो सालों तक सीक्रेट रखे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब सच देर से सामने आए। लोग अक्सर कहते हैं, काश मुझे पहले पता चल जाता, सबसे ज्यादा तकलीफ झूठ से हुई, वगैरह वगैरह। असल में लोग सच से कम और धोखे से ज्यादा हर्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सच हर वक्त बताना जरूरी है। विजडम और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हर फैमिली को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है और कौन सी डिसेप्शन है। देखिए, हेल्दी फैमिली वो नहीं जहां कोई सीक्रेट ना हो। हेल्दी फैमिली वो है जहां ट्रस्ट मजबूत हो, जहां जरूरी सच मुनासिब वक्त पर ऑनेस्टली और रिस्पेक्ट के साथ शेयर किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें और आपको याद रखनी चाहिए। टेम्परेरी पीस के लिए छुपाया गया सच कई दफा परमानेंट ट्रस्ट को डैमेज कर देता है। दोस्तों, हर फैमिली में एक इंसान ऐसा भी होता है जो सबको जोड़ के रखने का काम करता है। कई बार ये रोल माँ अदा कर रही होती है, कई बार ये रोल फादर अदा कर रहे होते हैं, या कई बार कोई बड़ा भाई बहन है या कोई बेटा। ये वो लोग हैं जो हर जगह कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, हर फैमिली मेंबर को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह की इमोशनल कॉस्ट से वो गुजर रहे होते हैं? बहुत से लोग अपनी खुशी, अपनी ड्रीम्स, अपनी मेंटल हेल्थ कुर्बान कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि फैमिली में पीस बना रहे। मिसाल के तौर पे एक बेटी जो अपने करियर को छोड़ देती है या परस्यू करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि उसके पास वक्त ही नहीं है। या एक बेटा जो अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा घर वालों की जरूरत पूरी करने में लगाता है और खुद सेविंग्स नहीं कर पाता। ये सेक्रीफाइसेस मोहब्बत की निशानी है। लेकिन जब सेक्रीफाइस एप्रिसिएशन के बगैर एक रूटीन बन जाए, तब वो सेक्रीफाइस नहीं, बोझ महसूस होता है। कई लोग दिल में रिसेंटमेंट डेवलप कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। फैमिली को जोड़ना बहुत ही खूबसूरत बात है, मगर अपनी आइडेंटिटी खोना खूबसूरत बात नहीं है। अगर आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते रहेंगे और खुद को इग्नोर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल एग्जॉशन लाजमी हो जाएगा। शायद इसीलिए सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज फैमिली को तोड़ती नहीं, जोड़ती हैं, मजबूत बनाती हैं। यहाँ ये बात हमेशा याद रखिए कि आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। हमने कई बार देखा भी है, महसूस भी किया है, और लोग बात भी करते हैं कि अगर फैमिली में ट्रस्ट हो, लॉयल्टी हो, तो फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। वहां मैं ये भी कहूंगी कि फैमिली रिलेशनशिप का फाउंडेशन ऑफ कोर्स ट्रस्ट है, लेकिन कई दफा लॉयल्टी और ऑनेस्टी एक दूसरे के मुकाबले में खड़े नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता चले कि फैमिली का एक मेंबर कोई अहम बात छुपा रहा है, आप क्या करेंगे? बताइए, फैमिली की लॉयल्टी निभाएंगे या फिर सच बताएंगे? यही डिलेमा बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। हमारे कल्चर में लॉयल्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है।

लेकिन लॉयल्टी का मतलब अंधा सपोर्ट ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई फैमिली मेंबर गलत डिसीजन ले रहा है तो उसकी हर बात को सपोर्ट करना लॉयल्टी नहीं है, बल्कि उसे सच बताना और गाइड करना लॉयल्टी है। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं और टूटने में शायद कुछ सेकेंड्स। जब लोग डिस्कवर करते हैं कि उनसे इम्पोर्टेंट बातें छुपाई जाती हैं, तो इससे उनका ट्रस्ट टूटता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो रीबिल्ड करना मुश्किल होता है। दोस्तों, फैमिली रिलेशनशिप की ब्यूटी ऑनेस्टी में है, पर ऑनेस्टी का मतलब हार्श होना नहीं है, ऑनेस्टी का मतलब ट्रांसपेरेंट होना है। सच अगर रिस्पेक्ट और एम्पैथी के साथ बोला जाए तो वो रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। झूठ शायद टेम्परेरी कंफर्ट दे, लेकिन सच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए फैमिली लॉयल्टी और ट्रुथ को अपोजिंग फोर्सेस नहीं समझना चाहिए। इन दोनों का गुड बैलेंस ही हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद है। मैं तो कहूंगी दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त आता है कि जब फैमिली रोल्स कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, जब पेरेंट्स जो हमेशा हमारे लिए डिसीजंस लेते थे अब डिसीजंस नहीं ले पाते, जो पेरेंट्स कभी डिसीजन मेकर्स थे वो आज गाइडेंस के लिए बच्चों की तरफ देखते हैं, जो बेटा या बेटी कभी डिपेंडेंट थे वो प्रोवाइडर या प्रोटेक्टर बन जाते हैं। और ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी नहीं और बच्चों के लिए भी नहीं। कई पेरेंट्स, कई बार ऐसा है जो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि मैं अब अपने बच्चों का मोहताज हूँ या उन पर डिपेंड कर रहा हूँ। उन्हें लगता है कि मैं इससे अपनी इज्जत खो रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो भी अपने आप पर एक प्रेशर महसूस करते हैं। अब ये प्रेशर उन्हें उनकी फैमिली की तरफ से भी मिल रहा होता है, या उनके बच्चों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके चलते भी मिल रहा होता है। यानी एक इंसान एक ही वक्त में तीन जनरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हुए प्रेशर में होता है। इसे अक्सर हम और आप कहते हैं सैंडविच जनरेशन, आपने सुना भी होगा। मिसाल के तौर पर एक वर्किंग मदर को सोचिए, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, शाम को एजिंग पेरेंट्स की डॉक्टर अपॉइंटमेंट अरेंज करना या उन्हें लेकर जाना, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करना। ये सिर्फ फिजिकल एग्जॉस्टन नहीं है, ये फिजिकल लोड नहीं है, बल्कि इमोशनल लोड भी है। इसीलिए चेंजिंग फैमिली रोल्स के दौरान सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को अपनी नीड्स ओपनली शेयर करनी चाहिए और बच्चों को भी अपनी लिमिटेशंस ओपनली बतानी चाहिए। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। अडल्ट चाइल्ड को याद रखना है कि पेरेंट्स की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और पेरेंट्स को भी ये याद रखना है कि उनके बच्चों की अपनी जिंदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फैमिली का असल हुस्न इसी बैलेंस में है, ना पूरी डिपेंडेंसी और ना पूरी डिस्टेंस, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों, आज हमने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के पेरेंट्स क्यों बन जाते हैं, फिर किस तरह से कई बार जो सीक्रेट्स हैं, जो छुपाई जाती हैं बातें, वो भी बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर कर देती हैं, कैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी को समझना हमें ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हर फैमिली का जो सफ़र है वो मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ जो हर फैमिली में कॉमन है और वो है मोहब्बत। मोहब्बत के साथ कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट। जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, सच को विजडम के साथ हैंडल करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिल बांट कर उठाते हैं, द फैमिलीज सिर्फ और सिर्फ सरवाइव नहीं करती बल्कि वो थ्राइव करती हैं, है ना। जब हम कहते हैं ना कि बच्चे पेरेंट्स के पेरेंट्स बन जाते हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो सुनने में बड़ा अजीब सा भी लगता है। आखिर पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में रोल्स इतने बदल जाते हैं कि अडल्ट चाइल्ड अपने माँ बाप की केयर, प्रोटेक्शन और डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है और इसका इमोशनल असर क्या होता है, सवाल ये है कि क्या हम इसे बखूबी निभा पाते हैं। जिंदगी एक साइकिल है। जब हम पैदा होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसा हमने बात भी की, वो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, हमारी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो लेते हैं, और इस तरह से पूरी तरह से हम उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर
वक्त बदलता है। एक वक्त वो भी आता है कि जब वो हम पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स की एज बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, एनर्जी कम होती है, मेमोरी कम हो जाती है और फिर वो हम पे डिपेंड करने लगते हैं। और फिर बच्चा कहता है, अब्बू दवा ले लीजिए, अम्मी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप भूल गई, या ये पेपर वर्क मैं कर देता हूँ, आप साइन भी सही से नहीं कर पा रही। ये सारे रोल रिवर्सल्स शुरू हो जाते हैं। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। शायद उन्होंने उस तरह से रिटायरमेंट प्लान नहीं किया या कोई और भी उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती और फिर यहाँ से फैमिली में इश्यूज भी शुरू होते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक ही बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगती है। और हमारे कल्चर में ये बड़ी आम सी बात है कि बड़ा बेटा है, बड़ा जो है वो घर का जिम्मेदार है, उसे सारी जिम्मेदारी उठानी है और बेटियां बस आई गई और क्या शादीशुदा बेटियां हैं तो वो जिम्मेदारियां नहीं उठाती। लेकिन हकीकत में बेटा हो या बेटी, बड़ा हो या छोटा, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। हाँ, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर एक ही बच्चा है और सिंगल चाइल्ड है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अगर बच्चे हैं 2-3-4 तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी है, सबका फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। कई दफा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो जाती है या इतनी ज्यादा लगती है कि बच्चे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर परेशान होते हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं। देखिए, एज के साथ सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है हेल्थ का। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, जॉइंट पेन, कई बार डिमेंशिया या और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब सबसे बड़ा काम है हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस। अब आपस में बच्चे जो है वो शेयर करने को तैयार नहीं होते, या फिर हॉस्पिटल विजिट्स, मैं बिजी हूँ, तुम बिजी हो, ये वो बहुत सारी बातें चलती हैं। जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमें एक गुड बैलेंस आपस में क्रिएट करना चाहिए। शायद मैंने स्टार्ट से ही बात की है कि हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में आपस में भाई बहन मिलके बैठ के बात करें। आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, कितनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मेडिकल पोर्टल्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं। कई सीनियर सिटीजंस के लिए सब आसान कर दिया गया है, उनके लिए अलग से लाइंस होती हैं। यहाँ भी बच्चे पेरेंट्स के टीचर और गाइड बन जाते हैं। आज कई पेरेंट्स बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स तक हर चीज के लिए अपने बच्चों पर ही डिपेंड करते हैं और ये डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि शायद इसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। एक और चीज मैं कहूंगी कि इमोशनल सपोर्ट के बिना इस एज में बड़ी जरूरत होती है। हर डिपेंडेंसी फाइनेंशियल या फिर फिजिकल नहीं है, कई बार पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट के लिए भी बच्चों पर डिपेंड होने लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब सोशल सर्कल छोटा हो गया, फ्रेंड्स कम हो गए, बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी हैं, पेरेंट्स जो हैं वो लोनलीनेस का शिकार है। ऐसे में अडल्ट चाइल्ड सिर्फ केयर टेकर नहीं है, वो लिसनर भी है, वो फ्रेंड भी है, वो इमोशनल सपोर्ट भी है, और वही क्यों है, बाकी कहाँ है। कई पेरेंट्स रोज अपने बच्चों का फोन का वेट करते हैं, एक छोटी सी कॉल भी उनके दिन को खूबसूरत बना देती है। हर रोल रिवर्सल ओल्ड एज में नहीं होता, कभी कभी बच्चे बचपन से ही पेरेंट्स जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू कर देते हैं। अगर फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, अगर किसी पेरेंट की इलनेस है, अगर डिवोर्स या फिर सेपरेशन है, तो बच्चे इमोशनल बर्डन उठाना शुरू करते हैं। वो अपने सिबलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं, पेरेंट्स को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, और कई दफा अपने एज से ज्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी में इसे पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी जब बच्चा बच्चा रहने की बजाय पेरेंट का रोल करे तो ये पेरेंटिफिकेशन सामने आती है। ये सिचुएशन इमोशनल प्रेशर भी क्रिएट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये मोहब्बत है या एक बर्डन है। क्या पेरेंट्स की केयर करना बर्डन लगता है बच्चों को? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, ये मोहब्बत और ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है, इसे प्रॉब्लम ना समझें। लेकिन हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्रीफाइस के दरमियान हम बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं,
मैरिज लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, अपने करियर को इग्नोर कर रहे हैं, हर वक्त स्ट्रेस में हैं, तो ये आपके ऊपर बर्डन बनेगा। मोहब्बत और प्रेशर में फर्क है। मोहब्बत जो है वो इंसान को खुश रखती है और प्रेशर इंसान को थका देता है। कई फैमिलीज में एक प्रॉब्लम ये बड़ी है कि दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने ही नहीं चाहते। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक चाइल्ड पर है, एक बच्चे पर है। मिसाल के तौर पे 3 बहन भाई हैं, लेकिन पेरेंट्स की देखभाल सिर्फ एक कर रहा है, बाकी सिर्फ दूर से बैठ के मशवरा दे रहे हैं। ये सिचुएशन रिसेंटमेंट क्रिएट करती है। फैमिली केयर एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, टाइम भी, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी। जब काम डिवाइड होता है तो प्रेशर कम होता है। रोल रिवर्सल का मतलब ये भी नहीं है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कम की जाए।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास्ट चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, जिन्होंने काफिरों के जुल्म सितम के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी और अपने ईमान पर इस्तकामत की दुआ की। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने उस वक्त की थी जब वो ईमान की राह में जालिमों के जुल्म और फितनों से दो चार थे। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا

को मामूली न समझे, चाहे वो बकरी के पाए का एक मामूली हिस्सा ही क्यों ना हो। तो सामने किराम सुन्नत कहती है, जो मुयस्सर है मोहब्बत के साथ दे दी जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए

जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं दोहा वाला कबीर, एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आपको मैं लगातार रिव्यूज और वेबसाइट्स और कुछ ना कुछ देते रहता हूं। देखिए, मैं भूल जाता हूं कौन से एपिसोड में मैंने क्या बोला है, क्योंकि बहुत कुछ बोल चुका होता हूं। तो इन केस आपको कोई चीज ऐसी लगती है सुनने के बाद कि कबीर से पूछ लेनी चाहिए कि यार कबीर वो वाले एपिसोड में तुमने क्या कहा था, तो एक बार पूछ लिया करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है FM107 कतर, और दूसरा ऑप्शन है आप सुबह वाले शो में आ जाया करें, है ना। तो आप एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, कबीर वो सर ये एपिसोड था या मैंने कल परसों सुना था ये था। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो ढूंढ के आपको बता दूं, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू।

0: बहुत प्यार करूंगा मैं आपसे। चलो शुरू करते हैं आज की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट आज है पहली वेबसाइट का नाम jitter.video, jitter jitter डॉट वीडियो, jitter.video। अब वेबसाइट करती क्या है, अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे तौर तरीके आ जाएंगे जिससे आप अपने पेज को या यू कहूं कि किसी वेबसाइट को या किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को एक डिफाइंड एनिमेशन दे सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ। और ये एनिमेशन ऐसे सस्ते वाले नहीं है, ये लगे यार ये तो बहुत ही सस्ता वाला लग रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रीमियम एनिमेशन आप दे सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े से पेड होंगे, बट ये बहुत प्रोफेशनल टूल है, तो आई थिंक जो भी इसे यूज करेगा उसे जरूरत होगी तभी यूज करेगा, वरना कोई सेंस नहीं बनता। ये ऐसी वेबसाइट नहीं कि मैं गया जी मजे लेने के लिए गया था, मैं देख रहा था मेरा नाम कैसे आएगा, वैसा वाला नहीं है। आई जेन्युइनली मीन इट, इफ यू आर इनटू सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन यूज इट, बहुत काम आने वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट जो है ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने रिसेंटली इसे डिस्कवर किया, आई लव इट। इसका नाम है desktophut.com, वाला हैट वाला नहीं ये झोपड़ी वाला हट है। तो desktophut.com इस पे आप जाइए, आपके लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको भर के लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। मैं इतना खुश हुआ मंगा फाइनली ये अपडेटेड वेबसाइट है। अपडेटेड का मतलब ये कि जो करंटली चीजें चल रही हैं, कुछ भी नई चीज आ रही है तो उसपे भी वॉलपेपर्स हैं, एंड अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लाइव वॉलपेपर्स काफी फंक्शनल है, इन अ वे कि वो ग्लिच नहीं मारते, वो अटकते नहीं है, बहुत बढ़िया लगते हैं, एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट। और अब बढ़ते हैं जरा तीसरी वेबसाइट की तरफ। तीसरी वेबसाइट का नाम है animos.app, animos, animos.app, app। तो जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, ये सबसे पहले वाली वेबसाइट की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मोशन देता है किसी भी चीज को। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं कि चलो मैंने टेम्पलेट तो बना दिया, सब कुछ ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट भी कर लिया, बट आई वॉन्ट द थिंग टू रोटेट इन अ सर्टन वे या मूव इन अ सर्टन वे, तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे यूज करेंगे। इसका मोस्टली फ्री है मामला, कुछ चीजें पेड हो सकती हैं बट बाकी चीजें फ्री हैं, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। देखिए क्या है, आजकल कॉन्टेंट जब तक आपका फैंसी नहीं लगेगा ना, काम नहीं चलेगा। आप अगर जहन में सोच रहे हो ना कि मैं तो ओल्ड स्कूल तरीके से काम करता हूँ, इट विल नॉट वर्क। सीरियसली इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहना आज की मजबूरी नहीं कहूंगा, जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो यही तरीका जी, मैं तो चेंज नहीं करूंगा। यू हैव टू चेंज। ओके, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो वैसे देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सबॉक्स सोनी से मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। इस बीच गूगल भी रोल आउट कर रहा है अपना एक बहुत ही खास प्रोडक्ट जिसका नाम उसने रखा है गूगल बुक। ये AI लैपटॉप होगा और इसके बहुत सारे हार्डवेयर पार्टनर्स है, जब आएगा तब मैं इसका खुल के रिव्यू करूंगा, मगर अभी तक कतर में नहीं दिखाया मुझे, हालांकि रोल आउट हो चुका है। $899, अच्छा प्राइस, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है, इट्स अ गुड प्राइस। पर इसका पूरा जो रिव्यू है जब मैं इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लूंगा तो आई विल लेट यू नो। ये एंड्रॉयड फोन की जो जरूरत है उसे पूरा करता है, मतलब एंड्रॉयड फोन जो चाहिए था ना AI इंटीग्रेशन, वो लैपटॉप से पूरा हो रहा है। मैं समझाऊंगा जब मैं इसके हत्ते चढ़ूंगा, ये मेरे हत्ते चढ़ेगा। तो ये थी अपडेट्स, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। आप बेहद बेहद जरूरी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: स्कैम अलर्ट।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं इत्तला करता रहता हूं। और कुछ दिनों हमने काफी बात करी, चाहे वो एड्रेस को अपडेट करने वाले स्कैम के बारे में बात किया हो, या फिर बात किया हो हमने किसी कार को सस्ते दाम में खरीदने वाले स्कैम के बारे में, या फिर हमने बात करी हो सबसे ज्यादा चलन वाले फेक ग्रॉसरी कूपन के बारे में। लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये इसलिए ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि हम हर रोज इस तरह के काम करते हैं। जैसे घर के कुछ नियम है, कुछ काम है जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ग्रॉसरी जाना, घर पे आना या फिर रेस्टोरेंट में जाना, कार चला के घर आना या फिर कार चला के ऑफिस जाना, ये कुछ बेसिक्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक काम है जिसमें हो सकता है कि आप घर बैठे काम करें, विच इज ग्रोसरी। और ग्रोसरी में भी आजकल बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गए हैं क्योंकि आप घर बैठे बैठे ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम।

ग्रोसरी स्कैम। इससे होशियार रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिक तरीका है, स्कैमर्स आपको बहुत आसानी से स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों ये काम कैसे करता है इस पर नजर अगर डालें तो स्कैमर्स आम तौर पर आपके मोहल्ले में एक पिकअप ट्रक या वैन लेकर आते हैं या सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके पास हाई क्वालिटी बल्क मीट जैसे कि स्टीक, बीफ या चिकन और प्रीमियम ग्रोसरीज का बचा हुआ स्टॉक है जो बहुत ही सस्ते कीमत पर आपको मिल जाएगा। बायर को जल्दी फंसाने के लिए ये कहते हैं कि ये डील सिर्फ आज के लिए है या ये किसी बड़े रेस्टोरेंट का बचा हुआ ऑर्डर है। जब आप उनसे बल्क पैकिंग में माल खरीदते हैं तो ऊपर की लेयर तो अच्छी लगती है लेकिन घर आकर खोलने पर पता चलता है कि मीट फ्रीजर बर्न्ड है, उसकी क्वालिटी बेकार है, वो एक्सपायर्ड है या खराब हो चुका है। कई बार ऑनलाइन डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के बहाने ये एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे तरीकों से या इस तरीके के स्कैम से बचने की बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी स्टोर में गोश्त खरीदने जाते हैं, मीट खरीदने जाते हैं, आपने मीट खरीदा फिर जब वो आप घर आए तो वो एक दो दिन में ख़राब हो गया बजाय इसके कि आपने तो फ्रीजर में रखा था। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, आप वापस जाएं उस स्टोर में और कहें कि मैंने फ्रिज में रखा, मैंने कल खरीदा था या परसों खरीदा था और इतनी जल्दी ये खराब हो गया। तो अगर उनको जेन्युइन लगेगा आपका ये मैटर तो वो आपको रिप्लेस करते हैं, वो आपको वापस करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके घर के सामने कोई आया हो या फिर मार्केट प्लेस पे या सोशल मीडिया पे कोई एड चला हो और फिर आपने वहां पेमेंट कर दिया हो या वो सामान इवन आपके घर आ गया हो तो अब वापस पकड़ेंगे कैसे? आपने पेमेंट किया, आपको पता थोड़ी है कि वो ग्रोसरी उसकी असल में कहाँ है। तो ऐसे में होशियार होने की जरूरत आपको है क्योंकि कई बार खाना खराब होता है, ऊपर की लेयर अच्छी बना दी जाती है, साफ सुथरी धुल कर दे दी जाती है लेकिन अंदर का माल या फिर अंदर का जो मीट है वो खराब होता है, नीचे से वो खराब होता है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से स्कैम के बचने के जो तरीके हैं वो बड़े सिंपल से, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आप बच सकते हैं। वेल, सबसे पहला तरीका है अननोन वेंडर से बल्क खरीदारी बिल्कुल ना करें। किसी भी ऐसे रास्ते चलते वेंडर से या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पेज से बल्क में मीट या ग्रोसरी ना खरीदें जिनका कोई फिजिकल स्टोर ही नहीं है या परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। क्योंकि कल को अगर आप खरीद भी लेते हैं ऑनलाइन वाला, अगर उसके पास स्टोर है तो आप स्टोर जा तो सकते हैं क्योंकि बल्क में खरीदने का मतलब है आप कम से कम 500 रियाल तो दे ही रहे होते हैं पेमेंट के लिए। उसके अलावा फूड स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन हमेशा चेक करें। असली ग्रोसरी सप्लायर्स हमेशा प्रॉपरली लेबल्ड पैकिंग यूज करते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट, वेट और गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल स्टैंप होता है। अगर पैकिंग पर ऐसी डिटेल्स मिसिंग है तो फिर हो सकता है कि वो मीट या वो माल खराब है, उसे हरगिज ना लें। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक से भी अलग रहना है। अगर कोई सेलर आप पर दबाव डाल रहा है, अभी डील क्लोज करो वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में हैं, ये स्कैमर्स की आम निशानी है जो आपको सोचने समझने को टाइम ही नहीं देती है। उसके अलावा ट्रस्टेड लोकल आउटलेट्स का ही यूज करें। हमेशा बल्क मीट और ग्रोसरीज रजिस्टर्ड होलसेल मार्केट, सुपर स्टोर्स या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें जहां रिटर्न और रिफंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि आप बच सके। तो दोस्तों ये था बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रोसरी स्कैम। उम्मीद है कि आपको ये स्कैम समझ जरूर आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से दही से स्कैम अलर्ट।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर। आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स सेगमेंट में हम बात करेंगे फार्मूला वन के उस नौजवान सितारे की जिन्होंने सिर्फ चंद सालों में मोटर स्पोर्ट की दुनिया को हैरान कर दिया है, आंद्रिया किमी एंटोनेली। मॉडर्न ये आज के जमाने के ड्राइवर हैं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इटली के बोलोगना शहर में 25 अगस्त 2006 को पैदा होने वाला किमी एंटोनेली आज की तारीख में फॉर्मूला वन के सबसे एक्साइटिंग ड्राइवर्स में से एक है। मर्सिडीज के इस यंग स्टार ने 2025 में F1 डेब्यू किया और लुई हैमिल्टन के मर्सिडीज छोड़ने के बाद जॉर्ज रसल के साथ टीम का हिस्सा बना। लेकिन किमी की कहानी फॉर्मूला वन से काफी पहले शुरू हो गई थी। शुरुआत गो कार्टिंग से 2014 में एंटोनेली ने कार्टिंग से अपना सफर शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने यूरोप के जूनियर कॉम्पिटिशन में अपनी स्पीड और रेस क्राफ्ट का सबूत दिया। मर्सिडीज ने भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को जल्द ही पहचान लिया और 2018 में उन्हें अपने जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। 2022 में किमी एंटोनेली ने इटालियन F4 और ADAC F4 चैंपियनशिप जीती, जबकि FIA मोटरस्पोर्ट गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद फॉर्मूला वन रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें मोटरस्पोर्ट के सबसे प्रॉमिसिंग नौजवान ड्राइवर्स में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि गाड़ी चलाना इज अ वेरी ईजी जॉब। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने घर से कॉर्निश तक गाड़ी ड्राइव करके चले गए या शमाल रोड पर गाड़ी दौड़ा दी। लोग समझते हैं कि हर ड्राइवर जो है वो फॉर्मूला वन रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला वन रेस जो है इट्स डिफिकल्ट, वो पिनाकल ऑफ ड्राइविंग है और उसमें मैकेनिज्म काफ़ी इन्वॉल्व है। और फॉर्मूला वन के जितने भी क्वालिफिकेशन स्टेजेस हैं, जैसे मैंने अभी बताया एंटोनेली के बारे में, F4 यानी फॉर्मूला वन तो टॉप लेवल पर है, उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस और एंटोनेली ने यह साबित किया था अपने बचपन से ही कि ही हैज सम ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड ड्राइवर। सन 2023 में उन्होंने फॉर्मूला रीजनल मेडलिस्ट चैंपियनशिप में मुंबई फैल्कन्स के साथ हिस्सा लिया और फिर फॉर्मूला 2 तक पहुंच गए। फिर आया 2025,

का बड़ा स्टेज किमी ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री से मर्सिडीज के लिए अपना F1 डेब्यू किया उनकी एंट्री के साथ वो 18 साल की उम्र में फार्मूला 1 ग्रिड पर आए और इटालियन मोटर स्पोर्ट के नए चैप्टर की शुरुआत की लेकिन सन 2026 ने अंतोनेली को सिर्फ एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर से चैंपियनशिप कंटेंडर बना दिया दोस्तों और इस सीजन में किमी ने ऑस्ट्रेलिया में सेकंड प्लेस के बाद चीन में अपनी पहली फार्मूला 1 विक्ट्री हासिल की इसके बाद जापान मायामी कनाडा और मोनाको में भी जीत दर्ज की बेल्जियम में भी वो रेस विनर बने और फिर आया मोंजा इटालियन ग्रैंड प्री में अंतोनेली को इंजन रिलेटेड पेनल्टी की वजह से 19 पोजीशन से रेस स्टार्ट करनी पड़ी लेकिन होम क्राउड के सामने उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए रेस जीत ली और इस फतेह के साथ वो 60 साल बाद इटालियन ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले इटालियन ड्राइवर बन गए व्हाट एन अचीवमेंट सिर्फ एक हफ्ते बाद मद्रिद में इनॉग्रल स्पैनिश ग्रैंड प्री में भी अंतोनेली ने विक्ट्री हासिल की ये 2026 सीजन की उनकी 8वीं ग्रैंड प्री विन थी और इस जीत के बाद वो चैंपियनशिप में जॉर्ज रसल से 81 पॉइंट्स आगे हैं लेटेस्ट ऑफिशियल F1 फिगर्स के मुताबिक 14 ग्रैंड प्री के बाद किमी 292 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप लीडर हैं उनकी 8 जीत और 12 पोडियम फिनिशेस हैं किमी को अक्सर फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा है लेकिन वो खुद कंपैरिजन से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर यकीन रखते हैं और शायद इसी वजह से उनकी कहानी इतनी खास है 18 साल की उम्र में फार्मूला 1 का प्रेशर मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस किमी अंतोनेली ने सबको स्पीड मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया है दोस्तों किमी अंतोनेली का सफर अभी शुरू हुआ है लेकिन 2026 में जिस तरह वो फार्मूला 1 पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं ना उससे एक बात बिल्कुल वजह है कि मोटर स्पोर्ट की दुनिया को शायद अपना अगला बड़ा चैंपियन मिल चुका है तो दोस्तों ये था आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये स्पेशल सेगमेंट ऑन किमी अंतोनेली उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें फी अमानिल्लाह

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरज़ू महवश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मजलिस को बहुत खास मकाम हासिल है। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि मुलाकात, गुफ्तगू, रिश्तों को मजबूत बनाने का खूबसूरत जरिया है। मजलिस में लोग एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पुरसुकून माहौल में बातचीत करते हैं। रिवायती तौर पर मजलिस घर का वो हिस्सा होता था जहाँ मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया जाता था। आज भी कई घरों में मजलिस के लिए अलग जगह होती है। इसका अंदाज जदीद हो सकता है लेकिन इसकी असल रूह अदब, मेहमान नवाजी और अपनायत पर कायम रहती है। मजलिस में दाखिल होते वक्त सबसे पहले सलाम करना अच्छे आदाब में शामिल है। सलाम का जवाब देना और वहाँ मौजूद अफराद से मुस्कुराहट के साथ मिलना तवज्जो और इज्जत का इजहार है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो AI Unlocked और मैं हूँ FM 107 पर आपकी A for अमिता। तो जनाब, चाहे आप कदर के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन रेडियो आपका स्विच ऑन है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से स्ट्रीम कर रहे हो, वेलकम है उस फ्रीक्वेंसी पे जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंपल भाषा में समझाते हैं और उसकी असली ताकत सीधे आपके हाथों में डाल देते हैं, या यूं कहे आपके हाथों तक पहुँचा देते हैं। वेल, भूल जाइए वो साईफाई फिल्मों वाली बातें जहां मशीन्स दुनिया पे कब्जा कर लेती हैं। यहां हम सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते हैं, दैट इज कि AI कैसे आपकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद कर रहा है। एक छोटा सा स्मार्ट शॉर्टकट एक बार में कैसे आपकी लाइफ को आसान करता है। तो आज हम उन तीन डेविल से लड़ने वाले हैं जो आपका पूरा दिन निकल जाते हैं। पहला वो ओवरवेलमिंग स्केड्यूल जो कभी खत्म ही नहीं होता। दूसरा वो ओवरफ्लोइंग ईमेल इनबॉक्स जिसमें मैसेजेस का ना अंबार लगा होता है। और तीसरा वो रहस्य कि हर महीने तनख्वाह आखिर जाती कहाँ है। तो जनाब, आज का एपिसोड पूरी तरह से डेडिकेटेड है AI इन डेली प्रोडक्टिविटी, आपका स्केड्यूल, आपकी ईमेल्स और आपका फाइनेंस संभालना। तो अपनी चाय या कॉफी उठाइए, एक लंबी सांस लीजिए और चलिए आज के हमारे कमाल के सेगमेंट्स की तरफ। सो AI Unlocked पर अगली बात जो हम करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जनाब, एकदम बिल्कुल सच अब हम बात करेंगे। आखिरी बार कब आपने अपना पूरा इनबॉक्स खाली देखा है? या कब आखिरी बार ऐसा हुआ कि पूरा हफ्ता बिना दो मीटिंग्स के एक साथ बुक किए गुजरा हो? या महीने के आखिर में बैंकिंग ऐप खोला और दिल में थोड़ी सी भी ना घबराहट नहीं हुई हो? ऐसा कब हुआ है? बिल सच्चाई ये है कि दशकों से हमारी प्रोडक्टिविटी हाथ के काम पर चलती आई है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले हम कैसे काम करते थे। स्केड्यूल के मामले में हम फिजिकल प्लानर्स लेकर घूमते थे या फिर ईमेल पे एंडलेस पिंग पोंग खेलते थे। क्या आप ट्यूसडे 3 बजे फ्री है, ये सवाल हम पूछते थे, या फिर थर्सडे 4 बजे कैसा रहेगा। और इस पिंग पोंग में कभी कभी पूरा हफ्ता निकल जाता था सिर्फ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए। ईमेल्स के मामले में हम रोज एवरेज 2.5 घंटे सिर्फ पढ़ने, सॉर्ट करने, लिखने और स्पैम फिल्टर करने में गुजार देते हैं, यानी हफ्ते में तकरीबन 12 घंटे, मतलब एक पूरा दिन सिर्फ इनबॉक्स के सामने बीत जाता है। और फाइनेंस के मामले में हम मेहनत से CSV फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, रिसीट्स को रंग बिरंगे एक्सेल शीट्स में टाइप करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वीकेंड के डिनर पे कितना खर्चा हो सकता है या कितना खर्चा करना सेफ होगा। अक्सर तो हम महीने के 20 तारीख को ही घबराने लगते हैं कि सैलरी अगली तनख्वाह तक चलेगी या नहीं। लेकिन अब आ चुका है प्रैक्टिकल एजेंटिक AI का दौर। यस, आज AI

सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा जो आपके सवाल का इंतजार करे, ये अब एक ऐसा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिजिटल को-पायलट बन चुका है जो चुपके से बैकग्राउंड में आपके लिए काम करता रहता है, बिल्कुल उस खामोश साथी की तरह जो आपकी जरूरत से पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए तीन हिस्सों में इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को समझते हैं। सबसे पहला है स्मार्ट कैलेंडर ऑर्केस्ट्रेशन। पुराने जमाने के स्टैटिक कैलेंडर्स सिर्फ आपको उन मीटिंग्स की याद दिलाते थे जिनसे आप डरते थे। यस, एक रिमाइंडर बजाता था और बस, उससे ज्यादा वो कैलेंडर कुछ नहीं करता था। लेकिन आज के AI नेटिव स्केड्यूलिंग इंजन सिर्फ आपके घंटों का नहीं, आपकी एनर्जी का भी इंतजाम करते हैं। मॉडर्न स्केड्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक खाली स्लॉट नहीं ढूंढते, ये आपकी पुरानी आदतों का एनालिसिस करते हैं। अगर AI देखता है कि आप सुबह 9 से 11 बजे के बीच सबसे क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये खुद ब खुद उस वक्त को डीप वर्क के लिए महफूज कर देता है और टीम के चेक-इन्स को दोपहर में शिफ्ट कर देता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, अगर अचानक कोई क्लाइंट इमरजेंसी आ जाए तो ये एजेंट खुद ही कम जरूरी कामों को रीशफल कर देता है, आपके जिम सेशन एक घंटे पहले कर देता है और जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उन्हें खुद ही बता देता है बिना आपके एक भी माफीनामा ईमेल्स भेजते हुए। सोचिए जरा, एक वक्त था जब ऐसी छोटी छोटी जो तब्दीलियां थी उसके लिए हमें खुद 5-5 लोगों को मैसेज करना पड़ता था, अब ये सब कुछ एक नजर में एक क्लिक में हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ एडवांस सिस्टम तो आपकी नींद के पैटर्न और ट्रैवल टाइम को भी ख्याल में रखते हैं। अगर आपकी फ्लाइट रात देर से पहुंच रही है तो AI खुद ही अगली सुबह की मीटिंग्स को थोड़ा लेट कर देता है, यस, ताकि आप आराम से उठ सकें। अब दूसरी बात कि जो इनबॉक्स में वो बहुत जहरीला सांप रहता है ना, कभी कभी हम उसे अजगर भी कहते हैं, उसे काबू में कैसे करें, चलिए आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं उस डर वाले इनबॉक्स की। वैसे अरब दुनिया में जहाँ प्रोफेशनल ईमेल्स और तेज रफ्तार व्हाट्सएप चैट्स के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है, एक्शन आइटम्स को ट्रैक करना काफी मुश्किल हुआ करता था। कभी एक जरूरी जवाब व्हाट्सएप में खोया रहता था, हाँ, और कभी ईमेल्स पर। वेल, आज के इंटीग्रेटेड जेनरेटिव मॉडल्स एक हाइपर एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ये लंबे उलझे हुए ईमेल थ्रेड्स को, जिनमें इंग्लिश और अरबिक मिक्स होती है, पढ़ते हैं, उनके खुलासा 3 बुलेट पॉइंट्स में बना लेते हैं और आपको रेडीमेड जवाब पेश करते हैं, बिल्कुल आपके अंदाज में, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट पार्टनर के लिए फॉर्मल हो या किसी करीबी साथी के लिए दोस्ताना मैसेज। अब आपको 200 लफ्जों का ईमेल खुद नहीं लिखना पड़ता, बस एक तैयार ख्याल को अप्रूव या थोड़ा सा तब्दील करना होता है, एंड देन वर्क इज डन। वेल, ये फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके लिए पहले से खाना बना के रख दे, है कि नहीं, और आप सिर्फ नमक मिर्च चेक करके सर्व कर ले। और इस सब के पीछे जो असली जादू है, द रियल मैजिक, वो है प्रायोरिटाइजेशन। यस, आज के AI मॉडल्स सिर्फ ईमेल पढ़ते नहीं है, ये समझते है कि कौन सा ईमेल जेन्युइनली अर्जेंट है और कौन सा सिर्फ FYI के नाम पर भेजा गया है। तो आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर जाता है जो वाकई जरूरी होती है। तीसरा है प्रोएक्टिव ऑटोनॉमस फाइनेंस। अब बात करते हैं सबकी फेवरेट और कभी कभी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज की, पैसा। पुराने फाइनेंस एप्स सिर्फ एक पैसिव आईना हुआ करते थे, ये बताते थे कि मुबारक हो, आपने अपनी तनख्वाह का 40% बाहर खाने में उड़ा दिया है। लेकिन ये बात होने के बाद बताना उफ, किसी काम की नहीं होती है कि नहीं, नुकसान तो हो ही चुका होता है। AI फाइनेंस इंजिन्स अब प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं JCC के मॉडर्न फाइनटेक हब्स में, और दुनिया भर में AI आपके रेकरिंग बिल्स, आने वाले पैसे और बदलते खर्चों को एनालिसिस करता है। ये आपको बताता है कि देखो अमिता, आपके वीकेंड पैटर्न्स और आने वाले बिल साइकिल के हिसाब से आज आप 200 रियाल सेफ्टी इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना अगले हफ्ते के यूटिलिटी बिल को मिस किए। अब ये खुद ब खुद माइक्रो सेविंग्स करता है, छुपे हुए सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक्स को फ्लैग करता है और एक तस्वीर खींचते ही मल्टी लिंगुअल रिसीट्स को कंप्यूटर विजन से कैटेगराइज कर देता है। यानी अगर आपने अरबिक में लिखी एक रिसीट का फोटो खींचा तो AI उसे खुद ब खुद समझ कर सही कैटेगरी में डाल देगा, चाहे वो ग्रोसरीज हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर एंटरटेनमेंट।

और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ आपके पास्ट खर्चे नहीं दिखाता बल्कि आपके फ्यूचर के फैसलों में मदद करता है यानी अब आप सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन जाते हैं अपने पेंशन के

पहले पढ़ना है, कौन सी मीटिंग रीस्केड्यूल करनी है, कितना पैसा आज खर्च करना सेफ होगा, ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर हमें मानसिक तौर पर थका देते हैं. ठीक है, फिर चाहे हम खुद इस थकान को महसूस ना करें, लेकिन बैकएंड में ये काम कर रहा होता है. तो जब AI जिंदगी की एडमिनिस्ट्रेटिव झंझट संभाल लेता है, तब आप अपनी मेंटल एनर्जी को उस चीज के लिए बचा लेते हैं जो इंसान सबसे बेहतर करते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी, सोचना, क्रिएटिविटी और लोगों से सच्ची तरह जुड़ना. और यही है असली मायने में AI का तोहफा. ये हमें मशीन नहीं बनाता, बल्कि हमें ज्यादा इंसान बनाने में मदद करता है. क्योंकि जब रूटीन का बोझ कम होता है ना जनाब, तब हम अपना सबसे बेहतर हिस्सा, अपने इमेजिनेशन, अपना दिल और अपने रिश्ते उन चीजों को दे पाते हैं जिनके वो हकदार है. अब जनाब बात करेंगे AI अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले अपने ही रीजन की हम बात करते हैं, दैट इज UAE एंड सऊदी अरेबिया सोवरेन. हाई इंपैक्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना जोर शोर जारी रखे हुए हैं. रीजनल टेक समिट्स के हाल ही के डेटा के मुताबिक छोटे और जो कहते हैं ना मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस या मीडियम इंडस्ट्रीज में लोकलाइज्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपनाने में पिछले साल के मुताबिक 45% का जबरदस्त इजाफा हुआ है. अपनी कस्टमर कम्युनिकेशन और डेली वर्कफ्लोस को ऑटोमेट करने के लिए रियाद के रिटेल से लेकर दुबई के लॉजिस्टिक्स हब तक बिजनेसेस पुराने भारी भरकम CRM सिस्टम्स को हटाकर नेटिव अरेबिक बोलियों वाले AI वर्कफ्लो एजेंट्स अपना रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेज अडॉप्शन के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. उधर सिलिकॉन वैली और यूरोप में साल 2026 के आखिर में ध्यान शिफ्ट हो चुका है एजेंटिक मल्टी मोडालिटी की तरफ. बड़े बड़े रिसर्चेस जो AI रिसर्चेस हैं, वो ऑन डिवाइस पर्सनल एजेंट्स लॉन्च कर रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन के अंदर ही रहेंगे, सारी एप्स में सिक्योरली काम कर सकते हैं, बिना पर्सनल डेटा को सेंट्रल क्लाउड सर्वर्स पर भेजे. इसका मतलब है कि आपका कैलेंडर, आपकी बैंकिंग और आपकी कम्युनिकेशन सब कुछ आपके फोन के चिप पर ही बातचीत कर सकते हैं, जिससे वो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की चिंता खत्म हो जाती है जो पहले बहुत से लोगों को परेशान करती थी और उन्हें पीछे छोड़ देती थी. और आखिर में टोक्यो में रिसर्चर्स ने एक ऑटोनॉमस वर्कप्लेस स्ट्रेस रिडक्शन सिस्टम पेश किया है. ईमेल की रफ्तार और स्केड्यूल की डेंसिटी को मॉनिटर करके ये सिस्टम मैनेजर्स को अलर्ट करता है जब पूरी टीम का स्केड्यूल बर्नआउट थ्रेशहोल्ड पार कर जाता है और खुद ही मीटिंग फ्री फोकस डेज सजेस्ट करता है. यस, और ये एक ऐसा AI इम्प्लीमेंटेशन है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टूल ऑफ द वीक की. तो जनाब अब वक्त आ गया है हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, जिसमें हम अपनी लाइफ को और आसान करते हैं या हम आपको एक बड़ा ही शानदार सा प्रैक्टिकल टूल देते हैं जो आप आज से ही इस्तेमाल करके फौरन नतीजे पा सकते हैं. इस हफ्ते की स्पॉटलाइट है reclaim.ai पर, एक इंटेलिजेंट कैलेंडर असिस्टेंट जो सीधे गूगल कैलेंडर या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से जुड़ जाता है. ये काम कैसे करता है, आइए जानते हैं. पुराने ट्रेडिशनल बुकिंग लिंक्स के जैसे आपके कैलेंडर्स को सख्त ब्लॉक्स में बंद नहीं करता, रिक्लेम अडैप्टिव हैबिट्स बनाता है. आप इसे बताइए, मुझे रोज 30 मिनट टेक न्यूज पढ़नी है और हर हफ्ते में 3 घंटे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए चाहिए. रिक्लेम इन टास्क को खुद ब खुद खाली जगहों में फिट कर देता है. अगर कोई जरूरी मीटिंग अचानक आपके रीडिंग टाइम के ऊपर बुक हो जाए तो रिक्लेम उसे डिलीट नहीं करता, बल्कि अगली बेहतरीन खाली जगह पे फौरन शिफ्ट कर देता है. और अब बारी है प्रो प्रॉम्प्टिंग टिप की. तो जब भी आप चैट GPT, क्लॉड या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशंस लिखने के लिए करते हैं, तो सिर्फ ये मत कहिए एक ईमेल लिख दो जिसमें मीटिंग मना कर दी जाए, है कि नहीं. जेनेरिक प्रॉम्प्ट सिर्फ जेनेरिक रोबोटिक जवाब देता है. इसके बदले रोल, कॉन्स्टेंट, आउटकम यानी RCO फ्रेमवर्क इस्तेमाल कीजिए. रोल दीजिए एक डिप्लोमेटिक बड़ी ही ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम करो. कॉन्स्टेंट ये होगा कि 3 लाइन का ईमेल लिखो पोलाइट और गर्मजोशी भरे अंदाज में, जिसमें इस थर्सडे की पार्टनरशिप मीटिंग के लिए मना किया जाए. ये जरूर मेंशन करो कि मेरा इस क्वार्टर का कैलेंडर पूरा भरा हुआ है. और आउटकम क्या होगा, एक अल्टरनेटिव भी दो. उन्हें कहो कि वो एक पेज का ब्रीफ ईमेल पर भेज दें. और जनाब
आज ही ये फ्रेमवर्क ट्राई कीजिए और देखिए कैसे आपका ईमेल रिप्लाई टाइम 10 मिनट से घटकर सिर्फ

0: 30 सेकंड रह जाता है। तो जनाब, आज का हमारा एपिसोड AI Unlocked का अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। तो याद रखिए कि AI आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट लेने नहीं आया है, ये तो बस एक अल्टीमेट नेविगेशन सिस्टम है जो सारा ट्रैफिक संभाल लेता है ताकि आप सफर का मजा ले सके और वहां पहुंच सके जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो इस हफ्ते आई एम वेरी सर्टेन कि हम अपने डेली रूटीन्स को, अपने कैलेंडर डेज को बहुत अच्छे से बुक कर पाएंगे बिकॉज ऑफ आर स्पेशल टूल, है कि नहीं? और इसी के साथ अब आप मुझे देंगे इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का। AI Unlocked में कुछ और नई बातों के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस, सो डोंट मिस इट। तब तक के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ जाइए FM 107 के, और अपनी अमिता को भी वहां से ढूंढ सकते हैं, और कोई सजेशन है 666-22-107 पर आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: RJ A for Amita ke saath sirf FM 107 par dil se desi access
2: granted. Aap sun rahe hain FM 107
3: dil se desi.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थियोरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 से, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट। एंड मैं भी जूनियर हूं, सो प्लीज वेलकम मी एज़ वेल। दरअसल क्या है कि स्कूल में कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, लेकिन बड़े होते होते जब साइंस को समझने लगा और बहुत सारी कहानियां भी आपको सुनाई उससे जुड़ी हुई, तो लगा यार काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जा सकता है। अभी एग्जाम देने का मेरे पास तो मौका है नहीं, एंड गुड नहीं है, मगर ये एग्जाम ही है कि मुझे ये शो मिला है और आपको मैं समझाऊं और आपको मैं पढ़ाऊं और साथ में मैं भी सीखूं, क्योंकि यहाँ पर टीचर पूरी तरह से ज्ञान वाला नहीं है, आपके साथ ही ज्ञान ले रहा है। और साइंस के अलग अलग चैप्टर को साथ में सीखने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है, ये बिल्कुल ग्रुप स्टडीज की तरह है। और मुझे rather than considering me as someone who is teaching you, consider me as someone who is with you, आपका दोस्त, आपका भाई जो आपको सिखा रहा है या पढ़ा रहा है या आपके साथ साथ पढ़ रहा है। कुछ चीजें आप बता दीजिएगा, दो तीन चीजें मैं बता दूंगा, मिल के भाई सब साइंस समझ लेंगे और आसान कर देंगे, क्योंकि साइंस हर जगह है हमारे आसपास। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप ढूंढने निकले और समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड साइंस थ्योरीज को भी आप आराम से समझ लेंगे, बस आपको एग्जाम्पल्स की जरूरत है। जैसे आज हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पे, वो बड़ा कमाल का है, वो लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है। आई गिव एन एग्जांपल, आपको कोई बोले कि भाई बलून को इन्फ्लेट करना है, एक बलून को फुलाना है, लेकिन आपने इसमें खुद हवा नहीं भरनी है और फुलाना है, तो कैसे करेंगे आप? अब ये एक्सपेरिमेंट आप करने निकलेंगे और आप किसी को चैलेंज करेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ सही है, हमें मत सिखाओ, हमें पता है तुम कैसे करोगे, तुम मशीन यूज करोगे। पर नहीं नहीं नहीं, आपने किसी किस्म के पंप का यूज नहीं करना है और किसी किस्म के इन्फ्लेटिंग डिवाइस का यूज नहीं करना है, मगर आपने इस बलून को फुलाना है, तो आप कैसे फुलाएंगे? यही तो साइंस है। जैसे मैंने कहा, साइंस इज हैपनिंग अराउंड अस ऑल द टाइम, और आसपास के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है। इवन इन आवर किचन्स, जहां पे बहुत सारी चीजें मिला के एक दूसरे से आप एक केमिकल रिएक्शन को जन्म देते हैं, समथिंग न्यू हैपेंस। और आज के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे किस तरीके से बबल्स, फिज, एक बलून को इन्फ्लेट करने में बहुत बहुत मदद कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। तो आज का मुद्दा यही है और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, ओनली ऑन जूनियर साइंटिस्ट एंड ओनली ऑन FM 107, सो स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर, एफएम 107 से, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, इस ऑडियो फॉर्मेट में इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो फॉर्मेट में जल्दी ही सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। एंड शो का मकसद जान लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। आपको ज्ञान देने का मकसद पहली मरतबा तो है नहीं, ये हटा दीजिए अपने दिमाग से। द होल पॉइंट इज टू लर्न साइंस। एंड आपके घर में अगर कोई ये क्यूरियोसिटी रखता है साइंस को लेकर, सो यू नेवर नो कि उसका फ्यूचर आप जरा जरा सी बातों से काफी चमका दें और फिर वो आपके नाम को भी रोशन कर दें। क्या लाइन है ये दिमाग में। सो आज बात करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज तीसरा एपिसोड है एंड आज का एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। तो सवाल क्या पूछा मैंने पहले, मैंने सवाल ये पूछा कि क्या आप किसी बलून को विदाउट ब्लोइंग एयर इन टू इट, क्या आप उसको फुला सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, जो पंपिंग डिवाइसेस होती हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? पहला जवाब एक नॉर्मली जो आएगा वो है कि ना जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर ये पॉसिबल है जस्ट बाय मिक्सिंग फ्यू सब्सटेंसेस टुगेदर, बिकॉज देन दे विल गिव यू अ केमिकल रिएक्शन जो इस बलून को इन्फ्लेट कर सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जब आप घर पे अपने बच्चों को करके दिखाएंगे या बच्चे खुद करेंगे, दे विल बी ब्लोन अवे। यार बढ़िया चीज है ये तो। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट जरा आप समझने की कोशिश करें। तो आपको चाहिए सबसे पहले विनेगर, एसिडिक लिक्विड है, तो इसलिए जरा प्लीज कीप अ सेफ एनवायरनमेंट और माँ बाप से गुजारिश है उनके साथ में रहें। इसके साथ साथ बेकिंग सोडा चाहिए, बेसिक पाउडर, और इसके अलावा बलून चाहिए। आप जब एक्सपेरिमेंट में हैं, गुब्बारा तो चाहिए। और इसके साथ आपको चाहिए फिर एक एम्प्टी बॉटल चाहिए, सिंपल, जो विनेगर को होल्ड करने में काम आएगी। ये सारे मटेरियल जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, सारे घरों में मौजूद होंगे। पर इस बात का ध्यान रखें कि इनको मिक्स करते हुए जरा आपको एहतियात बरतना है, और जैसे मैंने कहा कि सेफ एनवायरनमेंट। जब ये मिक्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स, ये मिक्स होने के बाद एक किस्म की गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस जो प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली बलून को गैस देती है जिससे वो फूल जाता है। तो क्या हो गया अगर विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में मिल गए, तो इन दोनों की दोस्ती करा के आप एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। तो जो एसिड है विनेगर में जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के बेस के साथ, कबूम आपको मिलता है एक रिएक्शन, और ये रिएक्शन प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे ही गैस बनती है उसको थोड़ा सा भाई जगह भी तो चाहिए बाहर निकलने के लिए, एक जगह थोड़ी फंसी रहेगी बेचारी। तो जब वो जगह बनाती है तो वो मूव करेगी, और मूव करेगी वो बॉटल पे ऊपर लगे बलून की तरफ, और जब उसकी तरफ जाएगी तो वो गैस उसके अंदर भरेगी एंड इट विल कॉज इन्फ्लेशन, और इस वजह से वो इन्फ्लेट हो पाएगा। दैट इज हाउ इट इज। मगर इसमें ऑब्जर्वेशन की बड़ी जरूरत है, थिंकिंग की बड़ी जरूरत है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आप डिटेल जरूर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स जो आप घर में कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद है। अब आपको ऑब्जर्व करना है, देखिएगा फिजिंग और बबलिंग, और साथ में डिस्कस कीजिएगा बच्चों के साथ कि बलून किस तरीके से बड़ा हो रहा है। तो आपको एक एक पॉइंट करके आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से गैस को मदद करता है टू टेक अप द स्पेस, वो जगह ले लेती है। इवन दो हम देख नहीं सकते हैं बट इट इज मूविंग एट फर्स्ट साइट, और क्लियरली उसका इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, बॉटल चाहिए, विनेगर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, और आप बॉटल के बिल्कुल टॉप पे एक बलून लगा दीजिएगा। और आपने बच्चों से बलून उस पर बांधने से पहले सवाल पूछ लेना है कि भाई बताओ, अगर मैं इस पर फूंक ना मारूं, कोई पंपिंग डिवाइस ना करूं यूज, तो क्या ये बलून इन्फ्लेट होगा, फूलेगा या नहीं फूलेगा? ये आपने सवाल पहले पूछना है। उसके बाद पूछना है कि अगर मैं बताऊं कि ऐसा हो सकता है कि बिना फुलाए, बिना पंपिंग डिवाइस की ये इन्फ्लेट होगा, तो कैसे हो? And let them think while you prepare for the whole experiment. तो ये जो बॉन्ड आप दो केमिकल्स के बीच में करा रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड दो केमिकल्स का नहीं, आपके और बच्चों के बीच का भी एक बॉन्ड बनेगा। बिकॉज आप इंटरेस्ट लेंगे इन एक्टिविटीज में, तो बच्चों के अंदर साइंस को लेके एक क्यूरियोसिटी जागेगी, और वो भी आने वाले वक्त के जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अब एनालॉजी पे बात कर लेते हैं। अब आप जो गैस जो है वो जो पैदा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और सीधा बलून में जा रही है और उसे इन्फ्लेट कर रही है, सो यू हैव टू थिंक इस गैस को एक टाइनी इनविजिबल बलून समझ लीजिए, जो कि वन बाय वन भरता चला जा रहा है। जैसे जैसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे वो पुश होगी, वैसे वैसे वो बलून जो गुब्बारा आपने बांधा है उसकी वॉल की तरफ जाएगी। स्लोली स्लोली बलून बड़ा होता चला जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये साइंस का एक्सपेरिमेंट आपके नजरों के सामने, यू कैन सी एंड ऑल्सो फील इट। तो ये आपको बहुत जरूरी है बच्चों को करके दिखाना, बिकॉज अंटिल अनलेस यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरूर पूछेगा कि बिना फूंक मारे क्या बलून को फुला सकते हैं बेटा? अब जरा सी डेप्थ में जाते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या इज अ गैस?
केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस गैस को जन्म दे रहा है बिटवीन सोडा एंड विनेगर. जब ये रिलीज होगी तो प्रेशर प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो रह नहीं सकती ना एक जगह पे, तो उसको जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए और वो आउटवर्ड पोजीशन की तरफ जाएगी. अब बॉटल में आउटवर्ड पोजीशन कहां पर है? ऊपर की तरफ. अगेन पहले एपिसोड में क्या पढ़ा था? बॉयंट फोर्स, उस तरह समझ लीजिए. लेकिन ये बॉयंट फोर्स नहीं है, इसमें गैस का प्रेशर है जो ऊपर की तरफ उसे धकेलेगा और वो जाएगी आउटवर्ड टूवर्ड्स द बलून और इसीलिए बलून इन्फ्लेट होगा विदाउट एनी एयर बींग ब्लोन इनटू इट. और सिंपल ये आंसर जब आप देंगे तो उसकी कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी. स्टेप बाय स्टेप विनेगर आप डालिएगा एक एम्प्टी बॉटल में, उसके बाद केयरफुली, बहुत ही केयरफुली उसमें बेकिंग सोडा डालिएगा या फिर आप बलून में बेकिंग सोडा डाल सकते हैं यूजिंग अ फनल. और उसके बाद बलून को स्ट्रेच कर दीजिएगा और उसके माउथ को बॉटल पे विदाउट मिक्सिंग लगा दीजिएगा. सबसे बेस्ट ये कि विनेगर को डालने के बाद उसमें बेकिंग सोडा मत डालिएगा, रादर डू दिस, आपने सीधा जो बलून है उसमें फनल यूज करके उसके अंदर लगा देना है. उसके बाद लिफ्ट करना है बलून को, सो बेकिंग सोडा जो है वो गिरेगा सीधा विनेगर के अंदर और फिर एक फिज पैदा होगा. ये जो फिजिंग रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है और उसके बाद ये जब फिज बढ़ता चला जाएगा तो वैसे ही बलून बड़ा होता चला जाएगा. और ये ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन को दिखाता है बल्कि पावर ऑफ गैस एक्सपेंशन को भी बच्चों को समझाने में बहुत बहुत कारगर साबित होगा. सो बहुत दो ही सिंपल से सब्सटेंसेस आपस में मिलके किस तरीके का पावरफुल रिएक्शन देते हैं ये आपको सिखा सकता है साइंस. एंड जूनियर साइंटिस्ट का ये एपिसोड इसी को लेकर है, मगर जाएगा नहीं, मैं आपके साथ बनाऊँ एंड अभी बहुत सारी बातें करनी है इसी बात को लेकर. तो अगर इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं लेट अस नो एंड इफ यू आर शूटिंग अ वीडियो ऑल्सो डू टैग अस FM 107 Qatar एंड स्टे ट्यून्ड.

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हवाला कबीर एफएम 107 पे एंड ये है जूनियर साइंटिस्ट और मैं हूं जूनियर आरजे और मैं आपको आज बता रहा हूं कि किस तरीके से बलून को बिना उसे फूंक मारे, बिना किसी इन्फ्लेटिंग डिवाइस को यूज किए आप उसे फुला सकते हैं। तो विनेगर और सोडा आपस में मिलते हैं, इनकी दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म देती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिंग आपको बॉटल में नजर आती है एंड धीरे धीरे धीरे धीरे ये सारा का सारा मामला बलून को कर देता है इन्फ्लेट। ये है आज का एक्सपेरिमेंट, बट इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट एट होम प्लीज डू इट सेफली एंड ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो घर पे बहुत ही आराम से किया जा सकता है। सो पावर ऑफ गैस एंड ऑल्सो ये

0: जो जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताता है केमिकल रिएक्शंस दो चीजों से मिलके कितना ज्यादा खतरनाक और कितना अच्छा भी हो सकता है. तो ये अच्छा वाला है. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि इतना अमाउंट ना डालें कि बहुत ज्यादा हो जाए और इतना भी कम ना डालें कि कुछ ना हो. तो विनेगर और बेकिंग सोडा आपके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. इसके अलावा इफ यू वांट टू टेल अस समथिंग और आपके पास भी कुछ है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा. व्हाट्सएप 666-22107 एंड 666-22107. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर. एंड नॉट जस्ट दैट, इन एक्सपेरिमेंट से आप बच्चों को सिखाइए बताइए कि साइंस किस तरीके से हर जगह मौजूद है और उनके मन में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आपको सवाल पूछते रहना है उनसे. जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं असल जिंदगी, जैसे हमने पहले एपिसोड में भी बात करी, आप कुछ भी देखते हैं कि डेड सी क्यों है, ऐसे वाले सवाल ये जरूर पूछा करें कि भाई डेड सी को डेड सी कहते कैसे हैं. और जैसे आज का सवाल कि गुब्बारे में बिना भूख मारे भाई कैसे भूल जाएगा, कर सकते हो ये जो सारे सवाल हैं ये आपको रियल लाइफ से मिलते हैं और ये रियल लाइफ के सवाल आपके बहुत काम आएंगे. सो ट्राई एंड पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड. आप क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएंगे तो आप जिन जूनियर्स के साथ ये साइंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं दिखाने वाले. तो क्यूरियोसिटी के इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड आपसे मैं ज्यादा चाहूंगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलेंगे और साइंस को इसी तरीके से और जानेंगे, परखेंगे, एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे. बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
4: कुछ मिलेगा यहाँ।
3: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट,
4: MOI वीकली अपडेट,
3: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर,
4: विद RJ सर्वर।
2: वज़ीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने रियाद में अपने भाई वज़ीर दाखला मुमलकत सऊदी अरब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से मुलाकात की। ये मुलाकात कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत कायम सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के तनाजुर में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों भाई मुल्कों के दरमियान एजेंडा में शामिल उमूर और कतर और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के अख्तिताम पर वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और सऊदी वजीर दाखला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के मिनट्स पर भी दस्तखत किए। सामईन, गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करती है और आपको ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुस्तहक भी बना सकती है। कतर ट्रैफिक लॉ आर्टिकल नंबर 81/1 के मुताबिक गलत जगहों पर गाड़ी खड़ी करना जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकता है। याद रखिए, ट्रैफिक कवायद और रोड एटिकेट की पाबंदी सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए ही नहीं बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की सलामती के लिए भी जरूरी है। अपनी गाड़ी हमेशा मुकर्ररा पार्किंग मकामात पर ही पार्क करें। रास्ते, दाखिली और खुरूजी रास्तों और ट्रैफिक के बहाव को मुतासर करने वाली जगहों पर पार्किंग से गुरेज करें। वज़ारत दाखला का कहना है कि आपकी जिम्मेदारी और कवानीन की पाबंदी सड़कों को महफूज, मुनज्जम और हर शख्स के लिए आसान बनाती है। ट्रैफिक कवायद की पाबंदी कीजिए और अपनी और दूसरों की सलामती को यकीनी बनाइए। दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखला अलेक्जेंडर डॉबरिंड से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खास तौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा भामी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और उनके जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कोऑपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। سامعین اگر کوئی ملازم بغیر اطلاع دیے کام پر آنا چھوڑ دے یا اس کے ویزا کو اس مقصد کے علاوہ استعمال کیا جا رہا ہو جس کے لیے ویزا جاری کیا گیا تھا تو اب میتراش ایپ کے ذریعے چند آسان اسٹیپس لے کر آپ آسانی سے الیکٹرانک رپورٹ جمع کر سکتے ہیں. میتراش ایپ کھولیں, ہوم پیج سے سیکیورٹی پر کلک کریں, اس کے بعد سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ سروس کا انتخاب کریں اور رپورٹ کی قسم منتخب کریں. اگر ملازم نے نوکری چھوڑ دی ہے اور کام پر حاضر نہیں ہو رہا تو لیونگ دا جاب آپشن چنیں اور اس کا کیو آئی ڈی نمبر درج کریں. اگر ویزا اپنی جاری شدہ مقصد کے برعکس استعمال کیا جا رہا ہے تو ادر آپشن چنیں, ویزا نمبر درج کریں اور اگر ورک ویزا ہو تو متعلقہ کمپنی کا انتخاب کریں. تمام درکار معلومات مکمل کریں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں. فارم مکمل کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں. درخواست جمع ہونے کے بعد آپ کو تصدیقی پیغام موصول ہوگا جو بتائے گا کہ آپ کی رپورٹ کامیابی کے ساتھ سبمٹ ہو چکی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ

0: के बाद वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्फानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप 2030 के सिक्योरिटी निजाम के हवाले से तावन पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सड़क सिर्फ मुकर्रा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से क्रॉस की जाए और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी की जाए। याद रखिए, सड़क पर हिफाजत सिर्फ ड्राइवर्स की ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, सिग्नल की हरी बत्ती का इंतजार करें और गैर महफूज जगहों से सड़क क्रॉस करने से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि पैदल चलने वालों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपका ये एहतियात भरा कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकता है। कतर पोलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के जेरे एहतमाम 14 से 17 सितंबर 2026 तक असद क्लब के 1969 पैडल कोर्ट्स में मुनक्किद 2026 पोलिस पैडल चैंपियनशिप का अख्तिताम हो गया है। चैंपियनशिप में 90 से ज्यादा टीम्स ने शिरकत की जिनमें वजारत दाखिला, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया और कतर आर्म्ड फोर्सेज के अफराद शामिल थे। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल्फानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुतअद्दिद ऑफिसर्स भी मौजूद थे। चैंपियनशिप का मकसद फौजी और सिक्योरिटी इदारों के अफराद के दरमियान राबते और बाहमी तआवुन को मजबूत बनाना, साथ ही सेहतमंद मुकाबले और खेल की रूह को फरोग देना था। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को उनकी कामयाबियों पर इनामात और शील्ड्स देकर इज्जत से नवाजा गया। सामईन, मैत्राज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मैत्राज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें, फिर वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरख्वास्त गुजारने वाले शख्स की कौमियत यानी नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: दोस्तों अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, शायद हम बरसों से एक ही इमारत में रह रहे हों, एक ही लिफ्ट इस्तेमाल करते हों, रोज एक दूसरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हों, मगर एक दूसरे का हाल तक मालूम ना हो। हम दूर बैठे लोगों से रابطे में हैं, लेकिन कभी कभी चंद कदम के फासले पर रहने वाले पड़ोसी से बेखबर हैं। सुन्नत नबवी हमें बताती है कि अच्छा मुसलमान उसकी भलाई उसके दरवाजे से निकल कर पड़ोसी तक भी पहुँचती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपना पड़ोसी का इकराम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के एहतराम और हुस्ने सुलूक को ईमान के साथ जोड़ दिया है। सामईन किराम, ईमान मस्जिद में भी उसका जलवा नजर आता है, इसी तरह पड़ोसी के दरवाजे पर भी। इकराम एक वसी रवैये का नाम है। पड़ोसी से अच्छे अंदाज में मिलना, सलाम करना, उसे तकलीफ न देना, ज़रूरत में मदद करना, बीमार हो तो खैरियत पूछना, खुशी हो तो खुशी में शरीक होना, मुश्किल हो तो सहारा देना, अपने शोर अपने रवैये और अपने सहूलत के खातिर उसे परेशान न करना और कभी अपने घर की किसी नेमत में से थोड़ा सा हिस्सा उस तक पहुँचा देना, यानी पड़ोसी को यह एहसास हो कि मेरे करीब रहने वाला शख्स मेरे लिए परेशानी नहीं खैर का जरिया है, और यही है हुस्ने हमसायगी। इसी मफहूम को दूसरी हदीस बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसा अल मुस्लिमात ला तहक़िरन जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसन शात, यानी ऐ मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसिन अपनी पड़ोसिन के लिए किसी तोहफे को मामूली न समझे, चाहे वो बकरी के पाए का एक मामूली हिस्सा ही क्यों ना हो। तो सामईन किराम, सुन्नत कहती है जो मुयस्सर है मोहब्बत के साथ दे दी जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ छोटी होती है मगर उसके अंदर छुपी मोहब्बत बहुत अहम होती है। फिरसन शाद से क्या मुराद है, ठीक है, उस नीयत को देखिए जो उसे आपके दरवाजे तक लाई है। تو سامعین کرام بعض تعلقات صرف ضرورت کے وقت زندہ ہوتے ہیں. کوئی چیز چاہیے پڑوسی یاد آ گیا, گاڑی کی مدد چاہیے پڑوسی یاد آ گیا, گھر کی چابی کسی کے پاس رکھنی ہے پڑوسی یاد آ گیا. لیکن سنت جس تعلق کی تعمیر کرتی ہے وہ صرف ضرورت کا تعلق نہیں, محبت اور خیرخواہی کا تعلق ہے. کبھی خیریت معلوم کرنا, کبھی کھانا بھیجنا, کبھی اس کے بچے کی کامیابی پر مبارکباد دینا, کبھی بیماری میں پوچھ لینا, یہ چھوٹے چھوٹے کام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد دیتے ہیں جو معاشرہ خیر خواہی پر مبنی ہوں. تو سامعین کرام آج کی سنت ہمیں ایک نہایت خوبصورت سبق دیتی ہے, کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت روکیے, پڑوسی کا خیال رکھیں چاہے چھوٹے سے تحفے کے ذریعے کیوں نہ ہوں, اور کسی کے معمولی تحفے کو کم سمجھ کر اس کا دل مت توڑیے, کیونکہ اسلام میں اصل قیمت نیت, محبت اور حسن سلوک کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اکرام کو ایمان سے جوڑا اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ معمولی سے معمولی تحفہ بھی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق پہچاننے, ان کا اکرام کرنے, ان کی تکلیف میں ساتھ دینے, ان کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
1: دل سے دیسی.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स सेगमेंट में हम बात करेंगे फार्मूला वन के उस नौजवान सितारे की जिन्होंने सिर्फ चंद सालों में मोटर स्पोर्ट की दुनिया को हैरान कर दिया है, आंद्रिया किमी एंटोनेली। मॉडर्न ये आज के जमाने के ड्राइवर हैं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इटली के बोलोगना शहर में 25 अगस्त 2006 को पैदा होने वाला किमी एंटोनेली आज की तारीख में फॉर्मूला वन के सबसे एक्साइटिंग ड्राइवर्स में से एक है। मर्सिडीज के इस यंग स्टार ने 2025 में F1 डेब्यू किया। लुई हैमिल्टन के मर्सिडीज छोड़ने के बाद जॉर्ज रसल के साथ टीम का हिस्सा बना। लेकिन किमी की कहानी फॉर्मूला वन से काफी पहले शुरू हो गई थी। शुरुआत गो कार्टिंग से 2014 में एंटोनेली ने कार्टिंग से अपना सफर शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने यूरोप के जूनियर कॉम्पिटिशन्स में अपनी स्पीड और रेस क्राफ्ट का सबूत दिया। मर्सिडीज ने भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को जल्द ही पहचान लिया और 2018 में उन्हें अपने जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। 2022 में किमी एंटोनेली ने इटालियन F4 और ADAC F4 चैंपियनशिप जीती, जबकि FIA मोटरस्पोर्ट गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद फॉर्मूला वन रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें मोटरस्पोर्ट के सबसे प्रॉमिसिंग नौजवान ड्राइवर्स में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि गाड़ी चलाना इज अ वेरी इजी जॉब। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने घर से कॉर्निश तक गाड़ी ड्राइव करके चले गए या शमाल रोड पर गाड़ी दौड़ा दी। लोग समझते हैं कि हर ड्राइवर जो है वो फॉर्मूला वन रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं।

फार्मूला वन रेस जो है इज डिफिकल्ट वो पिनाकल ऑफ ड्राइविंग है और उसमें मैकेनिज्म काफी इन्वॉल्वड है और फार्मूला वन के जितने भी क्वालिफिकेशन स्टेजेस हैं जैसे मैंने अभी बताया एंटोनेली के बारे में F4 यानी फार्मूला 4 फार्मूला 1 तो टॉप लेवल पर है उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस और एंटोनेली ने यह साबित किया था अपने बचपन से ही कि ही हैज सम ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड ड्राइवर सन 2023 में उन्होंने फार्मूला रीजनल मेडलिस्ट चैंपियनशिप में मुंबई फैल्कन्स के साथ हिस्सा लिया और फिर फार्मूला 2 तक पहुंच गए फिर आया 2025 फार्मूला 1 का बड़ा स्टेज किमी ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री से मर्सिडीज के लिए अपना F1 डेब्यू किया उनकी एंट्री के साथ वो 18 साल की उम्र में फार्मूला 1 ग्रिड पर आए और इटालियन मोटर स्पोर्ट के नए चैप्टर की शुरुआत की लेकिन सन 2026 ने एंटोनेली को सिर्फ एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर से चैंपियनशिप कंटेंडर बना दिया दोस्तों और इस सीजन में किमी ने ऑस्ट्रेलिया में सेकंड प्लेस के बाद चीन में अपनी पहली फार्मूला 1 विक्ट्री हासिल की इसके बाद जापान मायामी कनाडा और मोनाको में भी जीत दर्ज की बेल्जियम में भी वो रेस विनर बने और फिर आया मोंजा इटालियन ग्रॉपी में एंटोनेली को इंजन रिलेटेड पेनल्टी की वजह से 19 पोजीशन से रेस स्टार्ट करनी पड़ी लेकिन होम क्राउड के सामने उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए रेस जीत ली और इस फतेह के साथ वो 60 साल बाद इटालियन ग्रॉपी जीतने वाले पहले इटालियन ड्राइवर बन गए व्हाट एन अचीवमेंट सिर्फ एक हफ्ते बाद मद्रिद में इनॉग्रल स्पैनिश ग्रॉपी में भी एंटोनेली ने विक्ट्री हासिल की ये 2026 सीजन की उनकी 8वीं ग्रॉपी विन थी और इस जीत के बाद वो चैंपियनशिप में जॉर्ज रसल से 81 पॉइंट्स आगे हैं लेटेस्ट ऑफिशियल F1 फिगर्स के मुताबिक 14 ग्रैंड प्री के बाद किमी 292 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप लीडर हैं उनकी 8 जीत और 12 पोडियम फिनिशेस हैं किमी को अक्सर फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा है लेकिन वो खुद कंपैरिजन से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर यकीन रखते हैं और शायद इसी वजह से उनकी कहानी इतनी खास है 18 साल की उम्र में फार्मूला 1 का प्रेशर मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस किमी एंटोनेली ने सबको स्पीड मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया है दोस्तों किमी एंटोनेली का सफर अभी शुरू हुआ है लेकिन 2026 में जिस तरह वो फार्मूला 1 पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं ना उससे एक बात बिल्कुल वजह है कि मोटर स्पोर्ट की दुनिया को शायद अपना अगला बड़ा चैंपियन मिल चुका है तो दोस्तों ये था आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये स्पेशल सेगमेंट ऑन किमी एंटोनेली उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें फी अमानिल्लाह

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर, एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आपको मैं लगातार रिव्यूज और वेबसाइट्स और कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। देखिए, मैं भूल जाता हूँ कौन से एपिसोड में मैंने क्या बोला है, क्योंकि बहुत कुछ बोल चुका होता हूँ। तो इन केस आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है सुनने के बाद कि कबीर से पूछ लेनी चाहिए कि यार कबीर वो वाले एपिसोड में तुमने क्या कहा था, तो एक बार पूछ लिया करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है FM 107 कतर, और दूसरा ऑप्शन है आप सुबह वाले शो में आ जाया करें, है ना। तो आप एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, कबीर वो सर ये एपिसोड था या मैंने कल परसों सुना था ये था। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो ढूंढ के आपको बता दूं, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू। बहुत प्यार करूं मैं आपसे। चलो शुरू करते हैं आज की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट से। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट आज है

0: पहली वेबसाइट का नाम jitter.video, jitter jitter डॉट वीडियो, जिटर डॉट वीडियो अभी वेबसाइट करती क्या है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे तौर तरीके आ जाएंगे जिससे आप अपने पेज को या यू कहूं कि किसी वेबसाइट को या किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को एक डिफाइंड एनिमेशन दे सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ। और ये एनिमेशन ऐसे सस्ते वाले नहीं है, ये लगे यार ये तो बहुत ही सस्ता वाला लग रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रीमियम एनिमेशन आप दे सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े से पेड होंगे, बट ये बहुत प्रोफेशनल टूल है, तो आई थिंक जो भी इसे यूज करेगा उसे जरूरत होगी तभी यूज करेगा, वरना कोई सेंस नहीं बनता। ये ऐसी वेबसाइट नहीं कि मैं गया जी मजे लेने के लिए गया था, मैं देख रहा था मेरा नाम कैसे आएगा, वैसे वाला नहीं है। आई जेन्युइनली मीन इट, इफ यू आर इनटू सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन यूज इट, बहुत काम आने वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट जो है ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने रिसेंटली इसे डिस्कवर किया, आई लव इट। इसका नाम है desktophut.com, वाला हैट वाला नहीं ये झोपड़ी वाला हट है। तो desktophut.com इस पे आप जाइए, आपके लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको भर के लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। मैं इतना खुश हुआ मंगा फाइनली ये अपडेटेड वेबसाइट है। अपडेटेड का मतलब ये कि जो करंटली चीजें चल रही हैं, कुछ भी नहीं चीज आ रही है तो उस पे भी वॉलपेपर्स हैं, एंड अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लाइव वॉलपेपर्स काफी फंक्शनल है, इन अ वे कि वो ग्लिच नहीं मारते, वो अटकते नहीं है, बहुत बढ़िया लगते हैं, एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट। और अब बढ़ते हैं जरा तीसरी वेबसाइट की तरफ। तीसरी वेबसाइट का नाम है animos.app, animos, animos.app, app। तो जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, ये सबसे पहले वाली वेबसाइट की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मोशन देता है किसी भी चीज को। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं कि चलो मैंने टेम्पलेट तो बना दिया, सब कुछ ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट भी कर लिया, बट आई वॉन्ट द थिंग टू रोटेट इन अ सर्टन वे या मूव इन अ सर्टन वे, तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे यूज करेंगे। इसका मोस्टली फ्री है मामला, कुछ चीजें पेड हो सकती हैं बट बाकी चीजें फ्री हैं, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। देखिए क्या है, आजकल कॉन्टेंट जब तक आपका फैंसी नहीं लगेगा ना, काम नहीं चलेगा। आप अगर जहन में सोच रहे हैं ना कि मैं तो ओल्ड स्कूल तरीके से काम करता हूँ, इट विल नॉट वर्क। सीरियसली इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहना आज की मजबूरी नहीं कहूंगा, जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो यही तरीका जी, मैं तो चेंज नहीं करूंगा। यू हैव टू चेंज। ओके, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो वैसे देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सबॉक्स सोनी से मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। इस बीच गूगल भी रोल आउट कर रहा है अपना एक बहुत ही खास प्रोडक्ट जिसका नाम उसने रखा है गूगल बुक। ये AI लैपटॉप होगा और इसके बहुत सारे हार्डवेयर पार्टनर्स है। जब आएगा तब मैं इसका खुल के रिव्यू करूंगा, मगर अभी तक कतर में नहीं दिखाया मुझे, हालांकि रोल आउट हो चुका है। $899, अच्छा प्राइस, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है, इट्स अ गुड प्राइस। पर इसका पूरा जो रिव्यू है, जब मैं इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लूंगा तो आई विल लेट यू नो। ये एंड्रॉयड फोन की जो जरूरत है उसे पूरा करता है, मतलब एंड्रॉयड फोन जो चाहिए था ना, ये इंटीग्रेशन वो लैपटॉप से पूरा हो रहा है। मैं समझाऊंगा जब मैं इसके हत्ते चढ़ूंगा, ये मेरे हत्ते चढ़ेगा। तो ये थी अपडेट्स, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। आप बेहद बेहद जरूरी है।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं इत्तला करता रहता हूं। और कुछ दिनों हमने काफी बात करी, चाहे वो एड्रेस को अपडेट करने वाले स्कैम के बारे में बात किया हो, या फिर बात किया हो हमने किसी कार को सस्ते दाम में खरीदने वाले स्कैम के बारे में, या फिर हमने बात करी हो सबसे ज्यादा चलन वाले फेक ग्रॉसरी कूपन के बारे में। लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये इसलिए ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि हम हर रोज इस तरह के काम करते हैं, जैसे घर के कुछ नियम है, कुछ काम है जो रेगुलर बेसिस

0: पे चलते हैं। जैसे कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ग्रोसरी जाना, घर पे आना या फिर रेस्टोरेंट में जाना, कार चला के घर आना या फिर कार चला के ऑफिस जाना, ये कुछ बेसिक्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक काम है जिसमें हो सकता है कि आप घर बैठे काम करें, विच इज ग्रोसरी। और ग्रोसरी में भी आजकल बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गए हैं क्योंकि आप घर बैठे बैठे ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रोसरी स्कैम। इससे होशियार रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिक तरीका है, स्कैमर्स आपको बहुत आसानी से स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों, ये काम कैसे करता है इस पर नजर अगर डालें तो स्कैमर्स आम तौर पर आपके मोहल्ले में एक पिकअप ट्रक या वैन लेकर आते हैं या सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके पास हाई क्वालिटी बल्क मीट जैसे कि स्टीक, बीफ या चिकन और प्रीमियम ग्रोसरीज का बचा हुआ स्टॉक है जो बहुत ही सस्ते कीमत पर आपको मिल जाएगा। बायर को जल्दी फंसाने के लिए ये कहते हैं कि ये डील सिर्फ आज के लिए है या ये किसी बड़े रेस्टोरेंट का बचा हुआ ऑर्डर है। जब आप उनसे बल्क पैकिंग में माल खरीदते हैं तो ऊपर की लेयर तो अच्छी लगती है, लेकिन घर आकर खोलने पर पता चलता है कि मीट फ्रीजर बर्न्ड है, उसकी क्वालिटी बेकार है, वो एक्सपायर्ड है या खराब हो चुका है। कई बार ऑनलाइन डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के बहाने ये एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे तरीकों से या इस तरीके के स्कैम से बचने की बेहद बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी स्टोर में गोश्त खरीदने जाते हैं, मीट खरीदने जाते हैं, आपने मीट खरीदा, फिर जब वो आप घर आए तो वो एक दो दिन में खराब हो गया, बजाय इसके कि आपने तो फ्रीजर में रखा था। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, आप वापस जाएं उस स्टोर में और कहें कि मैंने फ्रिज में रखा, मैंने कल खरीदा था या परसों खरीदा था और इतनी जल्दी ये खराब हो गया। तो अगर उनको जेन्युइन लगेगा आपका ये मैटर तो वो आपको रिप्लेस करते हैं, वो आपको वापस करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके घर के सामने कोई आया हो या फिर मार्केट प्लेस पे या सोशल मीडिया पे कोई एड चला हो और फिर आपने वहां पेमेंट कर दिया हो या वो सामान इवन आपके घर आ गया हो, तो अब आप वापस पकड़ेंगे कैसे? आपने पेमेंट किया, आपको पता थोड़ी है कि वो ग्रोसरी उसकी असल में कहाँ है। तो ऐसे में होशियार होने की जरूरत आपको है क्योंकि कई बार खाना खराब होता है, ऊपर की लेयर अच्छी बना दी जाती है, साफ सुथरी धुल कर दे दी जाती है, लेकिन अंदर का माल या फिर अंदर का जो मीट है वो खराब होता है, नीचे से वो खराब होता है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से स्कैम के बचने के जो तरीके हैं वो बड़े सिंपल से, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आप बच सकते हैं। वेल, सबसे पहला तरीका है अननोन वेंडर से बल्क खरीदारी बिल्कुल ना करें। किसी भी ऐसे रास्ते चलते वेंडर से या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पेज से बल्क में मीट या ग्रोसरी ना खरीदें जिनका कोई फिजिकल स्टोर ही नहीं है या परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। क्योंकि कल को अगर आप खरीद भी लेते हैं ऑनलाइन वाला, अगर उसके पास स्टोर है तो आप स्टोर जा तो सकते हैं, क्योंकि बल्क में खरीदने का मतलब है आप कम से कम 500 रियाल तो दे ही रहे होते हैं पेमेंट के लिए। उसके अलावा फूड स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन हमेशा चेक करें। असली ग्रोसरी सप्लायर्स हमेशा प्रॉपरली लेबल्ड पैकिंग यूज करते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट, वेट और गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल स्टैंप होता है। अगर पैकिंग पर ऐसी डिटेल्स मिसिंग है तो फिर हो सकता है कि वो मीट या वो माल खराब है, उसे हरगिज ना लें। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक से भी अलग रहना है। अगर कोई सेलर आप पर दबाव डाल रहा है, अभी डील क्लोज करो वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में हैं, ये स्कैमर्स की आम निशानी है जो आपको सोचने समझने को टाइम ही नहीं देती है। उसके अलावा ट्रस्टेड लोकल आउटलेट्स का ही यूज करें। हमेशा बल्क मीट और ग्रोसरीज रजिस्टर्ड होलसेल मार्केट, सुपर स्टोर्स या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें जहां रिटर्न और रिफंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, ये था बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रोसरी स्कैम। उम्मीद है कि आपको ये स्कैम समझ जरूर आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। क्या है ये और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? क्या आज का दौर सही दौर है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आजकल बहुत से लोग अपने सेविंग्स को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं। चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहें, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल शॉप हो या फिर रेंटल प्रॉपर्टी, रियल स्टेट

दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्लॉट या घर खरीद लेने का नाम नहीं है। अगर प्लानिंग और रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी रियल एस्टेट एसेट को इस नियत से खरीदना कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े या उससे इनकम जनरेट हो। ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ लोग रहते हैं, यानी आपका घर हो सकता है, विला है, अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर फ्यूचर में महंगी कीमत पर सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से कई गुना ज्यादा होता है। एक और इन्वेस्टमेंट है लैंड इन्वेस्टमेंट। कई इन्वेस्टर्स खाली लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी लोकेशन मिल गई, सही वक्त से लैंड सही कीमत में मिल गई तो आगे चल के उसे बेच कर ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं।

अगर अच्छी लोकेशन पर है तो कुछ सालों में उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो जॉब के अलावा जनरेट होती है। वहीं प्रॉपर्टी एक टैंजिबल एसेट है। स्टॉक्स या फिर डिजिटल एसेट्स के बरक्स आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और ओन करते हैं। कई लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कंफर्टेबली समझ भी पाते हैं। वहीं वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है। कई केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंट्स भी इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है। अब समझना ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले क्या देखना चाहिए। अगर मुमकिन है तो तमाम सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझें। मार्केट स्लो डाउन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें भी समझनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, रिसर्च नहीं करते, चीप प्राइस देखी ले लिया, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमीन, दीवार और कॉन्क्रीट खरीदने का नाम नहीं है, ये अपने फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करने का नाम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, सब्र करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जो लोग आज अकलमंदी से इन्वेस्ट करते हैं वो कल ज्यादा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस पर मैं डिटेल में भी फ्यूचर में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते हो।

दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान, और आप सबको मैं इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में वेलकम कहती हूँ। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया देखा जाए तो इस वक्त हमारी जेब में सिमट आई है। एक छोटी सी स्क्रीन और पूरी दुनिया की खबरें, तस्वीरें, आवाजें, ख्यालात, फतवे, फैशन, नजरियात, सब एक लम्हे में हमारे सामने मौजूद होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि तेज रफ्तार जो जदीद जिंदगी है, फास्ट पेस लाइफ, उसमें कैसे अल्लाह से जुड़े रहना मुमकिन है, इबादत और काम में तवाजुन कैसे रखा जाए, और ज़हनी सेहत का ख्याल इस्लाम हमें कैसे सिखाता है। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ आ रहे हैं जो खामोशियों से हमारी जिंदगियों, घरों, इबादतों, ताल्लुकात और यहाँ तक के हमारी रूहानियत को भी मुतासर कर रहा है, और वो है डिजिटल ओवरलोड। मुसलसल स्क्रॉल करना, हर लम्हे नोटिफिकेशन की आवाज़, किसी पैगाम का इंतज़ार, किसी पोस्ट पर लाइक्स, किसी की स्टोरी, किसी की कामयाबी, किसी की खुशी, या आप कह सकते हैं ज़ाहरी खुशी। क्या आपने कभी महसूस किया कि हम जिस्मानी तौर पर एक जगह होते तो हैं, मगर ज़हनी तौर पर हम कहीं और होते हैं? आज के एपिसोड में इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिजिटल डिसिप्लिन की, यानी जदीद टेक्नोलॉजी को तर्क किए बगैर इस्लाम के असूलों के मुताबिक इसका दुरुस्त, मुतवाजन और बाबरकत इस्तेमाल। आज के एपिसोड आपको स्क्रीन तोड़ने का नहीं कहेगी, बल्कि स्क्रीन को काबू में लाने का तरीका सिखाने की कोशिश करेगी। लिसनर्स, आज का इंसान थका हुआ है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे, बल्कि जहनी और रूहानी तौर पे भी। हम सुबह आंख खुलते ही फोन चेक करते हैं, नमाज के बाद भी, खाने के दौरान भी, बच्चों के साथ बैठे हों तब भी, और सोने से पहले भी सबसे जो आखिरी चीज हमारे साथ होती है वो है स्क्रीन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब न्यूरोसाइंस के असूलों पर बनाए गए हैं। हर स्क्रॉल एक नया डोपामीन हिट देता है, हर लाइक एक वक्ती खुशी देती है, और हर नोटिफिकेशन हमें फिर से फोन की तरफ खींच लेता है। नतीजा क्या निकलता है? वक्त का ज़िया, तवज्जो की कमी, दिल का बेसुकून होना, और कंपैरिजन कल्चर, मवासना, हसद, मायूसी, एहसास कमतरी, और सबसे खतरनाक गफलत। कुरान हमें खबरदार करता है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा की चाहत ने गफलत में डाल दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कि ज्यादा से ज्यादा आज सिर्फ माल नहीं, बल्कि मालूमात, तस्वीर, शोहरत और तवज्जो भी है। इस्लाम इंसान की तरबियत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू करता है। इसीलिए कुरान और सुन्नत में जो सबसे पहला इखलाकी हुक्म हमें मिलता है वो है नज़र की हिफाजत। हम अक्सर ये समझते हैं कि निगाह नीची रखने का मतलब

0: सी। मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107, शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिसिप्लिन की। अभी ब्रेक से पहले हमने जो बात की, अगर हम उस गुफ्तगू को एक जुमले में समझ

बेचैन हो जाता है, सख्त हो जाता है और फिर हमें इबादत बोझ लगने लगती है। आज के डिजिटल दौर में स्क्रीन हमारी सबसे बड़ी आजमाइश है। हराम सिर्फ वाज़े शक्ल में नहीं आता बल्कि फितना बनकर आता है, और कंपैरिजन, हसद और नाशुक्री दिल में खामोशी से खड़ कर लेते हैं। इस्लाम हमें कभी दुनिया छोड़ने का नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि क्या देखना है, कितना देखना है और कब रुक जाना है। एक स्क्रॉल रोक लेना, एक वीडियो आगे बढ़ा देना, एक गलत अकाउंट अनफॉलो कर देना, ये सब छोटे अमल हैं लेकिन अल्लाह के नज़दीक के बड़े बन सकते हैं, क्योंकि दिल की हिफाजत के लिए ये किए जाते हैं। या थोड़ा सा एक हम स्ट्रेस करते हैं, गौर करते हैं इस बात पे कि गलत अकाउंट को अनफॉलो कर देना। आजकल मेरी और आपकी दोनों की ऑब्जर्वेशन में है कि अगर हमें कुछ ऐसा कंटेंट नज़र आ रहा होता है जो हमें सही नहीं लगता अखलाकी तौर पे और मॉडस्टी के हिसाब से, तो हम करते क्या हैं, हम जाके कमेंट कर करके उस जो भी शख्स है, कोई खातून है या कोई मर्द है, उनको हम ये बताते हैं कि आपने बहुत गलत किया, आप इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिबास आपके ऊपर सूट नहीं करता, आप कुछ और पहने, आप ख्याल रखें कि आपका ताल्लुक इस्लाम से है। ये सारी बातें हम करते हैं और नतीजा क्या होता है, लोगों की मजीद अटेंशन उस पोस्ट पे जाती है। मैंने जैसे पहले कहा कि सोशल मीडिया पूरा का पूरा जो इसका मामला है, जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो एल्गोरिथम पे है। आप जितना किसी चीज़ को लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे, जितना जिस चीज़ को देखेंगे वो इतना ही आपके सामने आएगी, बल्कि और लोगों के सामने भी आएगी जो जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है या उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। तो नतीजा निकलता ये है कि जो काम आप ये सोच के कर रहे हैं कि शायद आप नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आप उस चीज़ को और प्रमोट कर रहे हैं, उसकी और तशहीर कर रहे हैं। जब आपका कमेंट किसी पोस्ट पे नज़र आता है आपको जिसने फॉलो किया हुआ है, तो वो भी वो पोस्ट देख पाता है, और इस तरह से वो चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी थी आपने दूसरे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको इन्वाइट कर लिया कि वो भी वो आपकी पोस्ट देख सकें जो आपने देखी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है और अकलमंदी का तकाजा यह है कि अगर आपको कभी भी कोई चीज़ नागवार लगती है, अगर आपको लगती है कि अखलाकी तौर पे और जैसे मैंने पहले कहा शर्म है आपके हिसाब से, ये जो पोस्ट है ये ऐसी नहीं कि इसको मैं देखूं या मेरे जानने वालों में से कोई भी देखे, आपका जो हल्का अहबाब है उसमें से कोई देखे, तो आपको करना ये चाहिए कि फौरन से बेशतर उस अकाउंट को अनफॉलो कर दें। अब यकीन माने कि जितना इस तरह का रवैया रखा जाएगा, और अगर सब लोग जिनको फिक्र है इस बात की, क्योंकि नज़रों को हिफाजत की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा कंटेंट नहीं देखना, अगर यही रवैया अख्तियार करें बजाय किसी को लेक्चर देने के, तो वो पोस्ट लोगों की नज़र से ज़्यादा गुजरेगी नहीं, और जो भी पोस्ट करने वाले का मकसद है वो ज़्यादा लाइक्स हैं, ज़्यादा कमेंट्स हैं और ज़्यादा अटेंशन है। और आप और मैं बखूबी जानते हैं कि अगर किसी अटेंशन सीकर को अटेंशन ना मिले तो फिर वो काम करना तर्क कर देता है। तो इसलिए अब से ये आदत बनाएं कि जो चीज़ भी मोरालिटी के हिसाब से, मॉडस्टी के हिसाब से आपको मुनासिब नहीं लगती, उसको आपने इग्नोर करना है, अनफॉलो करना है, अनसब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ जाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पूरी हो जाती है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह ने चाहा तो उस शख्सियत को ज़रूर हिदायत मिलेगी। याद रखिए, जो दिल को ख़राब करता है वो चाहे हराम ना भी हो तो नुकसान दे ज़रूर होता है। नज़र की हिफाजत कोई पाबंदी नहीं, ये रहमत है, ये सुकून का रास्ता है, ये ईमान की ताजगी है। अब आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक और बुनियादी नेमत की तरफ चलते हैं जिस पर डिजिटल दुनिया ने सबसे ज़्यादा कब्जा किया हुआ है। अगर मैं आपसे एक बहुत सादा सवाल पूछूं, आपके पास इस वक्त सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या हो सकता है वो जो बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत कीमती हो, क्या?

0: अखबारों का नाम भी है। ये सुकून की जगह है। कुछ जगहों को स्क्रीन फ्री बना लीजिए। नमाज की जगह, खाने की टेबल, बेडरूम, ये छोटे फैसले आपकी फैमिली को करीब लाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को दोबारा जिंदा करते हैं और दिल को सुकून देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बहुत सादा था मगर सुकून से भरा हुआ था। लिसनर्स, दिन में कम से कम 30 मिनट फोन बंद और दिल को हाजिर करें। उस वक्त में जिक्र, कुरान, दुआ या फिर फैमिली से बात करें। ये वक्त जाया नहीं होगा, ये रूह की खजा साबित होगा। इस्लाम हमें रोजाना का मुहासबा सिखाता है। सोने से पहले खुद से 3 सवाल करें। आज मेरा वक्त कहाँ गया? क्या स्क्रीन ने मुझ पर गलबा पाया? क्या कल मैं बेहतर कर सकता हूँ? अभी इसी लम्हे फैसला कीजिए। फोन हाथ में है? है? सर नीचे रख दीजिए। ये छोटा सा अमल डिजिटल डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। इस्लाम में सबसे बड़ा जहाद ही अपने नफ्स पे काबू पाना है। जब दिल स्क्रॉल करना चाहे तो आप रुक जाइए, ये बेग जहाद है और अल्लाह ताला इस पे भी अजर देगा। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल डिसिप्लिन तर्क दुनिया नहीं बल्कि दुरुस्त इस्तेमाल है। डिजिटल रोजा दिल को आजाद करेगा और कॉन्टेंट की सफाई ईमान को ताजा करेगी। लिसनर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। और एक दफा फिर से एक और खूबसूरत और सबक आमोज एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। पिछले एपिसोड

0: तो उसे इज्जत दी जाए। लेकिन अगर कोई रस्म, अकीदा या अमल हक के खिलाफ हो तो सिर्फ इसलिए दुरुस्त नहीं हो जाता कि वो नस्लों से चला रहा है। हक का मयार अल्लाह की हिदायत है। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम से ये भी वाज़े किया कि वो अपनी दावत के बदले उनसे कोई दुनियावी मुआवजा नहीं चाहते। उनका मकसद माल, शोहरत, इक्तिदार या जाती फायदा हासिल करना नहीं था। वो अपनी कौम की भलाई चाहते थे। ये अंबिया कराम अलैहि सलाम की दावत का एक और अहम पहलू है। एक सच्चा दाई लोगों से फायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वो उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते, उन्हें तकवा की दावत देते, उन्हें शिर्क छोड़ने का कहते, उन्हें तौबा की तरफ बुलाते और उन्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करते। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से माफी मांगने और उसकी तरफ पलटने की भी दावत दी। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर वो अपने रब से इस्तगफार करें और तौबा करें तो अल्लाह उन पर आसमान से बारिश बरसाएगा और इनकी कुव्वत में मजीद कुव्वत पैदा करेगा। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह ताला इंसान को सजा देने के लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं करते। जब तक इंसान की जिंदगी बाकी है वो पलट सकता है। गलती हो गई, वापस आ जाएं। गुनाह हो गया, तौबा करें। अल्लाह से दूरी हो गई, उसकी तरफ रुजू करें। कौमियात के लिए भी दरवाजा खुला था लेकिन उन्होंने तकब्बुर को तरजीह दी। लिस्टनर्स, कौमियात की असल बीमारी सिर्फ ये नहीं थी कि उनके पास बुत थे। असल बीमारी उनके दिलों में मौजूद तकब्बुर भी था। वो अपनी कुव्वत को देखते थे, अपनी इमारतों को देखते थे, अपने वसाइल को देखते थे, अपने जिस्मानी कदो कामत को देखते थे और फिर समझते थे कि कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। कुरान करीम में उनके बारे में आता है कि उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये जुमला दरअसल उनकी जहनी कैफियत की तस्वीर है। वो अपनी ताकत को सब कुछ समझ बैठे थे लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया वो उनसे कई ज्यादा ताकतवर है। यहाँ एक बुनियादी हकीकत सामने आती है। इंसान कितना भी ताकतवर हो वो मखलूक है और अल्लाह खालिक है। मखलूक की ताकत महदूद है, अल्लाह की दी हुई है और खालिक की कुदरत लामहदूद है। ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं। आज किसी शख्स के पास पैसा है तो ये ताकत है, किसी के पास तालीम है तो ये ताकत है, किसी के पास ओहदा है तो ये ताकत है, किसी के पास सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंचने की सलाहियत है तो ये भी ताकत है, किसी के पास किसी इदारे में फैसला करने का इख्तियार है तो ये भी ताकत है। सवाल ये है, हम इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम किसी कमजोर शख्स को दबा दें तो ये तकब्बुर है। अगर हम अपने ओहदे की वजह से दूसरों को हकीर समझें तो ये तकब्बुर है। अगर दौलत की वजह से गरीब इंसान को कमतर समझें तो ये तकब्बुर है। अगर तालीम हासिल करके जाहिल लोगों का मजाक उड़ाएं तो ये भी तकब्बुर हो सकता है। मोमिन की ताकत उसे दूसरों से बुलंद नहीं करती बल्कि उसे जिम्मेदार बनाती है।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: कुरान करीम में कौम आद की तामीरात और उनके तर्ज जिंदगी का जिक्र भी आता है। वो बुलंद मकामात पर निशानियां और इमारतें तामीर किया करते थे। वो मजबूत किले और महलात बनाते थे। उनकी तामीरात में शान और शौकत नुमाया थी। तामीर करना खुद कोई गुनाह नहीं। इस्लाम तरक्की और खूबसूरत तामीरात के खिलाफ नहीं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब इंसान तामीरात को

0: कि क्या इन कामयाबियों ने हमें अल्लाह के करीब किया। अगर कामयाबी हमें शुक्रगुजार बनाती है तो ये हमारे लिए नेमत है। अगर कामयाबी हमें मुतकब्बिर कर देती है तो हमें रुक के अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, शुक्र ये भी है कि नेमत को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। डियर लिसनर्स, आज हमने जाना हजरत हूद अलैहि सलाम और कौम आद के बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होती है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स की नेक्स्ट स्टोरी में, और एक और नबी की अच्छी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से दे

में थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस, किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके,

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: Maximum music, maximum fun
2: on FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

0: सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, जिन्होंने काफिरों के जुल्म और सितम के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी और अपने ईमान पर इस्तकामत की दुआ की। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने उस वक्त की थी जब वो ईमान की राह में जालिमों के जुल्म और फितनों से दो चार थे। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا

0: सारे टेम्पलेट, बहुत सारे तौर तरीके आ जाएंगे जिससे आप अपने पेज को या यूं कहूं कि किसी वेबसाइट को या किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को एक डिफाइंड एनिमेशन दे सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ। और ये एनिमेशन ऐसे सस्ते वाले नहीं है, ये लगे यार ये तो बहुत ही सस्ता वाला लग रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रीमियम एनिमेशन आप दे सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े से पेड होंगे, बट ये बहुत प्रोफेशनल टूल है, तो आई थिंक जो भी इसे यूज करेगा उसे जरूरत होगी तभी यूज करेगा, वरना कोई सेंस नहीं बनता। ये ऐसी वेबसाइट नहीं है कि मैं गया जी मजे लेने के लिए गया था, मैं देख रहा था मेरा नाम कैसे आएगा, वैसा वाला नहीं है। आई जेन्युइनली मीन इट, इफ यू आर इनटू सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन, यूज इट, बहुत काम आने वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट जो है ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने रिसेंटली इसे डिस्कवर किया एंड आई लव इट। इसका नाम है desktophut.com, वाला हैट वाला नहीं ये झोपड़ी वाला हट है। तो desktophut.com इस पे आप जाइए, आपके लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको भर के लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। मैं इतना खुश हुआ मंगा, फाइनली ये अपडेटेड वेबसाइट है। अपडेटेड का मतलब ये है कि जो करंटली चीजें चल रही हैं, कुछ भी नई चीज आ रही है तो उस पर भी वॉलपेपर्स हैं, एंड अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लाइव वॉलपेपर्स काफी फंक्शनल है, इन अ वे कि वो ग्लिच नहीं मारते, वो अटकते नहीं है, बहुत बढ़िया लगते हैं, एंड आई डेफिनेटली लव्ड इट। और अब बढ़ते हैं जरा तीसरी वेबसाइट की तरफ। तीसरी वेबसाइट का नाम है animos.app, animos, animos.app, app। तो जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, ये सबसे पहले वाली वेबसाइट की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मोशन देता है किसी भी चीज को। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं कि चलो मैंने टेम्पलेट तो बना दिया, सब कुछ ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट भी कर लिया, बट आई वॉन्ट द थिंग टू रोटेट इन अ सर्टन वे या मूव इन अ सर्टन वे, तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे यूज करेंगे। इसका मोस्टली फ्री है मामला, कुछ चीजें पेड हो सकती हैं बट बाकी चीजें फ्री हैं, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। देखिए क्या है, आजकल कॉन्टेंट जब तक आपका फैंसी नहीं लगेगा ना, काम नहीं चलेगा। आप अगर जहन में सोच रहे हो ना कि मैं तो ओल्ड स्कूल तरीके से काम करता हूँ, इट विल नॉट वर्क। सीरियसली इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहना आज की मजबूरी नहीं कहूंगा, जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो यही तरीका जी, मैं तो चेंज नहीं करूंगा। यू हैव टू चेंज। ओके, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो भाई देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सबॉक्स सोनी से मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। इस बीच गूगल भी रोल आउट कर रहा है अपना एक बहुत ही खास प्रोडक्ट, जिसका नाम उसने रखा है गूगल बुक। गूगल बुक ये AI लैपटॉप होगा और इसके बहुत सारे हार्डवेयर पार्टनर्स है। जब आएगा तब मैं इसका खुल के रिव्यू करूंगा, मगर अभी तक कतर में नहीं दिखाया मुझे, हालांकि रोल आउट हो चुका है। $899, अच्छा प्राइस, ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, इट्स अ गुड प्राइस। पर इसका पूरा जो रिव्यू है, जब मैं इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लूंगा तो आई विल लेट यू नो। ये एंड्रॉयड फोन की जो जरूरत है उसे पूरा करता है, मतलब एंड्रॉयड फोन जो चाहिए था ना, ये इंटीग्रेशन वो लैपटॉप से पूरा हो रहा है। मैं समझाऊंगा जब मैं इसके हत्ते चढ़ूंगा, ये मेरे हत्ते चढ़ेगा। तो ये थी अपडेट्स, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। बेहद बेहद जरूरी है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की. क्या है ये और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? क्या आज का दौर सही दौर है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आजकल बहुत से लोग अपने सेविंग्स को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं. चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहें, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल शॉप हो या फिर रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है. लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्लॉट या घर खरीद लेने का नाम नहीं है. अगर प्लानिंग और रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है. इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है. पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी रियल एस्टेट एसेट को इस नियत से खरीदना कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े या उससे इनकम जनरेट हो. ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां लोग रहते हैं, यानी आपका घर हो सकता है, विला है, अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं. इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर फ्यूचर में महंगी कीमत पर सेल कर सकते हैं. वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी. ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वेयरहाउसेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं. कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से कई गुना ज्यादा होता है. एक और इन्वेस्टमेंट है लैंड इन्वेस्टमेंट. कई इन्वेस्टर्स खाली लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं. अच्छी लोकेशन मिल गई, सही वक्त से लैंड सही कीमत में मिल गई तो आगे चल के उसे बेच कर ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं. अब देखते ये भी है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं. एक तो प्रॉपर्टी को ट्रेडिशनली वेल्थ बिल्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स माना जाता है. आज ली गई प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन पर है तो कुछ सालों में उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है. अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है. इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो जॉब के अलावा जनरेट होती है. वहीं प्रॉपर्टी एक टैंजिबल एसेट है. स्टॉक्स या फिर डिजिटल एसेट्स के बरक्स आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और ओन करते हैं. कई लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कंफर्टेबली समझ भी पाते हैं. वहीं वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है. कई केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंट्स भी इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है. अब समझना ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले क्या देखना चाहिए. अगर मुमकिन है तो तमाम सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझें. मार्केट स्लो डाउन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क या फिर अन

डिफरेंसेस, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, रिसर्च नहीं करते, चीप प्राइस देखी, ले लिया, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमीन, दीवार और कॉन्क्रीट खरीदने का नाम नहीं है, ये अपने फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करने का नाम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, सब्र करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जो लोग आज अकलमंदी से इन्वेस्ट करते हैं वो कल ज्यादा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस पर मैं डिटेल में भी फ्यूचर में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते हो।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं इत्तला करता रहता हूं। और कुछ दिनों हमने काफी बात करी, चाहे वो एड्रेस को अपडेट करने वाले स्कैम के बारे में बात किया हो, या फिर बात किया हो हमने किसी कार को सस्ते दाम में खरीदने वाले स्कैम के बारे में, या फिर हमने बात करी हो सबसे ज्यादा चलन वाले फेक ग्रॉसरी कूपन के बारे में। लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये इसलिए ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि हम हर रोज इस तरह के काम करते हैं। जैसे घर के कुछ नियम है, कुछ काम है जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ग्रॉसरी जाना, घर पे आना या फिर रेस्टोरेंट में जाना, कार चला के घर आना या फिर कार चला के ऑफिस जाना, ये कुछ बेसिक्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक काम है जिसमें हो सकता है कि आप घर बैठे काम करें, विच इज ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी में भी आजकल बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गए हैं क्योंकि आप घर बैठे बैठे ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं। आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रॉसरी स्कैम। इससे होशियार रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिक तरीका है, स्कैमर्स आपको बहुत आसानी से स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों ये काम कैसे करता है, इस पर नजर अगर डालें तो स्कैमर्स आम तौर पर आपके मोहल्ले में एक पिकअप ट्रक या वैन लेकर आते हैं, या सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके पास हाई क्वालिटी बल्क मीट जैसे कि स्टीक, बीफ या चिकन और प्रीमियम ग्रोसरीज का बचा हुआ स्टॉक है जो बहुत ही सस्ते कीमत पर आपको मिल जाएगा। बायर को जल्दी फंसाने के लिए ये कहते हैं कि ये डील सिर्फ आज के लिए है, या ये किसी बड़े रेस्टोरेंट का बचा हुआ ऑर्डर है। जब आप उनसे बल्क पैकिंग में माल खरीदते हैं तो ऊपर की लेयर तो अच्छी लगती है, लेकिन घर आकर खोलने पर पता चलता है कि मीट फ्रीजर बर्न्ड है, उसकी क्वालिटी बेकार है, वो एक्सपायर्ड है या खराब हो चुका है। कई बार ऑनलाइन डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के बहाने ये एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे तरीकों से या इस तरीके के स्कैम से बचने की बेहद बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी स्टोर में गोश्त खरीदने जाते हैं, मीट खरीदने जाते हैं, आपने मीट खरीदा, फिर जब वो आप घर आए तो वो एक दो दिन में खराब हो गया, बजाय इसके कि आपने तो फ्रीजर में रखा था। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, आप वापस जाएं उस स्टोर में और कहें कि मैंने फ्रिज में रखा, मैंने कल खरीदा था या परसों खरीदा था और इतनी जल्दी ये खराब हो गया। तो अगर उनको जेन्युइन लगेगा आपका ये मैटर तो वो आपको रिप्लेस करते हैं, वो आपको वापस करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके घर के सामने कोई आया हो, या फिर मार्केट प्लेस पे या सोशल मीडिया पे कोई एड चला हो और फिर आपने वहां पेमेंट कर दिया हो, या वो सामान इवन आपके घर आ गया हो, तो अब वापस पकड़ेंगे कैसे? आपने पेमेंट किया, आपको पता थोड़ी है कि वो ग्रोसरी उसकी असल में कहां है। तो ऐसे में होशियार होने की जरूरत आपको है क्योंकि कई बार खाना खराब होता है, ऊपर की लेयर अच्छी बना दी जाती है, साफ सुथरी धुल कर दे दी जाती है, लेकिन अंदर का माल या फिर अंदर का जो मीट है वो खराब होता है, नीचे से वो खराब होता है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से स्कैम के बचने के जो तरीके हैं वो बड़े सिंपल से, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आप बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अननोन वेंडर से बल्क खरीदारी बिल्कुल ना करें। किसी भी ऐसे रास्ते चलते वेंडर से या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पेज से बल्क में मीट या ग्रोसरी ना खरीदें जिनका कोई फिजिकल स्टोर ही नहीं है या परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। क्योंकि कल को अगर आप खरीद भी लेते हैं ऑनलाइन वाला, अगर उसके पास स्टोर है तो आप स्टोर जा तो सकते हैं, क्योंकि बल्क में खरीदने का मतलब है आप कम से कम 500 रियाल तो दे ही रहे होते हैं।

0: पेमेंट के लिए। उसके अलावा फूड स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन हमेशा चेक करें। असली ग्रोसरी सप्लायर्स हमेशा प्रॉपरली लेबल्ड पैकिंग यूज करते हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट, वेट और गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी का अप्रूवल स्टैंप होता है। अगर पैकिंग पर ऐसी डिटेल्स मिसिंग है तो फिर हो सकता है कि वो मीट या वो माल खराब है, उसे हरगिज ना लें। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक से भी अलग रहना है। अगर कोई सेलर आप पर दबाव डाल रहा है, अभी डील क्लोज करो वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में हैं, ये स्कैमर्स की आम निशानी है जो आपको सोचने समझने को टाइम ही नहीं देती है। उसके अलावा ट्रस्टेड लोकल आउटलेट्स का ही यूज करें। हमेशा बल्क मीट और ग्रोसरीज रजिस्टर्ड होलसेल मार्केट, सुपर स्टोर्स या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर करें, जहां रिटर्न और रिफंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, ये था बल्क मीट एंड डायरेक्ट टू होम ग्रोसरी स्कैम। उम्मीद है कि आपको ये स्कैम समझ जरूर आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया द डिबेटेबल टेबल एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी द डिबेटेबल टेबल आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड आज की इस डिबेटेबल टेबल में जो डिबेट है उससे मैं बहुत वाकिफ हूँ क्योंकि इसके बारे में अक्सर बात होती है इसके बहुत सारे सब जॉनराज हैं सब ब्रांचेज हैं इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ये जो इंटर्नशिप की दुनिया है आज की तारीख में इसको लेके भी अलग अलग किस्मों की डिबेट्स हैं अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से इंटर्नशिप होती है और फिर आ जाती है आपकी वो पढ़ाई जो एक्चुअली में पढ़ाई होती है मतलब जहाँ पर आप क्लासरूम से बैठे होते हैं या कहीं पर जाते हैं कहीं पर जाके प्रॉपर थियोरेटिकल ट्रेनिंग लेते हैं सब कुछ करते हैं पर आज यही सवाल है कि क्या क्लासरूम वाली जो पढ़ाई है वो सुपीरियर हो जाती है इंटर्नशिप टीचेस यू वे बेटर तो कौन फॉर है कौन अगेंस्ट है जरा ये बता दो एक बार
3: मैं फॉर हूँ
2: ओके एंड यू आर अगेंस्ट इट राइट ओके तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा देखो मैं सिक्का नहीं उछाल सकता बच्चों तो प्लीज अपना एक बार नाम बता दो माइक पे प्लीज
3: मेरा नाम है सैंडिली अकोली पाका
2: ओके एंड आपका नाम
4: मेरा नाम सिंचल
2: ठीक है तो कौन पहले शुरू करने वाला
3: है नहीं
2: आप ही शुरू करेंगे
3: क्वेश्चन ही है
2: अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो
3: दिस हाउस बिलीव्स दैट इंटर्नशिप्स आर मोर वैल्यूएबल देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर हाई पेइंग करियर्स
2: ओके तो हाई पेइंग करियर्स हम समझते हो कि इंटर्नशिप ही हेल्पफुल है
3: जी
2: कैन यू एलाबोरेट दैट
3: हां जी जो भी फॉर जो इंटर्नशिप्स में

0: है उधर जाके आप प्रैक्टिकली वो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल से यू आर लर्निंग अबाउट ऑटोमोबाइल्स एंड वो सब कैसे बनता है, जो कार है वो कैसे होता है. If you read in a book, you will know. But even though you go there and you will do part open करके check करना, वो सब आपके mind में आ जाता है.
1: Practicality.
0: Practicality is important.
1: Okay. And what do you have to say? बताओ.
2: Like वो हर field में like वो apply नहीं होता है, क्योंकि like अगर doctors को हम देखें, तो doctors जाके direct surgery तो नहीं कर सकते हैं ना, तो like they need theoretical knowledge as well. क्योंकि कुछ करियर्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट लिया, तो आर्किटेक्ट में आप जाके वैसे बिल्डिंग डिजाइन नहीं बना सकते हो. आपको पहले सीखना पड़ेगा कि बनाते कैसे हैं, कौन से मटेरियल्स की इस्तेमाल होती है. अगर आप आईटी में हो फॉर एग्जांपल, तो आप जाके डायरेक्टली अगर कुछ काम करने लगे, तो उतना मतलब बेसिक्स भी तो लाइक अंडरस्टैंड होनी चाहिए. बेसिक्स के बिना तो कुछ कर नहीं सकते.
1: Okay.
2: तो थियोरेटिकल नॉलेज और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल भी अप्लाई करना पड़ता है. पर लाइक स्कूल्स में, अब जैसे हमारे स्कूल में अब 9th grade या 8th grade के छोटे बच्चों को भी लैब में लेके जाते हैं, और हमें ऑलरेडी कोडिंग सिखा रहे हैं. तो बेसिकली जो वो इंटर्नशिप्स में होता है, वो नेसेसरी नहीं कि सिर्फ इंटर्नशिप्स में ही होती है. लाइक इट हैपन्स इवन एट

0: एनीवेज तो इंटर्नशिप की जरूरत उतनी नहीं है.
1: ओके क्या कहना, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए डॉक्टर्स के, आईटी सेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल दिए. व्हाट इज योर काउंटर टू दैट?
2: In today's fast-paced world, competitive jobs market and employers value practical experience more than theoretical knowledge. Internships provide that exactly that real-world exposure and professional networking and employable skills that classrooms alone cannot deliver. But still, people may think traditional learning and internship learning have the same value.
1: Okay.
2: But the thing is, the traditional learning is not just important, but internship learning in, for example, in a place, they do tell you what to do. So, for example, what happens in my school is that we have a subject called DNT, which is design technology. All right. वो स्कूल में है जो वी यूज बिटवीन अ वुड और कुछ भी. सो दे टीचर्स एक्सप्लेन इट बिफोर व्हाट टू डू.
1: ओके क्या होता है इसमें?
2: इसमें ऐसा सब कुछ होता है. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट में वो सब जाने का है तो यू हैव टू टेक डीएनटी.
1: ओके
2: उसमें वुड होता है बिफोर लाइक यू कैन
1: सो बेसिकली मैचिंग व्हाट इज रिटन टू टेक्नोलॉजी. इज दैट
2: एग्जैक्टली कोडिंग वो सब दैट एवरीथिंग कम्स अंडर दैट. So if you want to build a robot in like for a factory example, you can't just go and build a robot. उधर बताएंगे कि क्या करना है. That the teachers or whatever is there, the lecturers for example, they will tell you what to do and they will also show you for examples and all.
1: Okay, ठीक है. So classroom learning पे he's talking about robotics and all क्योंकि अभी जैसे तुमने बात करी coding वगैरह की. So do you have a counter to that and what do you think about that?
0: Like he said that they will be teaching step by step.
1: Yeah.
0: वो सब theory, that theory is also taught even in classrooms.
1: Yeah.
0: And mostly in internships. Like what I have noticed, I have spoken to my uncle and even my father.
1: Yeah.
0: They take internships for new interns who just joined the company.
1: Okay.
0: So what they have noticed is like sometimes they don't really have the time to teach you that well.
1: Yeah.
0: Because like people ka, like they have their own work to do. Like if they have time tab aake sikhayenge.
1: Har bar internship mein you don't get the attention. Okay.
0: Aur like wo jo sikhate hain like unka kaam karne ke baad wo aake sikhate hain. Aur wo jo hum karte hain internship wo just 2 to 3 weeks ka hota hai.
1: Yeah.
0: So within 2 to 3 weeks utna seekhna I'm not sure, because classroom learning matlab aap grade 1 se lekar grade 12 tak seekhte hain aur baad mein college bhi jaate hain na. So like 14 years of experience sirf 2 weeks mein kuch dikha nahi sakte.
1: Okay. So that is her point. Because basically she's saying ke internship mein jab jate bhi hai, toh not necessarily aapko attention mile. And most of the time aisa hi hota hai ke until unless kisi intern ko koi buddy nahi milta. Like that is a term they use, right? So agar koi buddy nahi milega toh problem hoti hai. You can't really have somebody to tell you anything. What is your take on this?
2: Yeah, main bhi ye bolna chahta hu ki jaise Benjamin Franklin ji ne kaha tha,
1: okay,
2: ki tell me and I forget. Teach me and I may remember.
1: Okay.
2: Involve me and I may learn. Do all, I may teach. उसका मतलब है कि एक बार बोलो मैं भूल जा सकता हूँ. और ऐसे ही जो टीचर बोलते हैं बार बार बार बार वही वो याद करते रहते हैं. और इन्वॉल्व में जो लिखते हैं सब कुछ करते हैं, टेक में ऐसे ही लैपटॉप में ऐसे यूज करते हैं, वो सब कुछ सीख जाते हैं. और सब कुछ ऑल टुगेदर करो वो टीचर बन जा सकते हैं.
1: okay.
2: ऐसे ही उन्होंने भी कहा था कि एक एक पर्सन को उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बट इंटर्नशिप्स इज अबाउट ऑल अबाउट एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ कंपनी, द कंपनी मस्ट हैव अ पर्सन हु माइट टीच यू, दैट इज देयर जॉब. यू डोंट हैव अदर जॉब्स. जो कि ऐसे मोस्टली अभी देखो दुनिया में बहुत सारे कंपनीज है एंड दे आर ऑल पावरफुल, बहुत सारे एम्प्लॉयज है. वो सब सिखाते हैं लोगों को.
1: okay.
2: ऐसे नॉट लाइक अ पर्सन फॉर एग्जांपल लेक्चरर इन एन कंपनी डज नॉट हैव अदर वर्क टू डू अनलेस लाइक एक्सेप्ट फॉर टीचिंग यू द जॉब.
1: ओके सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. क्या कुछ कहे इसका पॉइंट?
0: लाइक पॉइंट तो सही है, पर लाइक वो हर केस में इंटर्नशिप की जरूरत भी नहीं होती है ना.
1: ओके
0: क्योंकि लाइक व्हाटएवर लाइक एडवांटेजेस जो आपको इंटर्नशिप में मिलते हैं,

0: वो तो स्कूल्स और लाइक क्लासरूम लर्निंग में भी मिल सकती है. जैसे उसने बताया कि बोल के और करके दोनों एक साथ करने पे लाइक इंसान को याद होता है. तो वैसे भी लाइक हमारे टीचर्स लाइक हमें एआई में लैब लेके जाते हैं.
1: okay.
0: तो वहाँ हमें कोडिंग का लाइक बेसिक टर्म सब कुछ सिखाते भी हैं और लाइक हमें करवाते भी हैं. तो लाइक वो सिखाते हैं और हमें करने के भी लिए देते हैं. तो लाइक इंटर्नशिप जाने की इतनी जरूरत नहीं है जब आपको वो दूसरे जगह में भी मिल रही है. बिकॉज लाइक यूजुअली स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि स्कूल खत्म करने के बाद वहाँ जाओ और वहाँ का काम भी करो और यहाँ का काम भी करो. क्योंकि लाइक कभी कभी अगर आप इंटर्नशिप में गए तो मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट होती है मोस्टली जॉब्स. अगर नाइट शिफ्ट है तो कर सकते हैं, पर लाइक मॉर्निंग शिफ्ट में है तो स्कूल का टाइम भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. और एग्जाम्स भी होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है. और इंटर्नशिप्स में ना उतना कभी कभी अनपेड रहते हैं, कभी कभी कम पगार देते हैं. अगर दिए तो भी लाइक उतना, कुछ कंपनीज में ऐसे होती है कि यू हैव टू पे फॉर द इंटर्नशिप. तो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो तो जा नहीं सकते.
1: वेरी वैलिड पॉइंट. क्या क्या कहोगे तू?
2: मैं इसमें 5 पॉइंट्स करूंगा.
1: ओके प्लीज गो अहेड.
2: फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो भी है दैट इंटर्नशिप वी आर टॉकिंग अबाउट, सम स्कूल्स एक्चुअली प्रोवाइड इट. जैसे कि नॉर्मल इंडियन स्कूल्स या कतार पे हैं, वो सब उतना ज्यादा इंटर्नशिप नहीं देते हैं जो कि अदर करिकुलम्स देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ब्रिटिश करिकुलम में हूँ, वो दे वैल्यू इंटर्नशिप एंड ट्रेडिशनल टीचिंग बोथ एट द सेम टाइम. सो पहले सिखाते हैं फिर करने देते हैं. बट अदर स्कूल्स माइट जस्ट टीच. Yes, it is a problem amount of money, but paise hain, you can do internship. That is how today's fast-paced world is. So if we go on to the next point, hands-on learning. Students apply their knowledge in actual work situations to make them job ready when they have opportunity. Networking opportunities. Internships connect students to professionals who can actually open door to high paying jobs. Jaise ki, for example, your essay internship mein aaye aur you become friends with bolo ki lecturer.
1: Okay, networking.
2: Aise upar chale ja sakte hain easy se.
1: Okay.
2: Direct employment pipeline. Many companies hire their interns full time, bypass the traditional recruitment. वही ऐसे होते हैं, but they learn difference between internship and traditional learning. जैसे सिर्फ traditional में आते हो, you are not valued the same with the person who has the both or just has internship.
1: Okay, that kind of bypasses the hiring part of it, right?
2: Part of it.
1: Okay, okay.
2: Knowledge, knowing in experience, leading. Many people know things because of their experience. They don't know just you see the book and you know that's it. You can't know it because you have experience on it. That is one of the reasons why teachers tell us that mistake is the first step in learning.
1: Okay. That is the bottom line that he's trying to say, the mistake is the first step to learning.

0: टाइम जैसे मैंने कहा था कि योर साइंस टीचर मेक्स यू राइट इट 10 टाइम्स इजंट दैट बोरिंग देन यू गोइंग टू द लैब ट्राइंग आउट फॉर योरसेल्फ मेकिंग अ स्लाइम एंड प्लेइंग अराउंड विद इट व्हिच इज मच मोर फन देन राइटिंग द सेम थिंग 10 टाइम्स एंड देन व्हाट ultimately happens is that people are so bored they don't want to be in the science class some of them don't even focus some of them don't even write they are just watching at the clock when will the lesson end
1: okay bhai dekho tum dono na main standing ovation dena chahta hu tum dono ke liye this has been one of the most brilliant episodes ever and main honestly bol raha hu जीत हार तो देखो कुछ है नहीं इसमें सिचुएशन बिकॉज यू टू आर एक्सीलेंट मतलब हमारे सामने एक एक्सपेक्टेटर भी आपके लिए एंड शी वुड अग्री टू दिस बहुत जबरदस्त बोलते तुम दोनों यार मैं ये सबसे पहला एपिसोड है जब सबसे पहले सबसे कम मैं बोला हूँ बाय द वे वरना मैं बीच में बोलता रहता हूँ सो आई हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट बाकी जो लोग सुन रहे हैं FM 107 का जो व्हाट्सएप है उस पर अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा सो 666-22-107 इज आर नंबर एंड सोशल मीडिया हैंडल्स आर FM 107 कतर बट बिफोर वी साइन ऑफ डिबेट से थोड़ा बाहर आते हैं जंग से थोड़ा बाहर आते हैं एंड आई वांट टू नो अबाउट यू बोथ सो क्या क्या बनना है कैसा थी पहले तुम बताओ
2: या सो माय नेम इज सिंचल एंड आई एम फ्रॉम कर्नाटका
1: हां क्या क्या बनना है कैसा थी व्हाट इज योर गोल
2: माय गोल इज टू बिकम लाइक अ केमिकल इंजीनियर
1: केमिकल इंजीनियर
2: लाइक इवन माय फादर इज अ केमिकल इंजीनियर
1: ओह नाइस
2: लाइक सो आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एंड आई आल्सो हैव लाइक गुड इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री
1: अच्छा
2: बट देन लाइक इफ यू सी मी इन लाइक प्रोग्राम्स और समवेयर आई एम ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड लाइक आई डू सिंगिंग डांसिंग ड्राइंग पेंटिंग debates like also standing
1: okay, तो छोड़ दो
2: like वही बोलते हैं मेरे दोस्त but then like they're like okay अगर कोई आता है नाम लेने के लिए किसी competition में वो बोलते हैं कि हाँ इसे ले दो वो जाएगी
1: क्या बात है और तुम्हारा क्या सीन है भाई
0: मैं सांडिलिया क्वालिफाक हूँ जैसे बताया कि मैं तेलंगाना से हूँ हैदराबाद
1: यस
0: और जैसे उधर वो स्टोरी चल रहा है हमारे पास भी यही स्टोरी चल रहा है कि हर में हूँ म्यूजिकल्स बोलो कि हमारे स्कूल में जो भी है MUN
1: म्यूजिकल्स एज़ वेल
0: हाँ मैं म्यूजिक में आपको हाई स्कूल म्यूजिकल पता है
1: यस ऑफ कोर्स पता है
0: हाँ मैं उसमें था मेरे स्कूल में ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ मटिल्डा बिट मेरे स्कूल में
1: क्या बात है यार
0: हाँ सच में सच में
1: एंड व्हाट यू वांट टू बिकम मतलब आगे जाके सोचा है
0: आगे हाँ सोचा है कि आई वांट टू बिकम अ बिजनेस पर्सन A really business man.
1: What sort of a business you have?
0: सब में अपना हाथ डालने का.
1: अच्छा ऐसा है. And hobbies क्या है तुम दोनों की मतलब क्या करते हो पढ़ाई-वढ़ाई के अलावा ये सोच के अलावा business के अलावा कोई कुछ ऐसा है जो you like to do in your free time in your me time जैसे आजकल बोलते हैं. What do? You play games or something?
0: हाँ हाँ कल तक तो Roblox खेलता था आज तो बैन ने कोई ऐसे ही नॉर्मल जस्ट लव बट नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ गेम्स लाइक लीड योर नेशन ऐसे पॉलिटिक गेम्स काइंड ऑफ स्टफ
1: भाई तुम्हें थोड़ा सा तुम इतना अपग्रेडेड चल रहे हो ना थोड़ा सा चिल करो है चिलिंग चिल के लिए क्या सीन है तुम्हारा
0: हाँ
1: व्हाट इज योर चिल टाइम लुक्स लाइक व्हाट डू यू वॉच stuff you like
0: I don't like to watch TV okay. in my chill time I go down okay. I cycle around like Very about nice. 10 to 12 thingies thinking reflecting on myself.
1: What do you watch do you watch anything at all
0: yeah I do
1: what
0: if the remote is with me
1: in
0: my brothers huh
1: it happens
0: no. sometimes.
1: Good okay.
0: remote is with me my brother commands me
1: okay
0: I have to keep it or he's going to come he's going to
1: बैट लगे थे हाँ
0: या
1: ओके
0: और जो भी वही एनीथिंग इन द टीवी आई हैव टू सी इट दैट इज इट आई हैव नो ऑप्शन
1: चल इस चैनल के अंदर मैं
0: घर में बड़ा भाई हूँ फिर भी उसका ही राज चलता है
1: कितने साल का तुम्हारा छोटा भाई
0: 10
1: अच्छा ओके ठीक है अभी बैटल चलता रहेगा भाई ये तो तुम्हारा अभी तो लंबा बैटल है एंड व्हाट डू यू वॉच एनीथिंग यू लाइक आई मीन कोई सजेशन वगैरह तो तुम्हारे
2: ऑनेस्टली मैं भी जो चलता है टीवी में वही देख लेती हूँ वरना उतना कुछ नहीं
1: कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है ऐसी
2: उतना स्पेसिफिक नहीं क्योंकि जब मैं अंटिल लाइक 7th या 8th आई यूज्ड टू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस लाइक मैं पियानो में जाती थी स्केटिंग जाती थी स्विमिंग जाती थी तो उसमें सारा टाइम चला जाता था और होमवर्क भी होता था और वैसे भी लाइक जब मैं कुछ करती हूँ तो अच्छा लगता है तो जाती थी
1: तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है एडिट प्रेशर नहीं शौक के लिए सब कुछ चल रहा है ओके
0: हम जाने के पहले एक क्वेश्चन है
1: पूछो
0: डू यू रीड बुक्स
1: नो आई एम नॉट अ रीडर एट ऑल ब्रो
0: अच्छा ठीक
1: है या या वरना मैं भी साइंस और उस फील्ड में रहता बिकॉज़ आर्ट्स की फील्ड आई डोंट नो

0: How do you people take it? Because पहले होता था कि आर्ट्स की फिल्म होता है, कहाँ जा रहे हो आर्ट्स की फिल्म, क्या सीन है, you know? But gradually लोग अभी आने लगे, मास कम्युनिकेशन की तरफ भी आने लगे हैं. So हमारे में कुछ, जैसे हमारा काम थोड़ा सा अलग है ना, वी कैन कंज्यूम इधर बुक्स और वी हैव टू वॉच. लाइक तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है वॉच करना, के देखना ही देखना है. बट पीपल इन आर फील्ड, स्पेशली किड्स हू आर परसुइंग मास कम्युनिकेशन, लाइक दे हैव टू डू समथिंग.
1: एग्जैक्टली,
0: हैव टू.
2: ये बुक है, वो भी मूवी है. फॉर एग्जांपल हॉबिट बुक है, हॉबिट मूवी भी है. आधे के आधे लोग मूवी देखते हैं.
0: And then there is audio version of every book which has come up. So लोग क्या करते हैं, लोग audio books भी सुन लेते हैं कि चलो ठीक है. अब I'm one of that. मैं पढ़ता अच्छा पढ़ reader नहीं हूँ यार मैं. I'm very bad at it. Do you people read, both of you?
3: Reader मतलब like
0: I'm not an avid reader, but you read.
2: Average reader. हाँ.
3: हमारे school में competition चलता है कितने words read करते हो. Last year I read 1 million words.
0: What? Is there a competition like that?
3: Yeah, होता है, होता है.
0: Okay.
3: Like एक reading challenge का एक competition होता है. They bring like one page and then they see how many words you can read as fast as possible. Like हमारे school में होता है, CBSE से आता है वो.
0: Apparently that's a challenge.
2: नहीं, हमारे school में how many words you read at the end of the year, वही है. 1 million words, that's it.
0: Okay guys, so before we sign off, how was your experience here? कैसा लगा यहाँ पर आके, एक एक करके बता दो. कोई पहले ऐसा, अभी भैंस नहीं है कोई है ऐसे.
3: It was good, first time in a radio station, like such me, like I have come and seen like the tours. और जब आज इसके साथ आराम से बात करती थी, but like सच में आके लाइव बोलने का वो कभी नहीं एक्सपीरियंस किया.
0: चलो बढ़िया, तो मतलब.
2: और मेरा तो this is my first experience coming to radio. और बहुत सारे लोग सुनते होंगे अभी. I was shivering at first. मैं बैठा था when I said at the start of the show I'm a bit nervous. I was shivering, but when we went through I felt like a bit comfortable in that.
0: Chalo, I'm really glad that it happened and thank you so much. You guys are wonderful. This was one of the best episodes we had and lots of love to you. Now we are signing off. अपना ख्याल रखिए, अब बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
4: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें. छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से.
5: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
7: आज ही राब्ता करें
6: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
8: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
2: विद आरजे सरवर।
0: वज़ीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने रियाद में अपने भाई वज़ीर दाखला मुमलकत सऊदी अरब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से मुलाकात की। ये मुलाकात कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत कायम सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के तनाजुर में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों भाई मुल्कों के दरमियान एजेंडा में शामिल उमूर और कतर और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के अख्तिताम पर वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और सऊदी वजीर दाखला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के मिनट्स पर भी दस्तखत किए। सामईन, गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करती है और आपको ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुस्तहक भी बना सकती है। कतर ट्रैफिक लॉ आर्टिकल नंबर 81/1 के मुताबिक गलत जगहों पर गाड़ी खड़ी करना जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकता है। याद रखिए, ट्रैफिक कवायद और रोड एटिकेट की पाबंदी सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए ही नहीं बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की सलामती के लिए भी जरूरी है। अपनी गाड़ी हमेशा मुकर्ररा पार्किंग मकामात पर ही पार्क करें। रास्ते, दाखिली और खुरूजी रास्तों और ट्रैफिक के बहाव को मुतासर करने वाली जगहों पर पार्किंग से गुरेज करें। वज़ारत दाखला का कहना है कि आपकी जिम्मेदारी और कवानीन की पाबंदी सड़कों को महफूज, मुनज्जम और हर शख्स के लिए आसान बनाती है। ट्रैफिक कवायद की पाबंदी कीजिए और अपनी और दूसरों की सलामती को यकीनी बनाइए। दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखला अलेक्जेंडर डॉबरिंड से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खास तौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा भामी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और उनके

0: जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कोऑपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, अगर कोई मुलाजिम बगैर इत्तला दिए काम पर आना छोड़ दे या उसके वीजा को उस मकसद के अलावा इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके लिए वीजा जारी किया गया था, तो अब मेहतराज ऐप के जरिए चंद आसान स्टेप्स लेकर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। मेहतराज ऐप खोलें, होम पेज से सिक्योरिटी पर क्लिक करें, इसके बाद सर्च एंड फॉलो अप डिपार्टमेंट सर्विस का इंतखाब करें और रिपोर्ट की किस्म मुंतखब करें। अगर मुलाजिम ने नौकरी छोड़ दी है और काम पर हाजिर नहीं हो रहा तो लीविंग द जॉब ऑप्शन चुनें और उसका QID नंबर दर्ज करें। अगर वीजा अपनी जारीशुदा मकसद के बरक्स इस्तेमाल किया जा रहा है तो अदर ऑप्शन चुनें, वीजा नंबर दर्ज करें और अगर वर्क वीजा हो तो मुतालिका कंपनी का इंतखाब करें। तमाम दरकार मालूमात मुकम्मल करें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा होने के बाद आपको तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा जो बताएगा कि आपकी रिपोर्ट कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है। वजारत दाखिला का कहना है कि मेहतराज ऐप आपकी डिजिटल खिदमात तक आसान और तेज रसाई फराहम करती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन अहमद बिन खलीफा अलसानी ने स्पेन के अपने दौरे के दौरान स्पेन के वजीर दाखिला फर्नांडो ग्रेनेड मरलास्का गोम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूदा तआवुन का जायजा लिया गया और खास तौर पर अमनियत के शोबे में इस तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन अहमद बिन खलीफा अल्फानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप 2030 के सिक्योरिटी निजाम के हवाले से तआवुन पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सड़क सिर्फ मुकर्ररा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से क्रॉस की जाए और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी की जाए। याद रखिए, सड़क पर हिफाजत सिर्फ ड्राइवर्स की ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, सिग्नल की हरी बत्ती का इंतजार करें और गैर महफूज जगहों से सड़क क्रॉस करने से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि पैदल चलने वालों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपका ये एहतियात भरा कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकता है। कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के जेर एहतमाम 14 से 17 सितंबर 2026 तक असद क्लब के 1969 पैडल कोर्ट्स में मुनक्किद 2026 पुलिस पैडल चैंपियनशिप का अख्तिताम हो गया है। चैंपियनशिप में 90 से ज्यादा टीम्स ने शिरकत की जिनमें वजारत दाखिला, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया और कतर आर्म्ड फोर्सेस के अफराद शामिल थे। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल्फानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुतअद्दिद ऑफिसर्स भी मौजूद थे। चैंपियनशिप का मकसद फौजी और सिक्योरिटी इदारों के अफराद के दरमियान राबते और बाहमी तआवुन को मजबूत बनाना, साथ ही सेहतमंद मुकाबले और खेल की रूह को फरोग देना था। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को उनकी कामयाबियों पर इनामात और शील्ड्स देकर इज्जत से नवाजा गया। सामईन, मेहतराज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मेहतराज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें, फिर वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरख्वास्त गुजारने वाले शख्स की कौमियत यानी नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो With Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107. Dil se Desi.
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए। बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? In fact, हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर्ट हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
7: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host, Nazia. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, क्या है ये और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, क्या आज का दौर सही दौर है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए आजकल बहुत से लोग अपने सेविंग्स को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं। चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहें, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल शॉप हो या फिर रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्लॉट या घर खरीद लेने का नाम नहीं है। अगर प्लानिंग और रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी रियल एस्टेट एसेट को इस नियत से खरीदना कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े या उससे इनकम जनरेट हो। ये इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां लोग रहते हैं, यानी आपका घर हो सकता है, विला है, अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर फ्यूचर में महंगी कीमत पर सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वेयरहाउसेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से कई गुना ज्यादा होता है। एक और इन्वेस्टमेंट है लैंड इन्वेस्टमेंट। कई इन्वेस्टर्स खाली लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी लोकेशन मिल गई, सही वक्त से लैंड सही कीमत में मिल गई तो आगे चल के उसे बेच कर ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं। अब देखते ये भी है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी को ट्रेडिशनली वेल्थ बिल्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स माना जाता है। आज ली गई प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन पर है तो कुछ सालों में उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो जॉब के अलावा जनरेट होती है। वहीं प्रॉपर्टी एक टैंजिबल एसेट है। स्टॉक्स या फिर डिजिटल एसेट्स के बरक्स आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और ओन करते हैं। कई लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कंफर्टेबली समझ भी पाते हैं। वहीं वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है। कई केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंट्स भी इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है। अब समझना ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले क्या देखना चाहिए। अगर मुमकिन है तो तमाम सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझें। मार्केट स्लोडाउन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, रिसर्च नहीं करते, चीप प्राइस देखी ले लिया, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमीन, दीवार और कॉन्क्रीट खरीदने का नाम नहीं है, ये अपने फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करने का नाम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, सब्र करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जो लोग आज अकलमंदी से इन्वेस्ट करते हैं वो कल ज्यादा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस पर मैं डिटेल में भी फ्यूचर में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते हो FM 107 दिल से देसी।
3: smart money.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
0: FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki aarzu Mahabash. Is 5 minute ke safar mein hum baat karenge Qatar ki khoobsurat saqafat, riwayat aur virse ki. Yahan har rasam, har libas, har khane aur har mehman nawazi ke peeche ek pyari si kahani hoti hai. Aaiye milkar Qatar ki saqafat ko samjhein, mehsoos karein aur is virse ko agli naslon tak pahunchane ka ehd karein. Qatar ki saqafat mein majlis ko bahut khaas maqam hasil hai. ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि मुलाकात गुफ्तगु रिश्तों को मजबूत बनाने का खूबसूरत जरिया है. मजलिस में लोग एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पुरसुकून माहौल में बातचीत करते हैं. रिवायती तौर पर मजलिस घर का वो हिस्सा होता था जहां मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया जाता था. आज भी कई घरों में मजलिस के लिए अलग जगह होती है. इसका अंदाज जदीद हो सकता है लेकिन इसकी असल रूह अदब मेहमान नवाजी और अपनायत पर कायम रहती है. मजलिस में दाखिल होते वक्त सबसे पहले सलाम करना अच्छे आदाब में शामिल है. सलाम का जवाब देना और वहां मौजूद अफराद से मुस्कुराहट के साथ मिलना तवज्जो और इज्जत का इजहार है. अगर मजलिस में बुजुर्ग मौजूद हों तो उन्हें पहले सलाम करना

0: पता चलता है कि मेजबान अपने मेहमान की कदर करता है। मजलिस में कहवा और खजूर की पेशकश भी होती है। कहवा पेश करना सिर्फ एक रिवायती अमल नहीं बल्कि मेहमान से अपनायत का इजहार है। छोटे प्याले में दी जाने वाली कहवे के साथ खजूर दस्तरखान को मुकम्मल करती है। मेहमान का शुक्रिया अदा करना और पेशकश की कदर करना भी अच्छे आदाब हैं। गुफ्तगू मजलिस की जान होती है। यहाँ बात करने के साथ दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। नरमी से बात करना, दूसरों को अपनी राय का मौका देना और दरमियान में ना बात काटना महफिल को बेहतर बनाता है। अच्छे अल्फाज और पुरसुकून लहजा मजलिस के माहौल को दिलकश बनाते हैं। बुजुर्गों का तजुर्बा मजलिस में बहुत कीमती समझा जाता है। वो माजी की यादें, खानदानी कहानियां और अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। नई नस्ल जब उनकी बात तवज्जो से सुनती है तो उसे अपनी सकाफत और विरसे को समझने का मौका मिलता है। बच्चे मजलिस में रहकर समाजी आदाब सीखते हैं। वो देखते हैं कि बुजुर्गों से किस तरह बात करनी है, मेहमान का इस्तकबाल कैसे करना है और गुफ्तगु में किस तरह नरमी रखनी है। ये सीखना किसी खास दर्जगाह से ज्यादा रोजमर्रा के मुशाहदे से होता है। मजलिस में वक्त का लिहाज रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मेजबान या मेहमान की कोई मसरूफियात हो तो गुफ्तगु को मुनासिब तौर पर मुख्तसर रखना सलीके की निशानी है। इसी तरह अगर महफिल जारी हो तो बिला जरूरत किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मजलिस में हर फर्द को अपनायत का एहसास दिलाना उसके सलूक है। नए मेहमान या किसी दूसरे माहौल से आए हुए शख्स से खुशी से मिलना और उसे गुफ्तगु में शामिल करना अच्छी आदत है। इससे मेहमान को तन्हाई का एहसास नहीं होता और वो खुद को महफिल का हिस्सा समझता है। जदीद जिंदगी में मजलिस के अंदाज में तब्दीली जरूर आई है। अब कुछ मजलिस जदीद घरों के साथ बनाई जाती हैं और कुछ सकाफती या समाजी मकामात पे होती हैं। फिर भी सलाम, कहवा, खैरियत और अदब जैसी बुनियादी बातें अपने जगह पर कायम हैं। मजलिस हमें आमने सामने मिलने की अहमियत याद दिलाती है। आज जब लोग पैगामात और फोन के जरिए राबता रखते हैं तब भी एक जगह बैठकर बात करने का एक अपना सुकून होता है। आंखों से आंखें मिलाकर बात करना और सामने वाले की तवज्जो से बात सुनना रिश्तों में गर्म जोशी ला सकता है। मजलिस सिर्फ बड़े लोगों की जगह नहीं बच्चों और नौजवानों को भी इसके आदाब सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने वर्से को समझें और दूसरों से बेहतर अंदाज में पेश आ सकें। जब नई नस्ल इस रवायत को अदब के साथ आगे बढ़ाती है तो सकाफत जिंदा रहती है। आज का कल्चर मोमेंट हमें बताता है कि मजलिस कतर की सकाफत में राबते और अपनायत का मरकज है। यहाँ सलाम से मुलाकात का आगाज होता है, गुफ्तगु से दिल जुड़ते हैं, कहवे के एक प्याले से मेहमान नवाजी का पैगाम मिलता है। मजलिस की ये रिवायत अदब और मोहब्बत के साथ आज भी जिंदा है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स सेगमेंट में हम बात करेंगे फार्मूला वन के उस नौजवान सितारे की जिन्होंने सिर्फ चंद सालों में मोटर स्पोर्ट की दुनिया को हैरान कर दिया है, आंद्रिया किमी एंटोनेली। मॉडर्न ये आज के जमाने के ड्राइवर हैं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इटली के बोलोगना शहर में 25 अगस्त 2006 को पैदा होने वाला किमी एंटोनेली आज की तारीख में फॉर्मूला वन के सबसे एक्साइटिंग ड्राइवर्स में से एक है। मर्सिडीज के इस यंग स्टार ने 2025 में F1 डेब्यू किया और लुई हैमिल्टन के मर्सिडीज छोड़ने के बाद जॉर्ज रसल के साथ टीम का हिस्सा बना। लेकिन किमी की कहानी फॉर्मूला वन से काफी पहले शुरू हो गई थी। शुरुआत गो कार्टिंग से हुई। 2014 में एंटोनेली ने कार्टिंग से अपना सफर शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने यूरोप के जूनियर कॉम्पिटिशन में अपनी स्पीड और रेस क्राफ्ट का सबूत दिया। मर्सिडीज ने भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को जल्द ही पहचान लिया और 2018 में उन्हें अपने जूनियर प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। 2022 में किमी एंटोनेली ने इटालियन F4 और ADAC F4 चैंपियनशिप जीती, जबकि FIA मोटरस्पोर्ट गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद फॉर्मूला वन रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें मोटरस्पोर्ट के सबसे प्रॉमिसिंग नौजवान ड्राइवर्स में शामिल कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि गाड़ी चलाना इज अ वेरी ईजी जॉब। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने घर से कॉर्निश तक गाड़ी ड्राइव करके चलेंगे या शमाल रोड पर गाड़ी दौड़ा दिए। यू नो, एंड लोग समझते हैं कि हर ड्राइवर जो है वो फॉर्मूला वन रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है। फॉर्मूला वन रेस जो है इट्स डिफिकल्ट, वो पिनाकल ऑफ ड्राइविंग है और उसमें मैकेनिज्म काफ़ी इन्वॉल्व है। और फॉर्मूला वन के जितने भी क्वालिफिकेशन स्टेजेस हैं, जैसे मैंने अभी बताया एंटोनेली के बारे में, F4 यानी फॉर्मूला 4, फॉर्मूला वन तो टॉप लेवल पर है, उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस और

दोनेली ने ये साबित किया था अपने बचपन से ही कि he has some trademark of a good driver. सन 2023 में उन्होंने फॉर्मूला रीजनल मेडलिस्ट चैंपियनशिप में मुंबई फैल्कन्स के साथ हिस्सा लिया और फिर फॉर्मूला 2 तक पहुंच गए. फिर आया 2025 फॉर्मूला 1 का बड़ा स्टेज. किमी ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री से मर्सिडीज के लिए अपना F1 डेब्यू किया. उनकी एंट्री के साथ वो 18 साल की उम्र में फॉर्मूला 1 ग्रिड पर आए और इटालियन मोटर स्पोर्ट के नए चैप्टर की शुरुआत की. लेकिन सन 2026 ने अंतोनेली को सिर्फ एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर से चैंपियनशिप कंटेंडर बना दिया दोस्तों. और इस सीजन में किमी ने ऑस्ट्रेलिया में सेकंड प्लेस के बाद चीन में अपनी पहली फॉर्मूला 1 विक्ट्री हासिल की. इसके बाद जापान, मायामी, कनाडा और मोनाको में भी जीत दर्ज की. बेल्जियम में भी वो रेस विनर बने और फिर आया मोंजा. इटालियन ग्रैंड प्री में अंतोनेली को इंजन रिलेटेड पेनल्टी की वजह से 19 पोजीशन से रेस स्टार्ट करनी पड़ी, लेकिन होम क्राउड के सामने उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए रेस जीत ली. और इस फतेह के साथ वो 60 साल बाद इटालियन ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले इटालियन ड्राइवर बन गए. व्हाट एन अचीवमेंट. सिर्फ एक हफ्ते बाद मद्रिद में इनॉग्रल स्पैनिश ग्रैंड प्री में भी अंतोनेली ने विक्ट्री हासिल की. ये 2026 सीजन की उनकी 8वीं ग्रैंड प्री विन थी. और इस जीत के बाद वो चैंपियनशिप में जॉर्ज रसल से 81 पॉइंट्स आगे हैं. लेटेस्ट ऑफिशियल F1 फिगर्स के मुताबिक 14 ग्रैंड प्री के बाद किमी 292 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप लीडर हैं. उनकी 8 जीत और 12 पोडियम फिनिशेस हैं. किमी को अक्सर फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा है, लेकिन वो खुद कंपैरिजन से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर यकीन रखते हैं और शायद इसी वजह से उनकी कहानी इतनी खास है. 18 साल की उम्र में फॉर्मूला 1 का प्रेशर, मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस, किमी अंतोनेली ने सबको स्पीड, मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया है. दोस्तों, किमी अंतोनेली का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2026 में जिस तरह वो फॉर्मूला 1 पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं ना, उससे एक बात बिल्कुल वजह है कि मोटर स्पोर्ट की दुनिया को शायद अपना अगला बड़ा चैंपियन मिल चुका है. तो दोस्तों, ये था आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये स्पेशल सेगमेंट ऑन किमी अंतोनेली. उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा. अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें. फी अमानिल्ला.

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी। These are the sounds of the streets.

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स।
2: तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और जनरेशन टॉक का जो दूसरा एपिसोड है उसमें सभी का स्वागत है, क्योंकि आज जो है मेरा एक भाई मेरे साथ है और इनका नाम है करण। करण भाई से मैं कुछ टाइम पहले जो है हमने बातचीत शुरू करी थी। ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक एंड ये जो फेमिलैरिटी है हम दोनों को जोड़ती है, मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम बैक करण भाई, वेलकम बैक इसलिए करूँ कि भाई कैसे हैं करण भाई?
3: ठीक है कबीर भाई, पहले तो मैं सभी को हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ 107 लिसनर्स को। और मेरा नाम करण लिंग लेने और मैं नेपाल से हूँ करण भाई।
2: अच्छा, नेपाल से कब आना हुआ कतर करण भाई?
3: मैं सबसे पहले बार तो 2017 में आया था कबीर भाई, अभी हाल चाल ये कंपनी में 2 साल हो रहा है अभी।
2: अच्छा, तो इससे पहले आप कहाँ थे? हमने तो कभी आपके मैसेज देखे नहीं, मुझे अब जाके दिखे आपके मैसेज इतने सालों से, कहाँ से कहाँ थे?
3: अभी मेरा पहला प्रोफेशनल अलग था कबीर भाई, इसलिए अभी प्रोफेशनल ड्राइविंग का है, इसलिए अभी थोड़ा रोड में लॉन्ग ट्रिप जाना पड़ता है, इसलिए अभी रोड रेडियो सुनते

0: मैं तो आपका फैन जैसा हो गया, इसलिए आपको कांटेक्ट किया।
1: बहुत प्यार कर रहा हूं, बहुत प्यार, थैंक यू।
0: हां जी, मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं था कभी भाई, सच्ची बताऊं तो आपने देखा भी होगा मेरा जीरो फॉलोअर, जीरो सब्स पूरा।
1: अच्छी बात यह कि आपने इस बारे में जिक्र किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो हैं, हम दोनों हम उम्री हैं, थर्टीज में ही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं करण भाई के जनरेशन जो है वो दोनों से हमारा रब्ता है ना, जेन जी से भी बात हो रही है हमारी और हम खुद मिलेनियल्स हैं, तो अभी नेपाल में क्या सिचुएशन है? नेपाल में भी जेन जी थोड़े तेज हो गए, आगे निकल गए, या वहाँ माहौल थोड़ा सा अलग है? क्या कहना चाहेंगे वहाँ की जेन जी जनता के बारे में?
0: नेपाल का जेन जी का सभी तरफ तो वैसा ही होगा कबीर भाई, लगता है मुझे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अभी पहले जैसा था हमारा टाइम पे, अभी वैसा नहीं है। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं अभी डिजिटल साइड, इसको अभी लैंड लाइन जो रहता है।
1: तो मैं जैसे आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि आपके कोई फॉलोअर्स वगैरह कुछ नहीं रखे हुए आपने, जो कि बड़ी कमाल की बात है, ऐसे ऐसे लोग दिखते भी नहीं है आज की तारीख में, बहुत ही रेयर ब्रीड है ये। तो इतने टाइम से सोचा नहीं, ख्याल नहीं आया, और अचानक से क्यों किया ऐसा? मतलब पहले क्यों नहीं था और अब क्यों किया?
0: ऐसा हुआ था कबीर भाई, मैं पहले पूरा सोशल मीडिया जितना भी था एप्लीकेशन पूरा यूज कर रहा था मेरे पहले, लेकिन अभी बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सिर पे, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके सब मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, ऐसे करके सब थोड़ा सब चीजों से थोड़ा दूर रहना अच्छा लगा।
1: और अचानक से क्यों वापस आ गए?
0: ये तो आपको फॉलो करने के लिए कभी भाई, सच बताऊँ तो अभी मेरा फ्रेंड्स कुछ भी कोई भी नहीं है ना, तो फिर अभी ऑनलाइन फ्रेंड में अभी आप थोड़ा अभी मिले तो नहीं है, लेकिन जो बात करने का आपका तरीका है, जो हमारा बीच में बात होता है, मैसेज आप पढ़ते हो, रिप्लाई करते हो, तो वो पॉजिटिविटी जो है वो थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम ओपन किया।
1: अरे बहुत प्यार करण भाई, बहुत प्यार करण भाई को। करण भाई, अच्छा अब जरा ये बताएं कि आप आज की जनरेशन से क्या सीखते हैं, क्या कैसी लगती है आपको जेन जी जनरेशन जो बहुत रफ्तार से दौड़ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: ये अभी कबीर भाई, आज का जनरेशन बहुत ज्यादा ही रफ्तार से दौड़ रही है, थोड़ा हौसला होना चाहिए बोलता हूँ मैं तो।
1: पर इनकी अच्छी बात क्या लगती है आपको? कुछ पॉजिटिव साइड भी तो होगी ना इनकी?
0: अच्छी बात ये है कि हमसे थोड़ा तेज है सोचने में, और वो लोग का यूनिटी अच्छा रहता है, अभी कुछ करने के लिए वो लोग मान लिए तो अभी कुछ भी कर सकते है। अभी जैसे कि रिसेंटली नेपाल में हुआ पहली बार, वैसे एग्जाम्पल में
1: ओके।
0: लेकिन अभी बुरी बात ऐसा भी है कि

0: पहला का जैसा अभी नहीं रहा, जैसे कि अभी पहले हमारा गांव पे लैंडलाइन रहता था, अभी लैंडलाइन मतलब टेलीफोन जो रहता है, अभी उसमें एक बार 10-5 मिनट बात करने के लिए महीनों हफ्तों तक रुकना पड़ता था, अभी वो नहीं है, अभी क्योंकि फोन पे सब हो जाता है ना।
1: पर आप पे इस जनरेशन का कोई असर पड़ा है? क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि यार अभी जो जनरेशन है उसके पास टाइम की बड़ी कमी है, और उसे देखते देखते हमें भी ऐसा हो गया कि हमसे भी ज्यादा देर तक कोई चीज देखी नहीं जाती, हम भी भागने लगते हैं। तो आप पे भी ये असर है कि आपके भी अटेंशन जो देने का टाइम है वो कम हो गया?
0: टेंशन तो पता नहीं कभी भाई, वो जनरेशन गैप के से ज्यादा तो मुझे लगता है अभी कौन सा सिचुएशन में है उसी से वो होता है।
1: आपके भाई बहन कितने? अच्छा बताओ, भाई बहन कितने आपके? भाई बहन है
0: मेरा भाई एक भाई है और बहन बड़ी बहन एक है।
1: कितने आप सबसे छोटे हैं? क्या क्या एज है, उम्र क्या है उन दोनों की?
0: मुझसे 2-3 साल बड़ी है मेरा बड़ी बहन।
1: ओके।
0: और मेरा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा ही छोटा है, वो लगभग 7-8 साल का ही छोटा होगा।
1: तो भाई 7-8 साल का है तो फिर तो वो एक तरीके से जैन अल्फा ही कहते हैं ना उन्हें, जैन अल्फा वो तो घर पे अभी तो उसी का राज चल रहा होगा ना। वो उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ, कैसा है वो घर पे, कैसा है मतलब आप लोगों से कितना अलग है वो?
0: वो अभी दूसरे के साथ को तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा है वो। मैं कुछ भी बोलूं वो नहीं, कभी नहीं बोलता वो। अभी मैं कुछ काम लगाएगा उसको तो फिर ठीक है करके वो सब काम करके देता है।
1: अच्छा, तो आप क्योंकि अभी ड्राइविंग की लाइन में है, आपका कितना सामना होता है जेन जी से? सफर जो आप करते हैं इतना, तो मिलते होंगे ना आपको जेन जी और ये मिलेनियल दोनों ही मिलते होंगे, तो कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस?
0: अभी तक तो अच्छा भी है बुरा भी है। अभी बहुत सा इंसिडेंट हुआ है इधर कभी, अभी कतर में ही बोलूं भी, कोई बच्चे लोग गाड़ी के अंदर आके सीट के ऊपर नाचने लगते है, कोई गाड़ी के ऊपर थूक के भी जाता है, ऐसा हुआ था कोई कोई एरिया पे ऐसा हुआ है। लेकिन पता नहीं वो क्या है, वो बच्चे लोग अभी पता नहीं किधर से सीख रहे हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा अभी वो लोग का नेगेटिव
1: ये रील का मामला है, रील वगैरह से सीख रहे हैं सबके सब अभी। उसका अच्छा फायदा भी है, बुरा फायदा भी है। आपका कितना रहता है मतलब कितनी रीलें देखते हैं इंटरनेट पे, कितने टाइम तक रहते हैं आप डेली?
0: मैं इंटरनेट में भाई गेम खेलता हूँ, मैं भी आपके जैसा कवर भाई।
1: अच्छा।
0: मैं वो फुटबॉल वाला गेम या तो पबजी वाला गेम खेलता हूँ, बाकी मेरा ये रील वील देखना तो कभी कभी ये यूट्यूब में देख लेता हूँ कवर भाई, क्योंकि मेरे पास अभी टिकटॉक भी नहीं है मेरे पास, सच बताऊँ तो।
1: अच्छा, वो भी
0: अभी फेसबुक भी नहीं है, अभी रिसेंटली यही ओपन किया है इंस्टाग्राम।
1: अरे भाई मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मिलेनियल मिली आप तो मतलब 70s के बने हुए हैं, अंदर की जो आत्मा है वो 70s 80s वाली है, कुछ यूज ही नहीं करना भाई को। अच्छा, तो नेपाल में तो दोस्त होंगे ना जो सब कुछ यूज करते होंगे, सारे सोशल मीडिया पे होंगे, हैं वहाँ पे दोस्त?
0: है, बहुत दोस्त लोग हैं, लेकिन अभी किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है कभी।
1: किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं, क्यों मेरा भाई ऐसा क्यों?
0: किसी के साथ भी अभी थोड़ा ज्यादा मनी माइंडेड हो गया है कभी रोहित, खिला बात बताऊँ तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गए, अभी पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वाला सीन हो गया अभी अक्सर।
1: तो अगर मैं पूछूं आज की तारीख में एक मिलेनियल होने के नाते करण भाई के सबसे करीब कौन है, कौन है आपके करीब सबसे ज्यादा?
0: अभी के लिए तो मेरा वाइफ है सबसे।
1: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है अगर बुरा ना माने तो पूछूं मैं?
0: एज डिफरेंस है थोड़ा, 7-8 साल ऐसा।
1: अच्छा, तो फर्क पड़ता है इस चीज से, क्या आप मानते हैं कि इस एज डिफरेंस से आपको कितना फर्क पड़ा है?
0: इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी छोटा है तो बच्चों की तरह वो सहलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बात पे, तो वो सीन होता रहता है।
1: तो क्या सीखा आपने, क्योंकि आपसे अगर 7-8 साल का फर्क है तो फिर तो ये अच्छा खासा फर्क है, तो क्या सीखा आपने उनके गुस्से के अलावा?
0: मैंने बहुत कुछ सीखा कभी भाई मेरा वाइफ से, वो एज में कम है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है उसका। अभी वो छोटे उम्र से ही स्कूल पढ़ाती थी, अभी छोटे उम्र से ही डांसिंग सिखाती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो फिर मैंने उससे बहुत ज्यादा सीखा। अभी मैं पहले इधर आने से पहले, शादी से पहले नॉर्मल लड़के लोग का जैसा था, घूमना, इधर जाना उधर जाना, सोशल मीडिया इधर उधर, अभी उसी के बाद से अभी मैं थोड़ा लाइन पे आए होंगे।
1: अच्छा, लाइन पे वो लाइन जबकि आपसे छोटी है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई काफी अच्छी बात है। तो वो भी एक तरीके से जेंजिस के करीब ही हो गई क्योंकि उनका जब आपसे छोटी है तो 7-8 साल, तो इट्स गुड पीरियड ऑफ टाइम। तो करण भाई, आप जो है रैप वगैरह भी करते हैं और आपको म्यूजिक में भी बड़ा शौक है, ऐसा सुना था मैंने, क्या ही सच है?
0: हाँ जी, सब सही है। मैंने अभी जब मैं पहले बार कतर आया था 2017 में, तब फिर मेरा प्रोफेशन सिक्योरिटी गार्ड का था कबीर भाई शुरू में। तब फिर सिक्योरिटी गार्ड में अभी एक रूम होता है सिक्योरिटी गार्ड का, अभी उधर बैठा रहना होता है दिन भर। तो जब मेरा ड्यूटी शुरू होता था तो ऑफिस क्लोज हो जाता था, तो फिर मैं अकेला रहता था। तब फिर मैं थोड़ा बीट्स प्ले करके कुछ लिखने का ट्राई करता था, तो फिर इतने इतने में फ्लो में निकल गया थोड़ा। तो फिर लिख के करके आधा कंप्लीट करके मैंने रखा था। फिर मैं 2019 में नेपाल गया, फिर आधा जो बाकी था वो दूसरा भाई ने लिखा था। अभी वो दोनों पार्ट में अकेला नहीं गा सकता था, इसलिए दूसरा रैपर चाहिए था। तो फिर मेरा गांव का ही एक भाई है, वो भी रैप करता था, उसका नाम अभिषेक AK बैक्सो करके।
1: ओके।
0: और उसने तो 7-8 म्यूजिक भी बनाया है ये जोश ने अभी।
1: अरे सही है, जोश अच्छा है, जोश अच्छा है, काफी अच्छा है भाई ने।
0: हाँ जी, वो भाई ने हाफ पार्ट उसने कम्प्लीट किया है, हाफ पार्ट मैंने कम्प्लीट किया है सर।
1: हाँ ओके। तो म्यूजिक का टेस्ट भी बड़ा फर्क हो जाता है ना, क्योंकि आजकल की जनरेशन है उसका म्यूजिक का टेस्ट थोड़ा अलग है, आपका म्यूजिक का टेस्ट अलग है। तो क्या आप आज के जेन जी वाले गाने भी सुनते हैं या फिर अभी ओल्ड स्कूल चल रहा है, पुराने गाने सुनते हैं, क्या सीन है आपका?
0: मैं आजकल नया वाला गाना भी सुनता हूँ कबीर भाई। अब सीधा बात बताऊँ तो ये जो स्लैंग वर्ड यूज होता है ना वो इतना नहीं सुनता मैं, क्योंकि वो बाहर प्ले करने में गुनगुनाने में भी वो तो शर्म होगा ना, किसी के आगे बैठ के अभी वो गाली दे रहा है जैसा वैसा लगता है ना, इसलिए वैसा वाला गाना नहीं सुनता है। लेकिन जो मीनिंगफुल रहता है, जो अच्छा उससे, तो फिर वैसा वाला गाना सुनता हूँ, नया वाला भी।
1: अच्छा, तो लिरिक्स चाहिए, मतलब आपको लिरिक्स होने चाहिए, यही तो मिलेनियल्स गाए है, हमको लिरिक्स चाहिए, म्यूजिक पे थंपिंग नहीं करना। अच्छा, इस बात पे कुछ रैप की लाइंस याद है, गा पाओगे तो बता दो।
0: मेरी वाला की दूसरा वाला कबीर भाई?
1: नहीं, आपका मेरे भाई, क्योंकि देखो नेपाली जनता भी आपको सुन रही होगी अभी, तो कुछ भी आपके एक दो लाइन सुना दो, एक दो वर्सेस सुना दो, एक ही वर्स सुना दो।
0: मेरा गाना एक एक बताए। आफ्नो कलम बोकी आफ्नो बारे लेख्न सोच्दैछु, एक्लै बसी आज अतीत बारे सोच्दैछु, गल्ती थियो मेरो दुःख पीडा भोग्दैछु, पढ्ने लेख्ने उमेरमा गाँजा तान्दै हिँडियो, स्वार्थी संसारमा आफ्नो पराई पनि चिनियो, कुटपिट झगडा कति हो कति, डर भुल्ने शब्द मनमा थिएन एक रति, ओरिपोरी सबैजना मेरो ज्यान दिने साथी, बादलमाथि सबैसँगै उने गर्थ्यौँ हामी, समेट्यो फरक तर एउटै हो कहानी, सोच्नुपर्छ भविष्य यस्तो हुनुहुन्न हामी, सबै साथी भन्छन् भोलिबाट छोड दिन्छु, गल्ती बाटो मेरो सहीतिर मोड दिन्छु, तेरो लागि साथी मर्नु परे मर दिन्छु, किनी मना बोरु गाजा तलाई मर दिन्छु, आज अन्तिम भोलिबाट खानुहुन्न गाजा भन्ने चिज म त छुँदा पनि छुन्न।
1: अरे भाई भाई, ए बो भाई, फील तो है, वाइब तो है, तालियां भाई के लिए यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करण भाई, क्या किस बारे में रैप किया आपने, क्या क्या थीम क्या थी है?
0: ये इसका क्या है कि अभी जब मैं राइटिंग करने के लिए बैठा था तो हाथ में पेन था, तो उसी से शुरू किया, हाथ में कलम बोकी यानी कि हाथ में पेन लेके कुछ अपने बारे लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अपना पास्ट बारे सोच रहा हूँ। तो फिर मैंने इतना गलती किया उसके वजह से मैं दुख और पीड़ा भी भोग रहा हूँ ऐसा वाला। और फिर ये स्वार्थी संसार ना पराई पराई पनी चिनियो, मतलब कि स्वार्थी ये दुनिया पे अपना कौन पराई कौन वो भी मैं पहचानने आ गया ऐसा वाला।
1: लगता है करण भाई बहुत दुख खाए बैठे हो कहीं ना कहीं से, ये बात निकल के सामने आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भाई।
0: थोड़ा थोड़ा वो भी है कबीर भाई, लेकिन थोड़ा 75% ज्यादा दूसरों को देख के लिखा है मैंने। मैं क्योंकि अच्छा। मेरा फ्रेंड सर्कल पहला ऐसा ही था ना।
1: अच्छा।
0: वो जो स्मोकिंग करते थे ऐसा वैसा, इसलिए मैं अभी वो सब लोग से दूर होने का कारण ही है कबीर भाई।
1: ओके ठीक है, सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा, बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks, Generation Talks।
1: अच्छा, आपको क्या लगता है करण भाई, मैं आपसे अगर पूछूं कि दोस्ती में बड़ा फर्क आ गया है ना, पहले की दोस्ती में कुछ अलग बातें थी, आज की दोस्ती में कुछ अलग बातें, आपको क्या फर्क नजर आता है आजकल?
0: सर सच्ची बात बताऊं तो कबीर भाई अभी मेरा दोस्त ही नहीं है।
1: नहीं आपको तो नहीं, पर आपको फर्क क्या नजर आता है ऐसे? आपने तो, आपके पास तो चलो रीजन है कि दोस्त क्यों नहीं है, पर आपको क्या फर्क लगता है?
0: फर्क तो अभी यही है, आप कौन सा लाइन पे चलते हो वही लाइन पे आपको मिल जाता है ऐसा वाला।
1: अच्छा, मतलब सेम

0: चीजें होनी चाहिए तभी दोस्ती हो सकती है।
1: दो पाथ में चल रहे हो आप लोग तो फिर वही मिलता है, जो बोते वही मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना वैसे टाइप का।
0: करण भाई मेरा सवाल ये नहीं था, मैं ये जानना चाह रहा था

0: अभी अपना लिए फायदा क्या है, इसको दोस्त बना लिया तो वो देखते हैं ना ज्यादा।
1: अभी दोस्ती थोड़ी तराजू में तोली जा रही है कि ये मेरे कितने काम आ सकता है, आ सकती है। पहले ऐसा नहीं था,
0: पहले ऐसा नहीं था, अभी ये कड़वा लगता है, लेकिन साथ बात से ही है कभी कभी।
1: अच्छा ओके, तो आपका पैगाम क्या होगा जेंजीज के लिए? अच्छा मतलब एक एडवाइस अगर आप देना चाहें तो क्या एडवाइस देंगे?
0: एडवाइस तो अभी डिसिप्लिन ले रहा हो सबसे बड़ी बात यही है।
1: ओके,
0: डिसिप्लिन ले रहे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अभी डिसिप्लिन जैसे कि हेल्थ को लेके जिम ज्वाइन किया, रनिंग मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज किया तो हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। डिसिप्लिन में रहोगे तो गलत बात नहीं बोल सकते, मुंह से गलत बात नहीं निकलेगा। डिसिप्लिन में रहोगे तो अच्छा दोस्त लोग बनेगा जो खुद डिसिप्लिन में।
1: Okay. और करण भाई चलो यार ये तो बात हो गई, अब मैं क्योंकि जानना चाहता हूँ कि आपको कुरेदना बड़ा मुश्किल है, तो करण भाई बचपना आपका कैसा था, आप कैसे बच्चे थे? अभी तो आपने बहुत डिसिप्लिन की बात कर ली, अपना बताओ यार कैसे थे बचपन में आप?
0: बचपन में गुस्से वाला था कभी भाई, तो बताऊँ तो बचपन में नहीं, अभी रिसेंटली मेरा वाइफ के जब मेरा शादी हुआ तब तक ये गुस्सा वाला था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कोई अगर कुछ गलत शब्द बोल दिया मुझे पसंद नहीं है तो सीधा जाके उसको मार दे।
1: अरे भाई मतलब शादी
0: लेकिन अभी
1: ने बदल
0: चेंज
1: दिया।
0: हो गए, हाँ जी अभी चेंज हो गए, इसलिए वो जो फेस करके आया हूँ मैं अभी यहाँ तक, उसका और इसका क्या फर्क है वही देख के सीख के अभी मैं ऐसा करो करके बोल रहा हूँ।
1: हाँ ओके, हाँ तो वो तो आपको तजुर्बा हो गया ना, अभी तो सब कुछ हो गया, चलो ठीक है भाई, लेकिन तुमको अपडेटेड रहना पड़ेगा भाई, मतलब इतना पीछे नहीं रहने का। कोई बात नहीं अगर उस पे किसी से बात नहीं कर रहे वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कम से कम होना तो चाहिए यार, तुम्हारा तो बनता है होना मेरे भाई,
0: इसीलिए तो 107 सुन रहा हूं कबीर भाई को अपडेटेड करने के लिए।
1: क्या बात है, बीच भाई ने प्रमोशन मार दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा करण भाई, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि जयंती की बड़ी अच्छी बात है, वो लोग हर चीज में है ना, हर चीज में एक्टिव रहते हैं, एंड आजकल तो कुकिंग को लेकर भी छोटी छोटी बात हो तो दे आर वेरी फॉरवर्ड इनटू इट और बहुत अच्छे से उसको क्राफ्ट कर लेते हैं। आपको खाना बनाना था, मतलब हमारे टाइम पे कुछ ना फोकस नहीं कर रहे थे लोग।
0: आता है कभी कभी, मुझे पहले तो नहीं आता था ये खाना बनाना भी, मेरा वॉइस नहीं सिखाया मुझे।
1: अरे भैया यार क्या बात है यार, मतलब बहुत ही माशाल्लाह मुकम्मल शादी करी है भाई ने।
0: मेरा वाइफ ने मुझे सब कुछ देखा है, खाना बनाना, सब्जी बनाना। पहले मैं खाना बनाता था लेकिन गल जाता था, सब्जी बनाता था लेकिन नमक ज्यादा ऐसा ऐसा होता था। वो कितना उसमें नमक डालना है, कितना टाइम पे मसाला डालना है, वो ऐसा नहीं मालूम था मुझे अभी, लेकिन आता है। अभी मैं अकेला खाना बना के खाता हूँ, अभी पूरे लोग इधर माछ मछली खाते है ना नॉन वेज है, इसलिए अभी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अभी मेरे साथ वो नहीं होता, नहीं मिलता।
1: मतलब बीवी ने बदल दिया तुमको पूरा है, पूरा का पूरा, मतलब वाइफ के आदि चेंज हो गए, हृदय परिवर्तन नहीं हर किस्म का परिवर्तन हो गया तुम्हारे अंदर।
0: अच्छा वाला परिवर्तन है, लेकिन
1: भाई खुश रहो यार, तुम्हें जोड़ी सलामत रहे, मैं तो ये दुआ करता हूँ करण भाई, जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। अच्छा कितनी आदतें आप दोनों की मिलती है, क्योंकि आपके तो घर के अंदर ही, क्योंकि आपकी शादी का जो आप जिस तरह आपने सिनारियो बताया है अपने आप में ये जेन ज़ी और मिलेनियल चल रहा है घर के अंदर ही, तो आपने क्या कुछ अभी सीखा है ये खाना वाना बनाने के अलावा, किरदार के तौर पे, कैरेक्टर के तौर पे आप में क्या बदलाव आया? गुस्सा गुस्सा हटा दो, और क्या चीज सीखी उनसे?
0: सबसे ज्यादा तो घूमना होता है कभी भाई, उसके बाद मेरा एक साथ घूमने निकल जाते हैं कभी भी किधर भी, रात को 2 बजे हो गया
1: तो पहले नहीं निकलते थे?
0: पहले मैं निकलता था लेकिन अभी पहले बहुत लोग के साथ, लेकिन वो यूज सुन नहीं रहता था वो जो घूमने का इधर उधर जाने का। अभी का जो है अभी दोनों एक साथ है ना, इसलिए दोस्त लोग के साथ घूमना और अपना फैमिली के साथ घूमना थोड़ा।
1: और क्या मतलब भाभी से परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए या फिर निकल जाते हो कभी कभार अकेले भी?
0: अकेले में नहीं निकलता कभी कभार, पहले पहले निकलने का मन लगता था जब आदत नहीं था, लेकिन जब समझ गया कि बाहर का दुनिया कैसा है, कौन कैसा है इधर, अभी होता है ना थोड़ा, तो फिर वो देख के सीख के अभी जो है उसी में खुश रहने का अभी आदत हो गया।
1: यार कतई पंकज उदास हो गए हो यार ऐसे क्या यार करण भाई हिप हॉप कर रहे हो दूसरी तरफ, थोड़ी सी ये एक अलग साइड में देख रहा हूँ आज करण भाई की। देखो हर किसी का ना एक होता है ना, अगर जैसे एज डिफरेंस हो या ना हो, बट एवरीबडी लाइक वांट्स टू गो आउट, वो तो चलो ठीक है, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं कुछ लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप तो भाई एकदम डेडिकेटेड हस्बैंड है माशाल्लाह, इस बात की तारीफ तो भाई करनी पड़ेगी, एक एक चीज का क्रेडिट भाई ने सीधा वाइफ को दिया है। वेरी गुड यार, क्या बात है करण भाई। कितना टाइम हो गया शादी को?
0: शादी को अभी 7 साल।

0: हो गया था भाई।
1: 7 साल हो चुके हैं?
0: हाँ जी
1: भाई, उसके बाद भी उनका तारीफ कर रहा है। मजस किडिंग यार, अच्छी बात है माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी आपकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो शादी का सिलसिला है, आज की तारीख में जो शादियों का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया, राइट? लोग अभी थोड़ा सा जेंजीज कह रहे हैं भाई, पहले लेट मी बिल्ड माई करियर और फिर मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी। आपने किस उम्र में करी थी और आप क्या मानते हैं कि कितनी जल्दी, आज की तारीख के हिसाब से बताना, आज की तारीख में कितनी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, कितने टाइम में होनी चाहिए?
0: अभी लड़की के एज के हिसाब से कम 20 रहना चाहिए, लड़का का 25 से 27 ऐसा रहेगा तो अच्छा है। अभी का अभी अर्ली मैरिज भी अच्छा नहीं है कभी भाई, क्योंकि वो लोग का थोड़ा टर्म नहीं मिलता ना।
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर ऐसा ही लगता है। मेरा तो ठीक ठाक टाइम पे हुआ था, जो टाइम पे होना चाहिए वही टाइम पे हो गया था।
1: तो यार मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि आपने बोला कि 20 साल कुछ ज्यादा कम नहीं, मतलब लड़की के लिए और लड़की के लिए, चलो 25-27 समझ में आता है, 20 आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है भाई, हर जगह अप्लाई होगा नहीं। आपको नहीं लगता?
0: ओ बस ऐसा होगा तो अच्छा है करके मैं बोला, लेकिन आप भी आप जो लड़का और लड़की का दोनों का एक आपस में वो हो गया, मन मिल गया तो फिर कभी भी कर सकते हो।
1: अच्छा,
0: लेकिन रहना चाहिए पॉजिटिव वो, ये नहीं कि आज गर्लफ्रेंड बना लिया, कल शादी कर दिया, परसों छोड़ दिया, ऐसा वाला सीन।
1: यार क्या बात है यार, मतलब मैंने तो ओल्ड स्कूल बंदा ढूंढ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कतई ओल्ड स्कूल इंसान है मेरे साथ कॉल पे। अच्छा करण भाई, ये भी बताओ यार, क्योंकि आप अपने बच्चों को किस तरीके से उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें क्या अपने वो 90s के हिसाब से या आज के जमाने के साथ साथ चलना चाहते हैं, या उन्हें थोड़ा ओल्ड स्कूल रखना चाहते हैं कि भाई देखो जमाना चलता रहेगा, तुम यार ऐसे रहो, कैसे चलाना चाहते हैं उनको?
0: अभी पहली बात तो कभी मेरा बच्चा लोग नहीं है अभी,
1: नहीं कभी इंशाल्लाह जब भी हो।
0: हाँ कभी, अभी जब हो गए तो फिर मैं चाहता हूँ कि अभी वो लोग को जो करना मन लगे सही लगे, घूमना खाना पीना इधर उधर सब वो लोग करे, लेकिन उसमें बीच बीच में गाइडेंस डालता रहूंगा मैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये गलत है ऐसा करके।
1: अच्छा ठीक है। और करण भाई, मैं अक्सर पूछता हूँ कि आज सब कुछ सीखना पड़ता है, मतलब एक एक चीज़ नई नई आ गई है मार्केट में और कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, और उसमें से एक टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं तो दिक्कत होती है। चलो आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन आप AI वे आई यूज़ करते हो या नहीं यूज़ करते हो बिल्कुल भी?
0: AI तो ये जेमिनी वाला AI
1: यूज करते हैं,
0: जो मेरा फोन में ही था। बस बताऊं तो आपने जब मैसेज किया था मुझे, भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम आ रहा है कुछ करते हैं, ऐसा रिकॉर्डिंग करते हैं करके आपने जब बोला, उस दिन से मैं AI में ढूंढ रहा हूँ कि मुझे इनविटेशन आया है कबीर भाई ने ऐसे ऐसे करके 107 से, अभी उधर पे टॉपिक ये है, अब कैसे बात करना है, क्या बात करना है, वो मैं ढूंढ रहा था उधर पे AI पे, लेकिन नहीं मिल रहा था, वो बस दिखा रहा था ट्रेडिशनल एंड कुछ ये और कुछ, वो मैं उसको जोड़ ही नहीं पाया कैसे बात करते हैं।
1: पर अच्छा है भाई, आप कोशिश कर रहे हैं, पता करण भाई मैं यही कहूंगा, और आपकी मेरी एज के जितने भी लोग हैं, हमें इस चीज से बिल्कुल भी शाये हुए नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमें सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजें भी बड़ी जरूरी हैं, आगे जाके हमारे काम आएंगे, और आगे आगे चलने के लिए ये सारी की सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा करण भाई, जो हमारी जनरेशन है उनको क्या कहेंगे, जो आपके हम उम्र हैं, जो सेम एज के हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या बोलना चाहेंगे?
0: हमारा उम्र वालों को अभी सबसे इम्पोर्टेंट अपना फैमिली को दो पहले, अभी पैसा का इधर उधर नहीं हो रहा हूँ मैं, इधर पे बहुत लोग तो देखता हूँ कोई वो थोड़ा कंट्रोल करके नहीं बैठेगा तो इधर पे ऐसा है कि दलदल होता है ना, जो गीला मट्टी उसमें फंसा हुआ इंसान जैसा बन जाएगा, तो वही बोलता हूँ मैं तो।
1: अच्छा।
0: थोड़ा डिसिप्लिन ले लेके जो कमाया उसको बता के उसको कुछ काम में लगाने के लिए।
1: आज के जमाने में करण भाई सेविंग्स करना जरूरी है या कमाओ उड़ाओ वैसा वाला सिस्टम है आपका, आपका कैसा सिस्टम है?
0: मेरे हिसाब से तो कभी भाई मैं जो कमाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, वो COVID-19 के जमाने का लोन भी है मेरा अभी तक, तो उसको पे कर रहा हूँ, हाफ फैमिली को दे रहा हूँ, और बाकी जो रहा है इधर मैं थोड़ा खर्च करके थोड़ा सेविंग और थोड़ा शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ कभी भाई।
1: अरे भाई यार, मतलब काफ़ी मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू करण भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने जाना है, और आई थिंक बहुत सारे नेपाली भाइयों ने सुना होगा, आपके अपने कम्युनिटी वालों ने सुना है, तो एक अलग साइड देखने को मिली, क्योंकि मुझे लग रहा था करण भाई जो है काफी आज का मतलब एकदम हिप हॉप लौंडा है, लेकिन भाई कहता ही ऑपोजिट, भाई कहता ही ऑपोजिट, भाई अपना एकदम ओल्ड स्कूल सोल जो है भाई की ओल्ड स्कूल है, भले ही मिलेनियल है, तो ये एक अलग साइड देखने को मुझे मिली है। अच्छा करण भाई, घर पे आप मम्मी पापा में से किसके ज्यादा करीब रहे हैं भाई बहनों के अलावा? अभी तो खैर माशाल्लाह शादी हो चुकी है,
0: मेरा थोड़ा ज्यादा करीब तो मैं मेरा बाबा से हूँ।
1: अच्छा बाबा से ज्यादा करीब, बड़ी हैरानी है मुझे, क्योंकि लड़के अक्सर माओ के ज्यादा करीब होते हैं, ऐसा क्यों भाई? ये बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है,
0: पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही है कभी कभी मेरा।
1: अच्छा
0: कुछ भी काम हो गया तो अभी फादर ही हेल्प करते थे, अभी किधर भी जाना हो तो लेके जाते थे, ऐसा चिंता में इसीलिए होगा शायद। मम तो बस घर पे कुकिंग इधर उधर ज्यादा काम करती थी, लेकिन इतना पोज वाला वो सीन नहीं होता।
1: ओके, ये पहली मर्तबा किसी ने ऐसा रिप्लाई दिया, मैं बड़ा हैरान हूँ भाई इस बात पे, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा करण भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये हर किसी से पूछ रहा हूँ मैं, इस शो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके हिसाब से जो पॉकेट मनी वाला सिस्टम है, चलो नेपाल के हिसाब से बताओ मुझे, नेपाल में एक 16 साल के बच्चे को कितना पॉकेट मनी मिलना चाहिए, ये बताओ।
0: पॉकेट मनी तो मालूम नहीं, ये तो मैंने क्योंकि मैंने पॉकेट मनी तो नहीं मिला मेरे को।
1: अरे हमें तो हमें भी नहीं मिला भाई, हमें भी नहीं मिला, लेकिन आज के जमाने की डिमांड है ना, तो अब ऐसे ही बता दो ना कुछ भी मन हो, मतलब इंशाल्लाह जब आपके बच्चे होंगे तो आपसे बोलेंगे कि अब्बा बताओ यार कितने दोगे महीने के, तो कितने महीने के मिलने चाहिए बच्चे को, 16 साल के बच्चे को नेपाल में?
0: मैं तो बोलता हूँ पॉकेट मनी नहीं देना चाहिए, थोड़ा टाइम लगा के डिसिप्लिन रखना सिखा के फिर वो लोग को दे दिए गए तो पैसा का इतना जरूरी भी नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग को ओपन ऐसा वो लोग हाथ में कुछ भी कर करके ऐसे पैसे दे दिए तो वो लोग गलत चीज में लग जाते हैं।
1: अच्छा तो पैसे के बारे में सिखाओगे कैसे किसी बच्चे को, कब जाके आपको लगता है कि कौन सी एज में किसी को पैसे के बारे में सिखाना चाहिए?
0: पैसे का चीज ऐसा है कभी भाई, मैंने तो खुद अपने आप सीख लिया, वो भी सीख लेगा लगता है।
1: अच्छा मतलब दुनिया के भरोसे छोड़ रखा है आपने, अपने आप देख लेगा भाई।
0: हाँ, मैंने तो खुद सीख लिया कभी भाई, मैं एक टाइम पे जितना भी पैसा था मैं पूरा स्पेंड करता था, कभी टैक्सी में घूमने चला जाता था, कभी ऐसा था मेरा पहले, अभी वो सिचुएशन ऐसा आ गया कि अभी तने सिखा दिया और मैं कौन हूँ करके पैसा ने खुद सिखा दिया, अगर मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझे नहीं बताएगा, ऐसा वाला हो गया।
1: अब भाई ने एंड में लाइन दे दी भाई, क्लाइमेटिक लाइन। और ठीक है आखिरी में करण भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कतर के लिए कुछ बोलें, कतर में हैं आप इतने सालों से माशाल्लाह, 2017 से आए हुए हैं, तो क्या पैगाम है आपका कतर के लिए, कतर में रह रहे आप अपने नेपाली भाइयों के लिए क्या मैसेज है आपका?
0: कतर में क्या बोलूं भाई, अच्छा है, दोनों ही चाहिए, अच्छा भी है बुरा भी है।
1: नहीं भाई देखो अभी क्या है, अच्छा ही बोलोगे ना तुम रिकॉर्डिंग में, बुरा तो बोलोगे नहीं है ना, तो जो अच्छा ही है वो बोलो, और एक मैसेज दे दो अपने नेपाली भाइयों के लिए जो नेपाल के हैं और यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: उनके लिए क्या कहूँ कभी भाई, आप वही जो पहले बताया, फैमिली को देखो, अपना काम करो, दूसरा का तब काम पे टांग नहीं अड़ाओ, झगड़ा नहीं करो, डिसिप्लिन रहो, बस वही
1: डिसिप्लिन में रहो को मिला के। ठीक है करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने वक्त दिया, आई होप आपको इंटरव्यू देके मजा आया होगा, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे भाई। आपने पहली कोशिश कामयाब रही आपकी, अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, जानने को मिला, थैंक यू सो मच भाई,
0: थैंक यू सो मच सर,
1: ख्याल रखो मेरे भाई, फिर मैसेज करता हूँ, ठीक है, ओके मेरे भाई, टेक केयर। तो भाई ये थे हमारे करण भाई, जिन्होंने कई सारी बातें करी, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहें, बहुत सारे नेपाली हमारे भाइयों ने सुना होगा ऑफकोर्स, सो 666-22107 नंबर है, बताइएगा, क्योंकि ये मुझे सीरियस साइड देखने को मिली है, मुझे मैंने सोची नहीं थी, बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट, कोई मैसेज हो और आप भी शो का हिस्सा बनना चाहें तो 666-22107 पे जरूर बताइएगा। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जनरेशन टॉक, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है, उनकी कुर्बानियां, सब्र, और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
4: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है याद रखिए अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं ये सब बताना बहुत जरूरी है ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की. क्या है ये और इसमें कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? क्या आज का दौर सही दौर है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए आजकल बहुत से लोग अपने सेविंग्स को ग्रो करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं. चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहें, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कमर्शियल शॉप हो या फिर रेंटल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट दुनिया भर में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है. लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिर्फ प्लॉट या घर खरीद लेने का नाम नहीं है. अगर प्लानिंग और रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट की जाए तो

रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं या फिर फ्यूचर में महंगी कीमत पर सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये बिजनेस पर्पस के लिए होती है, जैसे शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वेयरहाउसेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से कई गुना ज्यादा होता है। एक और इन्वेस्टमेंट है लैंड इन्वेस्टमेंट। कई इन्वेस्टर्स खाली लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी लोकेशन मिल गई, सही वक्त से लैंड सही कीमत में मिल गई, तो आगे चल के उसे बेच कर ठीक ठाक पैसे बनाए जा सकते हैं।

0: अगर अच्छी लोकेशन पर है तो कुछ सालों में उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इसे पैसिव इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी इनकम जो जॉब के अलावा जनरेट होती है। वहीं प्रॉपर्टी एक टैंजिबल एसेट है। स्टॉक्स या फिर डिजिटल एसेट्स के बरक्स आप उसे फिजिकली देख सकते हैं और ओन करते हैं। कई लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा कंफर्टेबली समझ भी पाते हैं। वहीं वक्त के साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है। कई केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंट्स भी इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है। अब समझना ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले क्या देखना चाहिए। अगर मुमकिन है तो तमाम सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझें। मार्केट स्लो डाउन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वैकेंसी रिस्क या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजन करते हैं, रिसर्च नहीं करते, चीप प्राइस देखी ले लिया, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमीन, दीवार और कॉन्क्रीट खरीदने का नाम नहीं है, ये अपने फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करने का नाम है। जो लोग रिसर्च करते हैं, सब्र करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है। जो लोग आज अकलमंदी से इन्वेस्ट करते हैं वो कल ज्यादा कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे इस पर मैं डिटेल में भी फ्यूचर में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, शायद हम बरसों से एक ही इमारत में रह रहे हों, एक ही लिफ्ट इस्तेमाल करते हों, रोज एक दूसरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हों, मगर एक दूसरे का हाल तक मालूम न हो। हम दूर बैठे लोगों से राब्ते में हैं, लेकिन कभी कभी चंद कदम के फासले पर रहने वाले पड़ोसी

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मजलिस को बहुत

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसका सामना तकरीबन हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, और वो है स्ट्रेस, यानी जहनी दबाव। काम का दबाव है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की फिक्र है, रिलेशनशिप, फिनेंशियल कंसर्न्स, एग्जाम्स और कुछ और प्रॉब्लम्स मुस्तकिल जो है वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। उसी तरह फ्यूचर की जो परेशानी है वो भी इसमें शामिल है। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें स्ट्रेस दे सकती हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस मुसलसल रहे तो हमें अपनी सेहत पर उसके असरात को संजीदगी से जायजा लेना चाहिए। स्ट्रेस हमारे जिस्म पर असर डाल सकता है। जब हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं तो सिर्फ हमारा मूड ही तब्दील नहीं होता बल्कि स्टमक अपसेट हो जाता है, मसल्स टेंशन में चले जाते हैं, हेडेक यानी सर दर्द का बहुत बड़ा मसला भी सामने आता है, नींद में खराबी या कंसंट्रेशन में मुश्किल महसूस हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी का दिल किसी काम में नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा खाने लगता है और कोई खाना ही कम कर देता है। इसलिए स्ट्रेस को सिर्फ दिमाग की बात समझकर इग्नोर ना कीजिए। जब आप महसूस करें कि स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो फौरन हर मसले का सलूशन निकालने के बजाय कुछ लम्हे के लिए रुक जाइए, यानी पॉज लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए, अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए, अपनी तवज्जो चंद लम्हों के लिए अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी सांस पर रखिए, फिर सोचिए कि इस वक्त मुझे क्या करना है और क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है। ये छोटा सा फर्क बहुत मददगार साबित हो सकता है। और ये कि हर काम एक साथ ना कीजिए। हम अक्सर एक ही वक्त में 10 काम करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन भी, घर का काम भी, ईमेल भी, बच्चों की फिक्र भी। अपनी प्रायोरिटीज लिख लीजिए और ज़रूरी काम पहले कीजिए, बाकी काम बाद में। अगर कोई मसला आपको मुसलसल परेशान कर रहा है तो किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड से ज़रूर बात कीजिए। तभी सिर्फ किसी का तवज्जो से सुन लेना भी इंसान को बेहतर महसूस करा सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो या मुसलसल रहता हो तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर लीजिए। एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज जो है वो बहुत मददगार साबित हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल एक्टिविटी या दूसरी मुनासिब जो वॉकिंग है वो मददगार साबित होती है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, कुछ देर बाहर चलना, स्ट्रेचिंग करना या अपनी पसंद की फिजिकल एक्टिविटी करना भी रूटीन का हिस्सा बन सकता है। अगर मुसलसल एंजाइटी, उदासी, होपलेसनेस, शदीद परेशानी, नींद या एपिटाइट में वाज़े तब्दीली या रोज़मर्रा ज़िंदगी और काम पर नुमाया जो असर पड़ रहा हो तो फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर बात कीजिए। अपनी नींद जो है वो कुर्बान ना कीजिए। बाज़ अफराद जो हैं रात देर तक जागते रहते हैं, फिर अगले दिन मज़ीद थके हुए होते हैं। स्ट्रेस एक ख़राब आदत तो है ही, बल्कि स्लीप साइकिल जो स्ट्रेस को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं कि किस तरह से उन्हें मैनेज किया जाए। अगर किसी शख्स को अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आए तो उसे अकेले ना छोड़िए और फौरी तौर पर जो प्रोफेशनल या इमरजेंसी हेल्प हासिल कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए कि हम क्या करेंगे। स्ट्रेस जो है वो चैलेंज है। मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, खामोश बैठ जाइए या थोड़ी सी वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। शायद आराम की, शायद किसी से बात करने की, शायद कामों को दोबारा तरतीब देने की या प्रोफेशनल हेल्प की। अपनी मेंटल हेल्थ को भी हेल्थ ही समझिए, क्योंकि सेहत सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, जिस्म भी जहन भी है। योर हेल्थ मैटर्स, अपना ख्याल रखिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। प्रोग्राम आज की दुआ में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। सामिन, आज हम जो दुआ पेश करने जा रहे हैं वो खुद अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की है इस दुआ के लिए, और इस दुआ में अल्लाह ताला से सिद्ध कुव्वत और नुसरत की तलब है। ये दुआ कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत का सफर दरपेश था, इस मौके पर अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करने का हुक्म किया था। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر قرار دینے کا حکم ہوا تھا. اس وقت آپ کو یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی گئی تھی، اور اس میں داخل کرنے سے مدینہ منورہ میں داخل کرنا اور نکالنے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا مراد ہے. لیکن الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ دعا حال اس موقع پر کی جا سکتی ہے جب کوئی شخص کسی نئی جگہ جانے کا یا نیا کام شروع کرنے کا ارادہ کر رہا ہو. آئیے ایک مرتبہ عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
0: دل سے دیسی.
3: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے، ان کی محنت، ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक. ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर. एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए. अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें. एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें. सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें. वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
2: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website, Urdu Radio.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक FM107 कतर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिस्टर इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि कम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कम्प्लायंस पर 1,00,000 का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है,

है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 107 दिल से डीसी

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم